0: शरीर के वजन में भी कमी लाते हैं। इसके अतिरिक्त नियमित रूप से योगाभ्यास इतनी समझ देता है कि हमें किस प्रकार का भोजन कब करना चाहिए, ये भी हमें वजन पर नियंत्रण रखने में सहायता प्रदान करता है। योग हमें चिंता से राहत प्रदान करता है। दिन भर में कुछ मिनट का योग दिन भर की चिंताओं से मुक्ति दिलाता है, न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक चिंताओं से भी। योगासन, प्राणायाम और ध्यान तनाव दूर करने का सबसे कारगर उपाय है। मन की शांति ये भी योग से बहुत आसानी से प्राप्त की जा सकती है। हम सभी शांतिपूर्ण, सुंदर एवं प्राकृतिक स्थानों पर घूमना पसंद करते हैं। हम जब यह अनुभव करते हैं कि यह शांति हमारे अंदर है, तो दिन में किसी भी समय इस छोटी छुट्टी को अनुभव कर सकते हैं। योग और ध्यान के साथ यह छोटा सा अवकाश आपके चिंता से भरे मन को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है। योग के अभ्यास से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में भी जबरदस्त सुधार देखने को मिलता है। हम संयुक्त रूप से शरीर, मन और आत्मा से बने हैं। शरीर में कोई अनियमितता मन को प्रभावित करती है। मन में निराशा और थकान शरीर में रोग का कारण है। योगासन अंगों को सामान्य स्थिति में रखते हैं तथा मांसपेशियों को शक्ति देते हैं। प्राणायाम और ध्यान तनाव को दूर करते हैं और हमारी प्रतिरक्षण क्षमता को सुधारते हैं। योग का एक सबसे बड़ा और भी फायदा है कि हम इसे जीवन में अधिक से अधिक सजग होते चलते हैं। जीवन को पूर्ण सजगता के साथ जीना शुरू कर देते हैं। मन भूत और भविष्य में झकझोरे मारता रहता है, लेकिन कभी मन वर्तमान में नहीं रहता। साधारण रूप में मन की स्थिति में सजगता हमें तनाव से मुक्त करती है, मन को शांति प्रदान कर कार्य क्षमता को बढ़ाती है। योग तथा प्राणायाम मन को वर्तमान समय में लाते हैं। हम प्रसन्न और लक्ष्य की ओर केंद्रित होते हैं।
1: आज की जीवन शैली में योग का महत्व। अभी आप सुन रहे थे पंकज मिश्रा को स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम विवरण में सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

7 बजे सुनिए श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ। फिल्मों से लिए गए भजन का आनंद लीजिएगा 7:10 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिए 7:30 पर पंडित संजीव अभ्यंकर का ख्याल गायन, 12:15 पर किशन महाराज का तबला वादन और रात 10:30 पर पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन। 8:45 पर कार्यक्रम होगा नमस्कार प्रयागराज।

9:50 पर और रात 7:45 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा। 10:05 पर लोकमाधुरी कार्यक्रम सुनिएगा। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम होगा 10:30 पर। 11:30 पर सुनिएगा बोलते नगमे, स्वर नेहा गुप्ता वंदना राठौर की। 12:30 पर आपकी पसंद कार्यक्रम सुनिएगा, प्रस्तुति होगी मधु कुमार की। 1:15 पर पनघट कार्यक्रम में सुनिए कामिनी श्रीवास्तव के गाए लोकगीत के साथ पूर्व बैंक अधिकारी श्री आलोक की वार्ता, विषय है बैंक व सरकारी योजनाओं की जानकारी। दोपहर 2:30 पर फूलचंद्र और साथी के

शाम 4 बजे सैनिकों की शौर्य गाथा पर आधारित कार्यक्रम होगा संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम हम दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे। 5:15 पर योजन सुनेंगे अपना कार्यक्रम यौवाड़ी। 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में फूलचंद्र और साथी के गाए लोकगीत के साथ सुनिए मेरी खेती मेरी बात में किसान चर्चा। 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम सुनेगा। 8:30 पर सुनिए कार्यक्रम विविधा। गजलों पर आधारित कार्यक्रम होगा कहकशा। 9:30 पर ये थी रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

लंका विजय के पश्चात सीता की अग्नि परीक्षा मात्र एक लीला थी। उनके असली स्वरूप को तो हरण के पूर्व श्री राम ने अग्निदेव के पास धरोहर के रूप में रख दिया था। अग्नि परीक्षा का आदेश सुनकर न केवल राक्षसियों को विषाद होता है, बल्कि लक्ष्मण की आंखों में भी दुख के आंसू उमड़ आते हैं। किंतु स्वयं सीता से धर्म, विवेक तथा नीति के वचन सुनकर वे लकड़ियां एकत्र कर अग्नि प्रज्वलित करते हैं। इस लीला की पात्रा के रूप में सीता अग्निदेव से प्रार्थना करती हैं कि यदि मन, वचन और कर्म से वे पति परायणा रही हैं, तो अग्नि उनके लिए चंदन के समान शीतल हो जाए। उनकी छाया मूर्ति तथा अपहृत होने का कलंक आग के प्रचंड लपटों में भस्म हो जाते हैं। अग्निदेव स्वयं प्रकट होकर सीता जी का हाथ श्री राम को वैसे ही समर्पित करते हैं जैसे क्षीर सागर ने लक्ष्मी भगवान विष्णु को सौंपी थी।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ, संगीत सतीश भाटिया का था। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्मों से लिए गए भजन का ये कार्यक्रम। सबसे पहले हमने लिया है चंबल की कसम फिल्म का ये भजन। लता मंगेशकर की आवाज़ है, बोल साहिर के हैं और संगीत खयाम का है।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने सुना चंबल की कसम फिल्म का ये भजन। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में राम तेरी गंगा मैली फिल्म का ये भजन। बोल और संगीत रविंद्र जैन का है।

लता मंगेशकर के गाए इस खूबसूरत भजन के साथ ही फिल्मों से लिए गए भजन का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसकी कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: टिकापुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया फैसले का स्वागत, कहा समृद्ध किसान सशक्त भारत के संकल्प को नई मजबूती प्रदान करेगा यह निर्णय। वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटाया सुरक्षा काफिले का आकार। मुख्यमंत्री ने भी प्रदेशवासियों से ईंधन बचत और अनावश्यक सोने की खरीद न करने के प्रधानमंत्री के आह्वान से जुड़ने की अपील की। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में विस्तारित मंत्रिमंडल की पहली बैठक में भी ऊर्जा संरक्षण पर दिया जोर, कहा ईंधन संरक्षण केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं बल्कि राष्ट्रीय दायित्व है। और प्रदेश में आंधी पानी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत, प्रभावित लोगों की मदद करेगी सरकार। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। कल नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन

0: श्री वैष्णव ने बताया कि अब ग्रेड ए धान के लिए 2461 रुपए प्रति क्विंटल, सामान्य धान के लिए 2441 रुपए प्रति क्विंटल, हाइब्रिड ज्वार के लिए 4023 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा के लिए 2900 रुपए प्रति क्विंटल, मक्का के लिए 2410 रुपए प्रति क्विंटल और अरहर दाल के लिए 8450 रुपए प्रति क्विंटल तथा मूंग के लिए 8780 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार के एमएसपी बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह निर्णय अन्नदाता किसानों की आय बढ़ाने व कृषि विविधीकरण को प्रोत्साहन देने के साथ साथ समृद्ध किसान सशक्त भारत के संकल्प को नई मजबूती प्रदान करेगा। खरीफ फसलों की एमएसपी वृद्धि पर प्रदेश के किसानों ने खुशी जताई है। वाराणसी के किसान दुर्गेश ने बताया कि इससे किसानों को फायदा होगा।
1: जो केंद्र सरकार ने हम जैसे किसानों के लिए जो समर्थन मूल्य बढ़ाया है, ये एक तरह से अगर कहा जाए तो ये बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि जिस तरह से समर्थन मूल्य जो घट रहा था, हम किसानों को बड़ा ही घाटा हो रहा था, लेकिन एमएसपी बढ़ने के साथ साथ हम लोगों की आय में भी दुगुना होगी और इस सरकार के फैसले को हम बहुत ही सराहना पूर्वक उन्हें धन्यवाद देते हैं।
0: पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। एक रिपोर्ट।
2: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो, बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से प्रधानमंत्री के आह्वान से जुड़ने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईंधन की खपत कम करें और अनावश्यक सोने की खरीद न करें। उन्होंने 12 मई की शाम को एक उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री व मंत्रियों आदि की फ्लीट में तत्काल 50% की कमी की जाए। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने विधानसभा की संसदीय समितियों के पूर्व निर्धारित अध्ययन भ्रमण के समस्त कार्यक्रमों को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया है। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। यह फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। यह कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में विस्तारित मंत्रिमंडल की पहली बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मितव्ययिता, ऊर्जा संरक्षण और उत्तरदायी कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए ईंधन संरक्षण केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं बल्कि राष्ट्रीय दायित्व है। मुख्यमंत्री ने सचिवालय एवं निदेशालयों में एयर कंडीशनर का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रखने, प्राकृतिक प्रकाश के अधिकतम उपयोग तथा आवश्यकता आधारित विद्युत उपभोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 16 मई को गोरखपुर में अंचल के पहले और प्रदेश के चौथे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन व शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के संभावित कार्यक्रम को देखते हुए वहां के जिलाधिकारी दीपक मीणा ने संबंधित अधिकारियों के साथ कल परियोजना स्थल का निरीक्षण किया। एक रिपोर्ट।
3: निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य की प्रगति, गुणवत्ता और व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कार्य में तेजी लाने और सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने पर जोर दिया। गोरखपुर वाराणसी

0: 80 राजमार्ग पर स्थित ताल नदौर में यह इंटरनेशनल स्टेडियम 392.94 करोड़ रुपए की लागत से आकार लेगा। निर्माण के लिए पहली किस्त के रूप में 63.39 करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश नारायण चौबे, गोरखपुर।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कल कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। विद्यार्थी रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। दुग्ध उत्पादक कंपनी अमूल ने दूध की कीमतों में 2 रूपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की घोषणा की है। संशोधित दरें आज से पूरे देश में लागू हो रही हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश, धूल भरी आंधी और बिजली गिरने से 43 से अधिक लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन घटनाओं का संज्ञान लिया है और अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: सबसे ज्यादा मौतें भदोही जिले में हुई हैं, जहां 15 लोगों की जान चली गई, 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं और उन्हें विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हुई है। ज्यादातर मौतें बिजली गिरने, दीवार गिरने और धूल भरी आंधी और ओलावृष्टि के कारण लोगों और वाहनों पर पेड़ गिरने से हुई है। कल राज्य के कई हिस्सों में मौसम अचानक बदल गया और विभिन्न जिलों से बिजली के खंभे उखड़ने और पेड़ उखड़ जाने की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे बिजली आपूर्ति और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों में प्रभावित लोगों को मुआवजा देने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मौसम विभाग ने आज से प्रदेश में मौसम के शुष्क रहने का अनुमान जताया है। विभाग के मुताबिक प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में 16 और 17 मई को लू चलने की संभावना है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया फैसले का स्वागत, कहा समृद्ध किसान सशक्त भारत के संकल्प को नई मजबूती प्रदान करेगा यह निर्णय। वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटाया सुरक्षा काफिले का आकार। मुख्यमंत्री ने भी प्रदेशवासियों से ईंधन बचत और अनावश्यक सोने की खरीद न करने के प्रधानमंत्री के आह्वान से जुड़ने की अपील की। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में विस्तारित मंत्रिमंडल की पहली बैठक में भी ऊर्जा संरक्षण पर दिया जोर, कहा ईंधन संरक्षण केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं बल्कि राष्ट्रीय दायित्व है। और प्रदेश में आंधी पानी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत, प्रभावित लोगों की मदद करेगी सरकार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिए पंडित संजीव अभयंकर का ख्याल गायन राग भैरव। इनके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं पंडित केदारनाथ, हारमोनियम पर प्रमोद मराठे और तानपुरी पर संदीप।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित सजीव अभ्यंकर का राग भैरव। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित समाचार प्रभात।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाया गया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। विराट कोहली ने रचा इतिहास। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

0: सुधार पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी।
2: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी है। इस बारे में खाड़ी क्षेत्र के लिए अपर सचिव असीम महाजन ने बताया।
3: यूएई हमारी ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण साझेदार है। पिछले साल यूएई भारत के लिए कच्चे तेल का 4th सबसे बड़ा आपूर्ति

0: करता था और उसने हमारी कुल जरूरत का लगभग 11% तेल उपलब्ध कराया। एलएनजी के क्षेत्र में भी भारतीय कंपनियों और यूएई की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच दीर्घकालिक समझौते हुए हैं, जिनके तहत भारत को कुल 4.5 एमएमटीपीए एलएनजी की आपूर्ति की जाएगी।
1: भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई और संयुक्त अरब अमीरात के आनी सिस्टम को जोड़ने से दोनों देशों के बीच व्यापार करना पहले से आसान हो गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच अबू धाबी में होने वाली यह बैठक दोनों देशों के मजबूत और दीर्घकालिक रिश्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
2: असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
3: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
2: उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य होगा। सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए
4: इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में ये जानकारी दी गई। ये प्रतिबंध अमरीका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भी भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था।
5: आलू, प्याज, सब्जियां, फल, खाद्यान्न और तिलहन जैसी वस्तुओं अब बिना किसी बाधा के राज्य की सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से भेजी जा सकती है। जिला प्रशासन, पुलिस और परिवहन अधिकारियों को इस आदेश के सुचारू क्रियान्वयन के सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्णय छोटे और सीमांत किसानों के साथ साथ व्यापारियों के भी लाभ पहुंचाएगा। अब किसानों की उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि यदि माल से भरे वाहनों को अंतर्राज्यीय सीमाओं पर अनावश्यक रूप से रोका या परेशान किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
8: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
4: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24

0: घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत हो गई। एक रिपोर्ट।
1: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई है। प्रयागराज में 17, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने की घटनाओं के कारण हुई हैं। विभिन्न जिलों से बिजली के खंभे और पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे बिजली आपूर्ति और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों के भीतर प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की महत्वपूर्ण शिखर बैठक आज से शुरू हो रही है। श्री ट्रंप पेचिंग पहुंच गए हैं। 2 दिन की बैठक में ईरान से युद्ध, ताइवान को अमरीकी हथियारों की बिक्री, व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टैरिफ जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। ये बैठक दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती आर्थिक और तकनीकी स्पर्धा के बीच हो रही है।
2: अमेरिकी राष्ट्रपति अपने साथ कई शीर्ष व्यापार और प्रौद्योगिकी अधिकारियों को लेकर गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा से पहले आशा व्यक्त की है कि इस बैठक से आने वाले दशकों तक अमेरिका और चीन के बीच मजबूत संबंधों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और व्हाइट हाउस के प्रमुख सहयोगी भी गए हैं। इस यात्रा पर वैश्विक स्तर पर कड़ी नजर रखी जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनफिंग की ये मुलाकात व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक प्रभाव को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के समय हो रही है। 2017 के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की चीन की यह पहली आधिकारिक यात्रा है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: आईपीएल क्रिकेट में विराट कोहली ने कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट की जीत के दौरान इतिहास रचा और कई कीर्तिमान ध्वस्त किए। कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। ये आईपीएल में उनका 9वां शतक है, जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा शतक हैं। वे T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने क्रिस गेल का कीर्तिमान ध्वस्त करते हुए 409 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की। गेल ने 423 पारियों में ये रिकॉर्ड बनाया था। कोहली ने इस आईपीएल में 400 रन भी पूरे कर लिए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और एक गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना जताई है। साथ ही पूर्वी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी लू की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी भारी बारिश का अनुमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में अगले 3 दिन भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में आज गरज चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने झारखंड, तटीय कर्नाटक और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में अगले 2 दिन तक तेज आंधी और गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। विदेशी मुद्रा की बचत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर कार्रवाई शुरू होने की खबर पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, पीएम मंत्र समझदारी से खर्च बनेगा, देश का आर्थिक कवच कटौती नहीं, स्मार्ट लाइफ की सलाह, हम मिलकर कर सकते हैं ये सब। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सख्ती संयम का समय शुरू, मोदी और शाह ने गाड़ियों के काफिले में कटौती की, उत्तराखंड में वर्क फ्रॉम होम और एक दिन नो व्हीकल डे। जनसत्ता का शीर्षक है, सोने चांदी पर आयात शुल्क शेष से बढ़कर 15%। इसी खबर पर दैनिक जागरण ने फिजूल खर्ची की संस्कृति शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ये अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने

0: कारों के काफिले में कटौती कर इसका उदाहरण पेश किया कि वो जो कुछ औरों को करने के लिए कह रही हैं उस पर स्वयं अमल कर रही हैं। आशा है कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री भी इसका अनुसरण करेंगे। अमर उजाला ने नीट पेपर लीक पर सुर्खी दी है, सीबीआई ने मारे कई जगह छापे, एनटीए मुख्यालय भी पहुंची एजेंसी, चार और गिरफ्तार, 40 लाख तक में बिका पेपर। पंजाब केसरी का शीर्षक है, तमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट में विजय की शानदार विजय, समर्थन में 144 और विरोध में 22 वोट पड़े। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले देते हुए लिखा है, धान का समर्थन मूल्य 72 रुपए बढ़ाकर 2441 रुपए किया, खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी इजाफा। जनसत्ता का कहना है, प्रधानमंत्री मोदी कल से 5 देशों की यात्रा पर, सबसे पहले यूएई जाएंगे, एलपीजी और रणनीतिक तेल भंडार पर करार संभव। राजस्थान पत्रिका के अनुसार ईरान को ब्रिक्स से आस, कहा अधिकार की रक्षा करें। पत्र के अनुसार दिल्ली बनी केंद्र, भारत मंडपम में जुटेंगे कई विदेश मंत्री। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, हरियाणा निकाय चुनाव में कमल का क्लीन स्वीप, हुड्डा के गढ़ से लेकर तीनों निगमों तक भाजपा का दबदबा, पीएम मोदी ने जताया आभार। लोकसत्ता की सुर्खी है, सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 साल बढ़ा। देशबंधु ने महंगाई का एक और झटका शीर्षक से लिखा है, अमूल ने बढ़ा दिए दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर। दैनिक जागरण की सुर्खी है, 12वीं में अव्वल बेटियां ही बेटियां, पत्र के अनुसार सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियां स्क्रीन पर जांची गई, 7 साल में सबसे कम रहा रिजल्ट।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। 2-day meeting of BRICS foreign ministers to begin in New Delhi today. Assam government to introduce Uniform Civil Code Bill in State Assembly on 26th of this month. India bans export of sugar until September this year to cool domestic prices. West Bengal government lifts all restrictions on interstate movement of potato, onion, fruits, vegetables, food grains and other essential commodities. Heavy rain and dust storm leaves 60 people dead across Uttar Pradesh. Praveen Sood gets 1-year extension as CBI director. And Virat Kohli slams record 9th IPL century as Royal Challengers Bengaluru beat Kolkata Knight Riders by 6 wickets in Raipur. And now the news in detail. A 2-day meeting of BRICS foreign ministers will begin today in New Delhi. The meeting will be chaired by External Affairs Minister S. Jayashankar. BRICS foreign ministers and heads of delegation from member and partner countries will participate in the meeting. They will also call on Prime Minister Narendra Modi. Global leaders have arrived in the national capital ahead of the BRICS foreign ministers meeting. The leaders who arrived here yesterday include Foreign Minister of Iran, Syed Abbas Araghchi, Deputy Prime Minister and Foreign Minister of Thailand, Sihasak Phuanketkyo, Foreign Minister of Cuba, Bruno Rodriguez Perella, and Deputy Minister of Foreign Affairs of Vietnam, Nguyen Minh Hang. Other leaders who arrived were Foreign Minister of Malaysia, Dato Seri Utama Mohammed bin Haji Hassan, and UAE's Minister of State, Ministry of Foreign Affairs, Khalifa Shaheen Al-Marar. A report.
3: During the meeting, the foreign ministers of BRICS member countries will exchange views on global and regional issues of mutual interest. On the second day, BRICS member and partner countries will participate in a session themed BRICS at 20, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. This will be followed by a session on the reforms of global governance and multilateral system. The BRICS foreign ministers held their last meeting on the margins of 80th session of the United Nations General Assembly on 26 September 2025. The meeting was chaired by India in its capacity as the incoming BRICS chair for 2026. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
2: The Assam government will introduce the Uniform Civil Code or UCC.

0: CBI nabs five suspects. The Statesman headlines, Vijay government wins confidence vote, gets backing of rebel AIADMK MLAs. The same newspaper also informs decision on Kerala CM will be announced today. Indian ships given priority pass in Strait of Hormuz, says Iran Deputy Foreign Minister, writes the Pioneer. US President Donald Trump given a red carpet welcome in China. The Asian Age carries his picture during the welcome ceremony. The paper headlines, Trump in China on three-day visit to hold Xi talk on Iran war and trade. The Times of India writes, dealmaker and dragon, Trump seeks to do business with Beijing. The Hindu, in its editorial title, Testing Troubles, writes that leaks and breaches have destroyed the National Testing Agency's credibility. The K. Radhakrishnan Committee, which was constituted to recommend reforms in the examination process, recommended restructuring of the NTA and creating strong institutional linkages with state and district authorities in order to produce a secure test administration apparatus. And finally, the Times of India writes, in a rare and emotional moment during proceedings linked to passive euthanasia, the Supreme Court praised the family of Harish Rana for donating his corneas and heart valve after permission was granted to withdraw life support, observing that his life continues in others through the noble act. And with that, it's back to you, Saira.
1: Thanks, Subhadra. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Two-day meeting of BRICS foreign ministers to begin in New Delhi today. Assam government to introduce Uniform Civil Code Bill in State Assembly on 26th of this month. India bans export of sugar until September this year to cool domestic prices. West Bengal government lifts all restrictions on interstate movement of potato, onion, fruits, vegetables, food grain and other essential commodities. Heavy rain and dust storm leave 60 people dead across Uttar Pradesh. Praveen Sood gets 1 year extension as CBI director. And Virat Kohli slams record 9th IPL century as Royal Challengers Bengaluru beat Kolkata Knight Riders by 6 wickets in Raipur. For details of these stories and more, log on to our website www.newsoneair.gov.in and NewsOneAIR app. And with that, we end the morning news. Have a great day.
2: Akashwani se pesh hai khabarnama. आदाब, खबरनामे के साथ में नीति का त्यागी, पहले इस वक्त की खास खास खबरें। ब्रिक्स वज़राए खारिजा की दो रोज़ा मीटिंग आज से नई दिल्ली में शुरू होगी। आसाम हुकूमत इस महीने की 26 तारीख को रियासती असेंबली में यकसां सिविल कोड मुतारिफ कराएगी। भारत ने घरेलू कीमतों में कमी लाने के मकसद से सितंबर तक शक्कर की बरामद पर पाबंदी लगा दी है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने आलू प्याज फल सब्जियों गजाई अजनास और दीगर जरूरी अशिया की बैन रियासती हमलों नकल पर आयद सभी पाबंदियां हटा ली हैं। शदीद बारिश और धूल भरी आंधी से उत्तर प्रदेश में अब तक 60 लोगों की मौत हो गई है। सीबीआई के डायरेक्टर के तौर पर प्रवीण सूद की मुद्दत में एक साल की तौसी की गई है। और आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। विराट कोहली ने नवी आईपीएल सेंचुरी लगाई जो कि एक रिकॉर्ड है। अब खबरें तफसील से। ब्रिक्स वज़राए खारिजा की मीटिंग से कबल आलिमी रहनुमा कौमी राजधानी पहुंच गए हैं। यहां कल जो रहनुमा पहुंचे उनमें ईरान के वजीर खारिजा सैयद अब्बास अराकची, थाईलैंड के नायब वजीर आजम और वजीर खारिजा सिहासक फुआंग केट केओ, क्यूबा के वजीर खारिजा ब्रूनो रोड्रिगेस पारिल्ला और वियतनाम की नायब वजीर खारिजा गुयेन मिन हांग शामिल हैं। दीगर रहनुमाओं में मलेशिया के वजीर खारिजा दातो सेरी उतामा मोहम्मद बिन हाजी हसन और मुत्तहदा अरब अमारात के उमूर खारिजा के वजीर मुमलिकत खलीफा शाहीन अल मिरार भी शामिल हैं। तफसील हमारे नामा निकार से।
3: इजलास के दौरान ब्रिक्स रुकन मुल्कों के वज़राए खारजा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादले ख्याल करेंगे। दूसरे दिन ब्रिक्स के रुकन और शराकत दार ममालिक एक इजलास में शिरकत करेंगे जिसका मौजू ब्रिक्स @20 इस्तेहकाम इख्तिरा ताउन और पायदारी होगा। इसके बाद आलमी हुक्मरानी और कसीर जहती निज़ाम में असलाहत के मौजू पर एक और इजलास मुनद होगा। ब्रिक्स वज़राए खारजा की पिछली मीटिंग 26 सितंबर 2025 को अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 80वें इजलास के मौके पर हुई थी। इस मीटिंग की सदारत भारत ने की थी। नई दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
2: असम हुकूमत इस महीने की 26 तारीख को रियासती असेंबली में यकसां

0: बिल कोड यूसीसी बिल पेश करेगी। वजीर आला हेमंता बिस्वा सरमा ने अपनी दूसरी मुद्दतकार की पहली काबीना मीटिंग की सदारत करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इसका ऐलान किया। जनाब सरमा ने कहा कि आसाम असेंबली का एक खसूसी इजलास 21 से 26 मई तक मुनक्किद होगा, जिसके दौरान 9 मुंतखब अरकानी असेंबली हलफ लेंगे। उन्होंने कहा कि मुजव्वजा कानून साजी का मकसद शादी की कानूनी उम्र, एक से ज्यादा शादी, विरासत और बगैर शादी के साथ रहने जैसे मसाइल को हल करना है। उन्होंने वाजे किया कि मजहबी रसूमात और मजहबी मामलात इस बिल के दायरा कार से बाहर रहेंगे। इस इख्ताम के साथ आसाम, उत्तराखंड और गुजरात के बाद यकसां सिविल कोड बिल पेश करने वाली तीसरी रियासत बनने जा रही है। हुकूमत ने चीनी की बरामदात पर फौरी तौर पर सितंबर 2026 तक या मजीद अहकाम जारी होने तक पाबंदी आयद कर दी है, जिसमें खाम चीनी, सफेद चीनी और रिफाइंड चीनी शामिल है। एक सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक गैर मुल्की तिजारत के डायरेक्टरेट जनरल ने बरामदी पॉलिसी को महदूद के जुमरे से ममनू के जुमरे में तब्दील कर दिया है। ताहम ये पाबंदी सीएक्सएल और टीआरक्यू कोटा और एडवांस ऑथोराइजेशन स्कीम के तहत यूरोपीय यूनियन और अमरीका को बरामद होने वाली चीनी पर नाफिज नहीं होगी, ताकि दीगर ममालिक की खुराक की यकीनी फराहमी से मुतालिक जरूरियात को पूरा किया जा सके। वो खेप जो बरामद के लिए फिजिकल पाइपलाइन में है, उन्हें इस पाबंदी से मुस्तस्ना रखा गया है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, गजाई अजनास और दीगर जरूरी अशिया की बैन रियासती नकलो हरकत पर आयद सभी पाबंदियां हटा ली हैं। ये पाबंदियां साबिका टीएमसी हुकूमत की जानिब से आयद की गई थी। दूसरी जानिब एक अहम पेशरफ्त के तौर पर मगरबी बंगाल हुकूमत ने असातिजा के तकर्रुरात, म्यूनिसिपल तकर्रुरात और इमदाद बाहमी खिदमात तकर्रुरात खपलों से मुतालिक मामलों को सीबीआई के सुपुर्द करने का फैसला किया है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने उन सभी अफराद की खिदमात को खत्म कर दिया है जिनका सबुकदोशी के बाद टीएमसी हुकूमत की जानिब से दोबारा तकर्रुर किया गया था। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: किसानों और ताजिरों को बड़ी राहत देते हुए मगरबी बंगाल हुकूमत ने जरई अशिया की दीगर रियासतों में बरामदात पर आयद पाबंदियों को हटा लिया है। जरई मार्केटिंग के महकमे की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक आलू, प्याज, सब्जियां, फल, गजाई अजनास और तिलहन की अब रियासती सरहदों के पार बिला रुकावट हमलों नकल की जा सकती है। जिला इंतजामिया, पुलिस और ट्रांसपोर्ट हुकाम को इस हुक्मनामे के निफाज को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है। वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने कल नबन्ना में बताया कि इस फैसले से छोटे और हाशिया बरदार किसानों और ताजिरों को फायदा पहुंचेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसानों को अब उनकी पैदावार का वाजिब दाम मिलेगा। वजीर आला ने यह भी इंतबाह दिया कि जरई अशिया से लदी गाड़ियों को अगर बैन रियासती सरहदों पर गैर जरूरी तौर पर रोका गया या हिरासा किया गया तो अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले से जरई बरामदात में आसानी पैदा होने और मगरबी बंगाल के किसानों और ताजिरों को पेश आ रही मुश्किलात में कमी आने का इम्कान है। कोलकाता से संदीप पौन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: हुकूमत ने मरकजी जांच ब्यूरो सीबीआई के डायरेक्टर प्रवीण सूद की मुद्दत में एक साल की तौसी की है। अमले और तरबियत के महकमे की जानिब से जारी किए गए सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक काबीना की तकर्रुरात से मुतालिक कमेटी ने जनाब सूद की मुद्दतकार को जांच एजेंसी के डायरेक्टर के तौर पर इस महीने की 24 तारीख से आगे तौसी देने को मंजूरी दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल अबू जहबी का दौरा करेंगे, जो उनके 5 मुल्कों के दौरे का पहला मरहला होगा। इस दौरे के दौरान वो मुत्तहिदा अरब अमारात, नेदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली जाएंगे। वजीर आजम का ये दौरा जुमे से इस महीने की 20 तारीख तक जारी रहेगा। वजारत खारजा में मगरबी उमूर के सेक्रेटरी सीबी जॉर्ज ने बताया कि 5 मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले में जनाब मोदी यूएई के सदर मोहम्मद बिन जायद अन्नहयान से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों रहनुमा दोतरफा उमूर, खासतौर पर तवानाई के शोबे में तावुन और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल अक्वामी मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। ये जनाब मोदी और यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अन्नहयान की सिर्फ 5 महीनों में दूसरी बिलमुशाफा मुलाकात होगी। तवक्को है कि दोनों ममालिक कल जामे स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद आगे बढ़ाएंगे, जबकि मुत्तहिद अरब अमारात में मुकीम 40 लाख से ज्यादा भारतीयों की फलाह बहबूद भी इस बातचीत के एजेंडा में शामिल होगी। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: भारत और मुत्तहिद अरब अमारात खित्ते की अहम तरीन तवानाई शराकत दारी रखते हैं। मुत्तहिद अरब अमारात इस वक्त भारत को खाम तेल फराहम करने वाला चौथा बड़ा मुल्क है, जो मुल्क की कुल जरूरत का तकरीबन 11

0: फीसद पूरा करता है। रकीक कुदरती गैस के मामले में भारतीय कंपनियों ने अबूजबी की ADNOC गैस के साथ तवील मुद्दती सप्लाई मुआहदे किए हैं, जिनकी मजमूई मकदार 4.5 मिलियन टन है। मुत्तहदा अरब अमारात गुज़श्ता 25 बरसों के दौरान भारत का तीसरा सबसे बड़ा तजारती साझेदार और गैर मुल्की सरमायाकारी का 7वां बड़ा जरिया है। ऐसे में जबकि मगरबी एशिया मौजूदा वक्त में अपने सबसे हंगामा खेज दौर से गुजर रहा है, अबूजबी में दोनों रहनुमाओं के दरमियान जुमे की मुलाकात को दोनों मुल्कों के लिए इस्तेहकाम और तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक आज़म के तौर पर देखा जा रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में गुज़श्ता 24 घंटे में धूल भरी आंधी और गरज चमक के साथ होने वाली बारिश से 60 लोग हलाक हुए हैं। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने इन मामलों का नोटिस लिया है और हुकाम को कहा है कि वो मुतासरा लोगों की मदद के लिए हर जरूरी इकदाम करें। पेश है हमारे नामा निकार की ये रिपोर्ट।
2: भदोही जिले में सबसे ज्यादा 15 हलाकतें हुई हैं, 12 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं जो मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली में 4 अफराद हलाक हुए हैं। सबसे ज्यादा अमवात गरज चमक, दीवारों और पेड़ों के लोगों और गाड़ियों पर गिरने की वजह से हुई हैं। रियासत के कई इलाकों में कल अचानक मौसम में तब्दीली आ गई और मुतादिद जिलों से बिजली के खंभों और पेड़ों के गिरने की खबरें मिली, जिसकी वजह से बिजली की फराहमी और रोड ट्रैफिक में रखना पड़ा। बारिश के साथ होने वाली झालाबारी से फसलों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
1: भारतीय महकमाए मौसमियात IMD ने आज मगरबी मध्य प्रदेश और मगरबी राजस्थान के दूरदराज इलाकों में गर्म लहर से शदीद गर्म लहर रहने की पेशगोई की है। मशरकी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के दूरदराज इलाकों में भी गर्म लहर की सूरत हाल रहेगी। मौसमियाती महकमे ने आज अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मेघालय में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश होने की पेशगोई की है, जबकि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ओडिशा, मगरबी बंगाल और शिमाल मशरकी रियासतों में आज गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ दो रोजा मुजाकरात के लिए कल शाम बीजिंग पहुंच गए। मुजाकरात के दौरान ईरान जंग, तवानाई के आलमी बहरान, तजारती कशीदगी, ताइवान और मसनूई जहानत जैसे मौजूदात एजेंडा में शामिल रहने की तवक्को है। ईरान के साथ जारी जंग के बीच इसराइली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू खुफिया तौर पर UAE पहुंचे और उन्होंने मुल्क के सदर से मुलाकात की। नेतन्याहू के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक इसराइली वजीर आजम ने UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ बातचीत की। इस बयान में मजकूरा मीटिंग को इसराइल और UAE के दरमियान ताल्लुकात में एक तारीखी कामयाबी बताया गया है, हालांकि कामयाबी से मुतालिक तफसीलात का जिक्र नहीं किया गया। दूसरी जानिब UAE ने इसराइली वजीर आजम के दौरे से मुतालिक रिपोर्टों को मुस्तरद किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में UAE की वजारत खारिजा ने कहा कि रिपोर्ट्स गलत हैं और इस बात पर जोर दिया कि इसराइल के साथ UAE के ताल्लुकात खुफिया नहीं बल्कि खुले हैं और सरकारी तौर पर ऐलान करदा इब्राहिम मुआहिदे पर मबनी है। पोस्ट में मजीद कहा गया है कि कोई खुफिया मीटिंग नहीं हुई है। ईरान ने मजकूरा रिपोर्ट पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराकची ने खलीजी ममालिक को इसराइल के साथ तआवुन करने पर खबरदार किया और कहा कि ईरान के खिलाफ इसराइल का तआवुन करने वाले किसी भी मुल्क को जवाबदेह ठहराया जाएगा। IPL क्रिकेट में कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट से जीत के दौरान विराट कोहली ने तारीख रकम करते हुए कई रिकॉर्ड तोड़े। कोहली ने 60 गेंदों में बगैर आउट हुए 105 रन बनाए। उन्होंने 11 चौके और 3 छक्के लगाए। ये उनकी नवी IPL सेंचुरी थी, जो कि टूर्नामेंट की तारीख में किसी भी खिलाड़ी की सबसे ज्यादा सेंचुरी है। इस इनिंग्स के दौरान विराट कोहली ने T20 मैचों में 14,000 रन भी मुकम्मल किए। इस तरह वो इस संगे मील को हासिल करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। वो क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इस संगे मील तक सबसे तेजी के साथ पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। उन्होंने इस IPL सीजन में 400 से ज्यादा रन बनाए हैं। इस जीत के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पॉइंट्स टेबल में सरे फहरिस्त टीम बन गई है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 मैचों में जीत हासिल की है और वो प्ले ऑफ में पहुंचने के बेहद करीब है। आज धर्मशाला में पंजाब किंग्स का

0: मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार।
1: शुक्रिया नीतिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शह सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। मुल्क में कोयले से गैस बनाने से मुतालिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दिए जाने से मुतालिक खबर को रोजनामा प्रताप ने अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार लिखता है, मोदी सरकार ने कोयले पर मबनी गैस की पैदावार के मनसूबे को मंजूरी दी, खुद किफालत में मदद मिलेगी। CBSE 12वीं जमात के नतायज जारी होने से मुतालिक खबर सभी अखबारों में नुमाया है। रोजनामा इनकलाब ने इस हवाले से सुर्खी लगाई है। CBSE की जानिब से जारी करदा आदाद व शुमार के मुताबिक रवां साल मजमूई तौर पर 85.20 तलबा कामयाब हुए, लड़कियां आगे रहीं। तमिलनाडु में 144 मेंबरान के साथ विजय ने अक्सरियत साबित की, इसी अखबार ने इस खबर को भी अव्वलियत के साथ पहले सफे पर शाये किया है। सोने और चांदी की दरामदात पर कस्टम ड्यूटी में 15% इजाफे किए जाने से मुतालिक खबर अहमियत के साथ अखबारात में शाये की गई है। इस हवाले से रोजनामा प्रताप की सुर्खी है कि हुकूमत दीगर अशिया की दरामद कम करके गैर मुल्की करेंसी के इस्तेमाल को महदूद करना चाहती है।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। ब्रिक्स वज़राए खारिजा की दो रोजा मीटिंग आज से नई दिल्ली में शुरू होगी। आसाम हुकूमत इस महीने की 26 तारीख को रियासती असेंबली में यकसा सिविल कोड मुतारिफ कराएगी। भारत में घरेलू कीमतों में कमी लाने के मकसद से सितंबर तक शक्कर की बरामद पर पाबंदी लगा दी है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, गजाई अजनास और दीगर जरूरी अशिया की बैन रियासती हमलो नकल पर आयद सभी पाबंदियां हटा ली हैं। CBI के डायरेक्टर के तौर पर प्रवीण सूद की मुद्दत में एक साल की तौसी दी गई है। और IPL क्रिकेट में रायपुर में खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। विराट कोहली ने नवी IPL सेंचुरी लगाई, जो कि एक रिकॉर्ड है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। इस कार्यक्रम में हम आप सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। आज मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त नीलम सिंह। आज हम बात कर रहे हैं आशा और लक्ष्य की, तो जुड़ जाइए इस कार्यक्रम में अपने सुविचार के साथ और लिख भेजिए अपने सुविचार। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8004926250। मनुष्य जीवन में आशा और लक्ष्य दो प्रमुख आधार होते हैं। आशा वह आंतरिक शक्ति है जो कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति को आगे बढ़ने का साहस देती है। लक्ष्य वह दिशा जो इस शक्ति को भटकने से बचाता है। श्रोताओं, समस्या तब उत्पन्न होती है जब आशा प्रबल होती है, परंतु उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता, लक्ष्य निर्धारित होता है, जीवन को समझने की क्षमता नहीं होती। आशा केवल इच्छाओं तक सीमित हो जाए तो वह जल्द निराशा में बदल जाती है। आशा व्यक्ति को आलस्य, भय और असमंजस्य से बाहर निकालती है। असफलता को अंत नहीं बल्कि सीख मानने की दृष्टि देती है। निरंतर प्रयासों की दिशा में प्रयत्नशील बनाती है। श्रोताओं, लक्ष्य पद, धन या प्रतिष्ठा तक सीमित नहीं होना चाहिए। सार्थक लक्ष्य वही है जो व्यक्ति को जीवन मूल्यों से जोड़ता है, अनुशासन एवं दायित्व का बोध कराता है, व्यक्ति को सफलता के साथ बेहतर मनुष्य बनाता है। जीवन में आशा और लक्ष्य का संतुलन

श्रोताओं, लक्ष्य तय करता है क्या करना है और आशा ताकत देती है कि कर ही लेंगे। दोनों मिल जाएं तो इंसान मिट्टी में सोना उगा देता है, इसलिए व्यक्ति को अपनी क्षमताओं के अनुरूप लक्ष्य तय करें और उन्हें पाने की आशा को कर्म से जोड़े, तभी उसका जीवन सार्थक और सार्थकता की ओर बढ़ेगा। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम ऐसी आशाएं रखें जो हमें लक्ष्य की ओर ले जाए और ऐसे लक्ष्य चुने जो केवल आगे बढ़ना ही नहीं बल्कि सही ढंग से जीवन जीना भी सिखाए। यही संतुलन जीवन को स्थायित्व और सार्थकता प्रदान करती है।

भी आपका अच्छा ही करता है। बहुत ही सुंदर विचार है। और एक और विचार इन्होंने लिखा है कि केवल उन्हीं के साथ मत रहिए जो आपको खुश रखते हैं, कुछ समय उनके साथ भी रहिए जो आपको देखकर खुश होते हैं। बहुत ही सुंदर विचार नीरा त्रिपाठी जी ने लिखा है। और ये नैनी प्रयागराज से श्याम जी लिखते हैं, नीलम जी नमस्ते जी, आपको भी नमस्ते। इनका लिखना है कि उबाल इतना भी न हो कि खून सूख कर उड़ जाए, धैर्य इतना भी न हो कि खून जमे तो खौल भी ना पाए, इसलिए हमेशा एक रूपता बनाए रखना चाहिए। बहुत ही सुंदर विचार आपने भेजा है। और इसी क्रम में है विष्णु, रितिका, चंद्रकला, गणेश, काशीनाथ, संगीता, मिसनी, आरोही, प्रियांशी, सोनी, दयानंद कॉलेज भवानी सेठ सोलापुर से। इन्होंने लिखा है कि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत शब्दों में नहीं बल्कि व्यवहार में होती है, क्योंकि मीठी बातें हर कोई कर लेता है, लेकिन मुश्किल समय में साथ निभाने वाले लोग ही सच में दिल जीतते हैं। बहुत ही सुंदर विचार, क्योंकि मुश्किल समय में सभी साथ खड़े हों ये संभव नहीं है। अगला विचार है दुर्गेश, राधेश्याम, वंदना, भावना, विंदु, गोलू, कुसमही, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे जी का। इन्होंने लिखा है कि उठो देखो सुबह का नज़ारा, हवा में है खुशबू और मौसम प्यारा, हंसते रहो खुश रहो सारा दिन, यही है मेरी शुभकामना तुम्हारे लिए हर दिन, चमकता सूरज खिलते फूल, ये बहारों का पैगाम है, आज का दिन आपको ढेर सारी खुशियां दे, यही मेरा सलाम है, हर सुबह खुद को एक नई उम्मीद दीजिए, जो भी सोचा है उसे पूरा करने की ताकत दीजिए। बहुत ही सुंदर विचार आपने भेजा है। इसी क्रम में दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा जी ने भेजा है कि वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, वक्त से सिर्फ सीखा जाता है। बहुत ही अच्छे विचार आप सभी ने भेजे हैं। और इसी क्रम में वारिस अली जी लिखते हैं कि आवाज़ की दुनिया के प्यारे से दोस्त को खान परिवार का प्यार भरा सलाम। किस किरदार की कहानी कब तक है क्या पता, कब किस पल कौन चला जाए क्या पता, आज ही सच है जी लो, कल कब जिंदगी मौत से हार जाए क्या पता। बहुत ही सुंदर विचार आप सभी ने भेजे हैं। ऐसे ही विचार आप हमें लिखकर भेजते रहिए। इसी क्रम में भेजा है मुकेश कश्यप, शीतल जी, सोनू, राजपाल, काजल, मानवी, लक्ष्य, मोहिनी, बलवीर सिंह जी ने। इन्होंने अपना विचार नहीं लिखा, लेकिन आप सभी ने अपना नाम भेजा है कि आप सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को जी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कोशिश होगी कि आप अपना विचार लिखकर भेजें।

अब पढ़ते हैं आपके विचार जो आपने हमें फेसबुक के माध्यम से भेजा है। पहला विचार भेजा है नीरा त्रिपाठी जी ने। लिखा है इन्होंने कि चापलूस और आलोचक दोनों में केवल इतना अंतर है कि चापलूस अच्छा बनकर बुरा करता है, जबकि आलोचक बुरा बनकर

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, फिर मिलेंगे फिल्म के इस खूबसूरत गीत के साथ। आवाज सोनू निगम, श्रेया घोषाल की, बोल समीर के और संगीत निखिल का।

कार्यक्रम का अगला व अंतिम गीत सुनिए सूर्यवंशम फिल्म से, कुमार सानू अनुराधा पौडवाल की आवाज में, बोल समीर के संगीत अनु मलिक का।

कुमार सानू अनुराधा पौडवाल के गाए इस खूबसूरत गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। जिले की हलचल। जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए कुशीनगर और गोरखपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कुशीनगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विवेक पांडे का।
1: भगवान बुद्ध की मां पर निर्माण स्थली कुशीनगर में त्रिविध पावनी बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार श्रद्धा भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम म्यांमार बौद्ध विहार में आयोजित किया गया, जहां प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित भारत में म्यांमार के राजदूत ऊ जाव ऊ तथा अनेक गणमान्य लोग शामिल हुए। इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बुद्ध के मार्ग पर चलकर ही विश्व में शांति संभव है। भारत ने विश्व को युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध का संदेश दिया है।
2: भगवान तथागत बुद्ध का सर्वकालिक महत्व है, आज भी है, कल भी था और आने वाले कल में भी रहेगा। और संसार के सबसे बड़े मंच संयुक्त राष्ट्र संघ से देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमने संसार को भगवान तथागत बुद्ध दिया है, हमने युद्ध नहीं दिया है, हमने शांति दिया है।
1: इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि पूरी दुनिया के लिए भगवान बुद्ध का संदेश आज भी प्रासंगिक है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कुशीनगर में विभिन्न बौद्ध विहारों के बौद्ध भिक्षुओं और स्थानीय लोगों ने आकर्षक शोभा यात्रा निकाली, जो नगर का परिभ्रमण कर माथा कुंवर स्तूप पर आकर सम्पन्न हुई। जनपद कुशीनगर में नगर पंचायत फाजिल नगर के अध्यक्ष पद के उप निर्वाचन हेतु मतदान एवं मतगणना भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गयी। अध्यक्ष पद के लिए हुए इस उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी श्रीमती सुनीता शाही ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के अवधेश सिंह को 713 मतों से पराजित किया। यह सीट उनके पति शत्रुमर्दन प्रताप शाही के निधन के कारण रिक्त हुई थी, जिस पर भाजपा ने उनकी पत्नी सुनीता शाही को उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया था। कुशीनगर जिले में मतगणना 2027 के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के अंतर्गत स्वगणना की प्रक्रिया विगत 7 मई से शुरू हो गई है, जो 21 मई 2026 तक चलेगी। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने जनपद वासियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में स्वगणना प्रक्रिया में सहभागिता करें तथा अपने परिवार, पड़ोस एवं परिचितों को भी इसके लिए प्रेरित करें। साथ ही प्रगणक एवं जनगणना कर्मियों का सम्मान करते हुए उन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
3: पहली बार डिजिटल जनगणना हो रही है, जिसमें आप सभी की व्यक्तिगत जानकारी गोपनीय रखी जाएगी और जन सूचना के अधिकार से बाहर रखा गया है। उत्तर प्रदेश में यह प्रक्रिया 7 मई 2026 से लेकर 21 मई 2026 तक संचालित की जाएगी। मेरा आप सभी से यह अनुरोध है कि राष्ट्र के इस महत्वपूर्ण कार्य में अपनी भागीदारी आप सुनिश्चित करें।
1: कुशीनगर जिले के पूर्व विधायक डॉक्टर बीके मिश्र का विगत 6 मई को निधन हो गया। वे लगभग 90 वर्ष के थे और कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। स्वर्गीय मिश्र कुशीनगर जिले की पडरौना विधानसभा सीट से सन 1980 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक निर्वाचित हुए थे। बाद में वे समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ पडरौना के खिड़किया शमशान घाट पर

0: किया गया, जहां भारी संख्या में लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी।
1: कुशीनगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गोरखपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है गिरीश नारायण चौबे का।
2: सार्वजनिक सड़क परिवहन के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने तथा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक बसों के संचालन पर विशेष जोर दे रही है। शहर के अंदर एक सीमित दूरी तक के लिए ई बसों के संचालन की कामयाबी के बाद अब उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम यूपी रोडवेज ने मध्यम और लंबी दूरी के लिए ई बसों के संचालन की कार्य योजना बनाई है। इस कार्य योजना के तहत गोरखपुर के दो प्रमुख स्टेशनों से 20 नई इलेक्ट्रिक बसें अयोध्या, बनारस, सुनौली सहित अलग अलग महत्वपूर्ण मार्गों पर दौड़ेगी। रोडवेज ने गोरखपुर से विभिन्न रूटों के लिए ई बसों का ट्रायल कर दिया है। यूपी रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक लव कुमार सिंह के अनुसार 9 बसें वाराणसी और 3 बसें अयोध्या के लिए चलाई जाएंगी। इलेक्ट्रिक बस के संचालन के लिए राप्ती नगर में हाईटेक चार्जिंग स्टेशन बनकर तैयार हो चुका है। ट्रायल के बाद अब रोडवेज अगले 10 दिनों में बसों के विधिवत संचालन की समय सारणी भी जारी कर देगा। ईंधन की बचत होने के कारण परिवहन निगम इसका लाभ यात्रियों को कम किराए के रूप में देगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तारामंडल क्षेत्र में वाटर बॉडी पर बने 2-लेन ब्रिज का लोकार्पण फीता काटकर जनता को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि तेजी से आगे बढ़ते देश प्रदेश के साथ ही गोरखपुर भी तीव्र प्रगति कर रहा है। 2017 के बाद गोरखपुर में विकास की विस्तृत श्रृंखला तैयार हुई है। विकास से बढ़ी सुविधाओं का लाभ लंबे समय तक प्राप्त होता रहे, इसके लिए नागरिकों को भी विकास कार्यों के संरक्षण की जिम्मेदारी उठानी होगी। सीएम ने कहा कि वर्तमान में 50,000 से अधिक नौजवानों को अकेले गोरखपुर के गीडा में उद्योगों के माध्यम से नौकरी और रोजगार प्राप्त हुआ है। गोरखपुर में चारों ओर 4-लेन 6-लेन की कनेक्टिविटी है। यहाँ एम्स बन गया है। खाद कारखाना और पिपराइच में चीनी मिल फिर से चल रही है। उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान, आयुष विश्वविद्यालय, चिड़ियाघर, बेहतरीन पर्यटन स्थल रामगढ़ ताल, कई होटल सहित अनेक सुविधाओं का यहाँ विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि वाटर बॉडी पर 2-लेन ब्रिज बनने से इस समूचे क्षेत्र में इंटरनल कनेक्टिविटी और मजबूत हो जाएगी। सीएम ने GDA के अफसरों से कहा कि वाटर बॉडी को रामगढ़ ताल के समकक्ष जोड़ने का प्रयास करें। उन्होंने स्वच्छता और सुंदरता को लेकर मोहल्ले स्तर पर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का आह्वान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि
3: गीडा में जो उद्योग लगे हैं उन उद्योगों के माध्यम से नौकरी मिली है या रोजगार की सुविधा अकेले गीडा में प्राप्त हुई है। ये गोरखपुर के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को प्राप्त हुआ। फर्टिलाइजर अलग है, एम्स अलग है, पिपराइच की चीनी मिल अलग है, आयुष विश्वविद्यालय अलग है, अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ अच्छे अच्छे होटल खुल रहे हैं, उन होटलों में अलग है। हर एक सेक्टर में कुछ न कुछ नया हुआ है।
2: पूरी दुनिया को योग का पाठ पढ़ाने वाले योग गुरु परमहंस योगानंद के गुरु स्वामी युक्तेश्वर गिरी की जयंती 10 मई रविवार को उनके अनुयायियों की ओर से धूमधाम से मनाई गई। योगदास सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से कार्यक्रम का आयोजन राजेंद्र नगर स्थित ध्यान केंद्र पर किया गया। अनुयायियों ने सबसे पहले गुरु के भजन गाए और फिर पुष्पांजलि आरती कर गुरु को याद किया। गुरु युक्तेश्वर गिरी से लोक कल्याण की कामना की। इस दौरान पूरा परिसर गुरु की भक्ति में सराबोर दिखाई दिया। गोरखपुर जिले में ज्येष्ठ मास का दूसरा बड़ा मंगल 12 मई को धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान शहर के बेतिया हाता मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर, तारामंडल स्थित बालाजी मंदिर के साथ विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना कर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने बड़े ही आस्था भाव के साथ बजरंगबली का प्रसाद ग्रहण किया।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक। जिले की हलचल कार्यक्रम समाप्त हुआ।
4: अब वक्त है उड़ान का, अब वक्त है पहचान का, अब वक्त है अपने हुनर को आराम

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युवावाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर। तू शायर है,
1: मैं तेरी शायरी। समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
2: तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी।
0: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा की सुनहरी यादों का एल्बम।

0: लिफाफों में बंद एहसासों के रंग, चिट्ठी आई है के संग। पहली
1: बार सुबह से रात तक आपकी आवाज आपके साथ।
0: सुनते रहिए आकाशवाणी प्रयागराज, धड़कन हर दिल की।

एहसास की धूप छाओं में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।

दूसरे के घरों में झाड़ू पोछा और ठीकरे के साफ करने का काम करती थी। साथ में जाने की वजह से मालिकों के बच्चों के पास स्कूली बस्ते और कॉपी किताबें देखकर उसके अंदर भी पढ़ने की ख्वाहिश बेदार हो गई। एक दिन ये बात उसके बाप के कानों तक भी पहुंच गई और बस वो हत्थे से उखड़ गया। मारते वक्त उसकी जबान से यही जुमला निकल रहा था कि तेरे भेजे में पढ़ने की बात किसने डाली है। वो चाह रहा था कि एक बार ये माँ का नाम ले ले तो उसे पिटाई का बहाना मिल जाए। हालांकि ये सच नहीं था, और अगर वाकई में माँ ने तालीम के लिए रगबत दिलाई भी होती तो वो अम्मी का नाम तो कभी नहीं लेता। मुजीब को इस बात पर अलबत्ता हैरानी हुई कि अब्बा को पढ़ाई से इतनी चिढ़ क्यों है। कितनी बार वो मुजीब की कॉपी किताबें फाड़ चुका है, मुजीब के हौसले उसके बाद भी पस्त नहीं हुए। हर बार नए अज़्म के साथ वो घंटों लगाकर किताबें फिर से जोड़ देता, और उसके बाद मुजीब को जो खुशी मिलती वो कोई दूसरा महसूस नहीं कर सकता। किताब की कदर व कीमत घर में मुजीब के अलावा कोई जानता भी नहीं, और वो माँ अपने मालिकान से भीख की तरह मांग कर लाते और बाप इस तरह फाड़ कर फेंक देता। वर्क से वर्क मिलाना और तमाम सफात के टुकड़े सलीके से जोड़ देना, फिर इस डर और एहतियात से कहीं छुपाना कि अब्बा के हाथ न लगे। एक कमजोर सी अम्मी जिसकी दस्तरस में कुछ भी नहीं था, तालीम की अहमियत से वो भी वाकिफ नहीं थी, मगर वो मुजीब की राह का रोड़ा नहीं बन रही थी। उसके अंदर ये ख्वाहिश पनपने लगी थी कि पढ़ लिख कर कहीं बाबू साहब जैसा बन जाए तो उसके दरिद्र दूर हो जाएं। इस एहसास के साथ चेहरे पर चमक सी आ जाती, उसकी खुशियों में बहुत इजाफा हो जाता। बहुत जल्द वो वक्त आ गया जब वो रवानी से पढ़ने और इमला लिखने भी लगा। अपनी इर्तका के बारे में वो माँ को बताता रहा। अम्मी को आंखों में कुछ ख्वाबों के अक्स तैरते दिखाई देने लगे। बच्चों को पालने में अम्मी जिस अजियत से गुजर रही थी मुजीब को बखूबी अंदाजा था। वो अपनी माँ की हिम्मत अफजाई करता रहा, जल्द ही इस मुश्किल से जिंदगी से छुटकारा दिलवा देगा। कमरे में 2 घंटे से मुजीब अब्बा के खर्राटे मुसलसल सुन रहा था। माँ इतना थक जाती है कि पढ़ने के बाद उसे कुछ होश ही ना रहता। इतनी गुर्बत थी कि वो कुछ भी खरीदने के लिए सोचते रहते। अम्मी को किसी ने नई रजाई दी थी जो उन्होंने मुजीब के हवाले कर दी। बहुत शदीद ठंड पड़ रही थी, इस नई रजाई में उसके 2 भाई और 1 बहन भी आसानी से सो जाते थे। माँ काम करने वाले घरों से खाने की चीजों के अलावा कुछ और दीगर अशिया भी लेकर आती। ये सब उसके बच्चों के लिए खुश होने के बहाने बन जाते। 2 दिन पहले मुजीब के नाम की एक जैकेट ले आई थी जिसे वो सोते वक्त भी नहीं उतारता कि मुबादा कहीं गायब ना हो जाए। 2 दिन से मुजीब के जहन में कुछ चल रहा था जिसकी वजह से वो कुछ फिक्रमंद था और अफसरदा भी। अगर कुछ बनना है तो उसे घर छोड़कर कहीं जाना होगा, वरना यहाँ उसका कोई ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हो सकेगा। लेकिन अम्मी और छोटे भाई बहनों को छोड़कर जाना क्या उसके लिए मुमकिन है? वो इसी बात को लेकर तजब्जुब में था। आखिरकार वो इस नतीजे पर पहुँचा कि शहर से बाहर जाने से पहले 1 दिन के लिए घर से गायब होकर देखे आगे क्या करना है। ये 1 दिन की फरारी के रद्द अमल के बाद तय किया जाएगा। निसफ रात गुजर चुकी थी। मुजीब ने लिहाफ से सर बाहर निकाला। घर में घड़ी या मोबाइल नहीं था कि वक्त का अंदाजा लगाया जा सके। ये तो उसे मालूम था कि उसका वक्त अच्छा नहीं चल रहा है। मुजीब बहुत एहतियात और खामोशी से उठा। डब्बे में कुछ पैसे पड़े हुए थे, उसने अपनी जेब के हवाले किए। फूंक फूंक कर कदम रखना इसी को कहते हैं। बहुत आहिस्तगी से कुंडी खोली और बाहर निकलकर दरवाजे बंद किए, और गली में आते ही कदमों की रफ्तार बढ़ा दी। चलते वक्त अब्बा का मफलर भी उठा लाया था। लैंप पोस्ट की रोशनी छन कर गली के नुक्कड़ तक आ रही थी। पीछे वाली गली कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। जल्दी उसे सवारी मिल गई जो स्टेशन जा रही थी। हालांकि मुजीब ने ये तय नहीं किया था कि उसे जाना कहाँ है। फिलहाल उसे यहाँ से निकलना था और इस वक्त स्टेशन पर रोशनी और भीड़भाड़ होगी। वहाँ पहुँचकर सोचेंगे कि आगे क्या करना है। सन्नाटे की वजह से 10 मिनट में वो अपनी मंजिल पर पहुँच गया। वहाँ की चकाचौंध और शोर शराबे में वो खो सा गया। उसे ये आजादी बहुत अच्छी लग रही थी। वो प्लेटफॉर्म की एक बेंच पर बैठ गया और ये तमाशा देखने लगा। काफी देर बाद उसका ध्यान घर की तरफ गया। अभी तो सब सो ही रहे होंगे, वो सोच रहा था। उसके आने से सिर्फ अम्मी परेशान होंगी और भाई बहन भी। अब्बा को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अचानक हफ्ते भर पहले की गई अब्बा से बात उसे याद आ गई, जब उन्होंने पूछा था कि ये बता कि पढ़ाई का भूत क्यों सवार हुआ है, पढ़ लिख कर आखिर तू क्या करेगा, तेरे भेजे में चल क्या रहा है। चंद लम्हों तक वो अब्बा के सवालों पर गौर करता रहा, फिर बोला कि अगर सच में कुछ पढ़ लिख गया तो आपको 1 दिन हैरान कर दूंगा। ये क्या बात हुई, हैरान तो तू अभी भी किए हुए, उस दिन आपको बहुत अच्छा लगेगा और गुस्सा भी खत्म हो जाएगा शायद। आखिरी लफ्ज होठों में दबकर रह गया। एक आदमी उसके सामने अखबार का बंडल पटक गया जिससे उसके ख्यालों का तसलसल टूटा। 2 लोग आ गए और उन्होंने पैकेट खोलकर अखबार बेचना शुरू कर दिया। मुजीब ने सिक्का निकालकर उस आदमी की तरफ बढ़ाया। उसने मुजीब को ज्यादा गौर से देखा, फिर सिक्के की तरफ। पढ़ लेता है, उसने सवाल किया। हाँ, सुनाऊं? मुजीब की आवाज में बला का एतमाद था। उसके अंदर खुशी और फख्र के अनार फूट रहे थे। पूरा अखबार उसने वहीं बैठकर खत्म किया। एक नई सुबह उसके सामने थी। वो

0: बाहर आ गया एक चाय और दो बिस्किट लिए। इतनी देर में ये सोच लिया था कि अब कहाँ जाना है। वहाँ से जॉगर्स पार्क ज्यादा दूर नहीं थी, वो उसी तरफ निकल आया। 3 घंटे बाद वो पार्क से बाहर निकला तो बाहर दाईं तरफ एक आदमी चटाई पर किताबें रखकर बेच रहा था। ये कोई निसाब या अदब से मुतालिक कुतुब नहीं थी बल्कि बच्चों के लिए ड्रॉइंग और मालूमात में इजाफा करने वाली किताबें थी। मुजीब एकदम ठहर गया, सरे वरक देख कर किताब के मौजू और मवाद पर गौर करता रहा। एक किताब आखिर उसने उठाई ली, किताब के औराक उलट पुलट कर देखे, मुख्तलिफ सूबों और ममालिक के नक्शे वगैरह के साथ जुग्राफियाई और तारीखी मालूमात के हिसाब से ये किताब उसे बहुत अहम और दिलचस्प लगी। उसने कीमत दरियाफ्त की और अदा कर दी। इस किताब में उसकी पसंद की और भी खासी चीजें मौजूद थी। किताब खरीद कर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। आखिरी सफे पर वर्ल्ड मैप यानी दुनिया का नक्शा मौजूद था। वो वहाँ से निकल कर टहलता भटकता रह कर अम्मी और भाई बहनों की याद भी सताती रही। वाही तवाही घूमते फिरते दिन गुजर गया। भूख लगी तो कुछ कच्चा पक्का खा लिया और फिर आगे सफर पर। शाम तक पैसे भी खत्म हो गए। किसी हद तक घर से जाने की ख्वाहिश भी पूरी हो गई थी। अंधेरा बढ़ने लगा था, अब घर की फिक्र भी बढ़ रही थी। उसे मालूम था कि अब्बा उसे बहुत बुरी तरह पीटेगा, पिटाई करेगा, लेकिन एक दिन अपने तौर पर आजादी से गुजारने की खुशी के अवज थोड़ी सी मार खा लेना खसारे का सौदा नहीं था। किताब और अखबार मजबूती से पकड़े वो एक टेम्पो में बैठ गया और जरा ही देर में घर के करीब भी आ गया। आवाज देकर उसने टेम्पो को रुकवाया और फुर्ती से उधर का सामने वाली गली में दौड़ लगा दी। ड्राइवर जब तक मामला समझ पाता वो रूपोश हो गया। 10 रुपए के लिए अब वो क्या पीछे भागता, वो गाड़ी लेकर आगे चला गया। मुजीब घर में दाखिल हुआ तो अम्मा ने दौड़कर उसे सीने से लगा लिया और प्यार करने लगी। भाई बहन भी करीब आ गए। बाप जमीन पर बैठा उसे ही देख रहा था। मुजीब ने नजरें मिलाने से गुरेज किया। उसे मालूम था कि वहाँ नफरत और इखारत के सिवा और कुछ न होगा। माँ ने पूछा कि कहाँ और क्यों चला गया था। उसने तमाम दिन की तफसीलात अम्मी को बतसुना दी। बाप जो इतनी देर से बैठा सारा तमाशा देख रहा था अब उसके उठने की बारी थी। वो जैसे ही उठा माँ मुजीब के सामने डटकर खड़ी हो गई। खबरदार, जो मज्जू को हाथ भी लगाया, मुझे जितना मारना है मार ले, मगर मुजीब पर अब हाथ नहीं उठाना वरना इस बार घर से ही अकेला नहीं जाएगा। शौहर ने बीवी का ये रूप और तेवर पहले कभी नहीं देखा। उसका फौरी तौर पर असर भी हुआ और वो अपनी जगह जाकर फिर से बैठ गया। इस वाकये को गुजरे एक हफ्ता गुजर गया। एक दिन मुजीब वो नक्शे वाली किताब खोले बैठा हुआ था और दुनिया के नक्शे को देख कर दुनिया को समझने की अपने तौर पर कोशिश कर रहा था। उसका इरादा था कि वो इस नक्शे में अपने तौर पर रंग भरकर दीवार पर लगा देगा। ये ख्वाहिश पूरी होने से पहले अब्बा ने किताब छीन ली और उसके टुकड़े करके हवा में उछाल दिए। नशे की वजह से उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। अब्बा घर से बाहर निकल गया। इस बार मुजीब के आंसू खुश्क हो गए थे और ये जख्म उसकी रूह पर लगा था। किसी तरह उसने तमाम टुकड़े यकजा किए और फिर बड़ी तवज्जो और इनमाक से जोड़ने बैठ गया। रोते हुए उसकी हिचकियां बन गई थी। अब्बा को क्या मालूम के कागज के इन टुकड़ों में मुजीब की जान बसी है। 15 मिनट बाद अब्बा घर वापस आ गया। वो जुड़ा हुआ नक्शा फिर से उसकी आंखों के सामने था। अब्बा का तो दिमाग घूम गया कि इतनी सी देर में ये कैसे जुड़ सकता है। इतने सारे टुकड़े बिल्कुल दुरुस्त तरीके से जोड़े गए थे, ये दूसरी किताब तो नहीं, उसने फौरन खुद से सवाल किया, लेकिन जोड़ सामने दिख रहे थे। अब्बा का नशा कमजोर पड़ गया मगर हैरानी और बढ़ गई थी। वो सोच रहा था कि इतने कम वक्त में तो ये काम मुमकिन नहीं। वो जाहिल और शराबी जरूर है मगर इतनी समझ तो रखता है। तूने ही जोड़ा है, उसने मुजीब से पूछा। मुजीब ने इस बात में गर्दन हिला दी। कैसे? अब्बा के सवाल पर हैरत और इस्तेजाब वाजे था। अब्बा, मैंने आपसे एक दिन कहा था कि मैं आपको हैरान कर दूंगा। हाँ, अब्बा की आंखों में तहय्युर बिदर आया। आज वही दिन है और ये कोई जादू वादू नहीं, कलाकारी भी नहीं। तो फिर? अब्बा की हैरत में तजस्सुस आ गया। मुजीब ने पहली बार उसकी आंखों में झांका, वहां नफरत या गुस्सा नहीं था। वो आगे बोला, अब्बा इस कागज के दूसरे तरफ एक आदमी का फोटो है। मैंने बस उस आदमी को जोड़ा है। मुझे पता था कि आदमी ठीक हो गया तो ये दुनिया का नक्शा अपने आप ही ठीक हो जाएगा। अब्बा की आंखें शायद इससे ज्यादा नहीं फैल सकती थी। पहली बार वो पूरे होशो हवास में था। मुजीब ने आज वाकई अब्बा को हैरान कर दिया था।
1: सामीन, अभी आप दुनिया के नक्शे में आदमी के उन्वान पर एक अफसाना समात फरमा रहे थे। अफसाना निगार थे जनाब शाहिद अख्तर साहब। और अब महफिल के माहौल को तब्दील करते हैं और कलाम शायर के तहत सुनवाते हैं मोहतरमा शगुफ्ता अंजुम साहिबा का ये उम्दा कलाम।
2: एक मतलब एक शेर हाजिर करती हूँ

0: आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से उर्दू प्रोग्राम नशर किया जा रहा था। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। आइए इसमें आज सुनते हैं विजय लक्ष्मी के गाए भोज।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज की कलाकार है करिश्मा। आइए सुनते हैं इनके स्वर में ये भजन।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीवी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबुधाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा, जिसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
2: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय ने ये जानकारी दी। ये प्रतिबंध यूरोपीय संघ, अमेरिका और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस वर्ष खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है। श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रूपये प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रूपये और तिल के लिए 500 रूपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था। सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी है। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त हो रहा था। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने विशाखापत्तनम स्थित पूर्वी नौसेना कमान का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इस नौसेना की संचालन, प्रशिक्षण और प्रशासनिक गतिविधियों की भी समीक्षा की। नौसेना प्रमुख ने बंगाल की खाड़ी में पूर्वी बेड़े की तैयारियों का भी जायजा लिया। आईपीएल क्रिकेट में विराट कोहली ने कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट की जीत के दौरान इतिहास रचा और कई कीर्तिमान ध्वस्त किए। कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। ये आईपीएल में उनका 9वां शतक है, जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी

0: खिलाड़ी के सबसे ज्यादा शतक हैं। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। उत्तर प्रदेश में बारिश, धूल भरी आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में कल 60 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने आज पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना व्यक्त की है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में आज बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है लोकमाधुरी कार्यक्रम। लोकमाधुरी कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं कामिनी श्रीवास्तव, सुभाष चंद्र यादव और साथी। तो सबसे पहले सुनिए कामिनी श्रीवास्तव के गाए लोकगीत। इनके स्वर में सुनिए ये देवी गीत।

लोकमाद्री कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे कामिनी श्रीवास्तव के गाए लोकगीत। लीजिए सुनिए सुभाष चंद्र यादव और साथी के गाए लोकगीत। इनके स्वर में सबसे पहले सुनिए ये देवी गीत।

लोकमाधुरी कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं सुभाष चंद्र यादव और साथी को। कार्यक्रम के अंत में सुनिए इनके स्वर में ये दादरा।

सुभाष चंद्र यादव और साथी के गाए दादरा के साथ ही लोक माधुरी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी जोहार और जय जोहार। कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: पगवंदी धमदा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हरखराम पटेल, कुंती पटेल, भूमि और चंचल पटेल।
0: और मुस्तफाबाद दिल्ली से लाल बाबू दीवाना।
2: शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल।
0: और मध्य प्रदेश से प्रहलाद जी।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा।
0: और बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी जी का।
2: संदेश भेजने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब स्वागत है आप सभी श्रोताओं का श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं गर्मी के प्रकोप से बचाव की।
0: जी श्रोताओ, पिछले दिनों हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के सामान्य तरीकों और इस मौसम में खान पान की।
2: जी
0: तो विमलेश जी, मुझे लगता है कि हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता से आज भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारी चर्चा किस विषय पर रहेगी, जरा श्रोताओं को तो बताइए।
2: अजीत जी, आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा प्राथमिक उपचार। यानी आज हम ये चर्चा करेंगे कि जब किसी को लू लग जाए तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए।
0: जी विमलेश जी, क्योंकि हमारे बहुत सारे ग्रामीण विद्यार्थी श्रोता भी हैं, वैसे सभी उपचार की विधियों को थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं।
2: जी,
0: लेकिन फिर भी हम चर्चा जरूर करेंगे क्योंकि हमें अपने प्रिय श्रोताओं और उनके परिवारों की चिंता है।
2: जी बहुत सुंदर। जी हाँ श्रोताओं, जब उमंग कार्यक्रम के द्वारा हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो जरूर हमें एक दूसरे का ख्याल तो रखना ही होगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि लू लगने के क्या लक्षण हैं।
0: इसके मुख्य लक्षण हैं चक्कर आना, अचानक बहुत तेज सर में दर्द होना, बहुत पसीना आना या बिल्कुल पसीना नहीं आना,
2: घबराहट, जी मिचलाना, बहुत तेज बुखार और दिल की धड़कन का तेज होना, भ्रम और यहाँ तक के बेहोशी।
0: श्रोताओं, ये सामान्य लक्षण हैं। लेकिन अब प्रश्न ये है कि यदि ऐसा किसी के साथ हो तो हम तत्काल क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा किसी के साथ और कहीं भी हो सकता है।
2: तो श्रोताओं, सबसे पहली बात यह है कि पीड़ित व्यक्ति को तुरंत किसी ठंडे स्थान पर ले जाएं और जहां तक संभव हो उसे लिटा दें। उसे धूप से तुरंत बचाना बहुत जरूरी है।
0: और तुरंत किसी छायादार पेड़ या किसी दीवार की आड़ में या किसी खुले कमरे में ले जाएं, किसी ठंडी जगह पर लिटाएं और उसके शरीर को ठंडा करें।
2: ठंडा करने के लिए उसे एक कपड़ा भिगोकर या ठंडे पानी से पोंछें और माथे पर गीला कपड़ा रखें। इससे पीड़ित व्यक्ति को कुछ हद तक जरूर राहत मिलेगी। किसी मोटे कागज या कपड़े से पंखा झलते रहें।
0: और यदि संभव हो तो कूलर या पंखा चलाएं। उसके तंग कपड़े और बेल्ट को ढीला करें। इससे पीड़ित के रक्त संचार में सहूलियत होगी और वह सांस भी ठीक से ले पाएगा।
2: यदि पीड़ित होश में है तो पानी, नींबू पानी, नारियल पानी या ORS दें, लेकिन धीरे धीरे ध्यान रखें, बहुत ठंडा पानी अचानक न पिलाएं।
0: और हाँ, एक बात बहुत जरूरी है जानना कि बेहोश व्यक्ति को मुंह में कुछ भी ना दें, उसकी सांस की नली अवरुद्ध या चोक हो सकती है और अतिशीघ्र डॉक्टर को दिखाएं। श्रोताओं, अक्सर ये होता है कि ऐसी परिस्थिति में हमें जल्दी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें और क्या न करें,
2: और इतनी देर में बहुत देर हो जाती है। यदि हम इन छोटी छोटी प्राथमिक उपचार की विधियों से परिचित रहेंगे तो यथासंभव किसी का जीवन जरूर बचा लेंगे।
0: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी जो हमने जनहित में प्रसारित की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से हमारा प्रश्न है। तो प्रश्न है श्रोताओं कि पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है।
0: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800044055 पर, जो है

0: हमारा IVRS नंबर। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। श्रोताओं, अब जब इतनी गर्मी है तो हम कुछ समय के बाद मानसून की उम्मीद कर सकते हैं
1: जी।
0: तो भाई, मानसून आएगा, वर्षा होगी, तो मेंढकों के तर्राने की आवाज भी तो सुनाई देगी
1: जी।
0: आइए सुनते हैं कार्यक्रम बरसात और मेंढक।
1: कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर निर्मित इस कार्यक्रम

0: कमली और सोमारू चले पानी लाने।
1: नदी नदी हमें थोड़ा पानी दे दो ना।
0: पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा,
2: बरसात हो तो मुझे पानी मिले।
0: कमली और सोमारू चले बादल लाने।
1: बादल, तुम यूं मुंह लटकाए क्यों टंगे हो? थोड़ा बरस जाओ ना।
0: बादल बोले,
3: मेंढक टर टर बोले तब तो हम बरसें।
0: कमली और सोमारू चले मेंढक के पास। मेंढक बोले,
4: हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं।
5: जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा।
0: मेंढक मान गए और टर टर करने लगे। टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे। नदी में पानी बहने लगा। कमली और सोमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सोमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली।
6: तो बच्चों, सुना आपने? बरसात नहीं हुई तो सब परेशान हो गए। नदी सूख गई, घास सूख गई और दूध भी नहीं मिला। तो जरा सोचो तो बच्चों, यदि वर्षा नहीं होगी तो और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? इसके बारे में अपने बड़ों से पूछो। और हाँ, याद है मेंढक ने की थी एक शिकायत कि बच्चे उसे पत्थर मारते हैं। तो बच्चों, हमें पशु पक्षियों जीव जंतुओं को सताना नहीं चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ, बरसात और मेंढक। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, बाल कलाकार रिद्धि, वान्या, नव्या, सोहम और लवीश, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक जगबंधु जाना तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं तो हमारे IVRS यानी इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और हाँ, आप हमसे हमारे ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी हमने सुना कार्यक्रम बरसात और मेंढक, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
7: कार्यक्रम में सूबेदार बाना सिंह की वीरता का वर्णन करते हुए बताया गया है कि उन्होंने किस प्रकार बर्फी

0: सियाचिन की ऊंची और बेहद खतरनाक पहाड़ी पर अपने साथियों के साथ आक्रमण करके दुश्मन की चौकी पर अधिकार कर लिया। इस वीरता के प्रदर्शन के लिए उन्हें भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है भारतीय सैनिकों के असाधारण शौर्य की गाथाओं पर आधारित श्रृंखला सीमा प्रहरी तुम्हें प्रणाम। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
2: सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में स्थित विश्व का सबसे सुंदर ग्लेशियर है। ग्लेशियर यानी हिमनद, बर्फ से बनी हुई नदी। ये नाम सुनते ही एक ऐसा दृश्य आंखों के सामने आता है जहां ठंड का साम्राज्य है, यानी ठंड ही ठंड। इसीलिए तो किसी ने इसके बारे में कहा है, सुदुर्गम दूर देश पथ शून्य तरु शून्य प्रांतर अशेष महापिपासार रंग भूमि। ऐसे हिमनद के ऊपर से अगर हवाई जहाज में भी बैठकर गुजरें तो इस अनोखे दृश्य को अच्छी तरह देखा जा सकता है। दूर दूर तक फैली मीलों लंबी सफेद चादर, और इस चादर पर पैर रखने की कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी जगह जहां पर तापमान ने शून्य से भी 40 डिग्री तक कम हो जाए उसकी कंपकपाने की क्षमता का अंदाजा लगा सकते हैं आप। और यही है सियाचिन की सबसे ऊंची चोटी, जहां स्थित है भारतीय सेना की बाना पोस्ट। सियाचिन पर स्थित इन चौकियों पर रहने वाले हमारे फौजी भाई कुछ वैसे ही बसते हैं जैसे उत्तरी ध्रुव पर इग्लुओं में जिंदगी बसर करने वाले एस्किमो। चारों ओर दूर दूर तक बर्फ का वीरान साम्राज्य, निर्जनता का सन्नाटा, और इन बर्फीली पहाड़ियों पर अपनी अपनी चौकियों की चौकसी करते भारतीय सैनिक।
3: नमस्कार सैनिक दोस्तों, आज हम अपने इस विशेष रेडियो कार्यक्रम में सबसे पहले पेश कर रहे हैं वाद्य संगीत।
4: अरे भाई कितनी ठंड है, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी भी कोई जगह हो सकती है। अरे जूस तक उबाल कर पीना पड़ता है।
5: जूस छोड़ यार, ये चाय भी चुस्की लेते लेते ही जैसे जम जाएगी। और ये अंडे, अंडे कम गोल्फ की गेंद ज्यादा लगते हैं,
4: आजा खेलते हैं।
5: अच्छा देख सब कुछ कितना शांत सा है यहाँ, जैसे जैसे सब कुछ रुका हुआ हो।
6: कहाँ सब रुका है भाई, कम से कम दो चीज तो हैं जो कभी नहीं रुकती।
5: अच्छा वो क्या?
6: एक तो ये जलता हुआ स्टोव, और दूसरा
5: हाँ
7: दूसरा क्या?
6: और दूसरा हमारा धड़कता हुआ दिल।
4: क्या बात कही है।

ये है बाना पोस्ट, जिसे भारत के एक परमवीर सूबेदार बाना सिंह के नाम पर रखा गया है। बाना सिंह का जन्म 6 जनवरी 1949 को जम्मू कश्मीर के कड्याल जिले में हुआ। उनके पिता अमर सिंह यूं तो खेतीबाड़ी से जुड़े थे, पर सैन्य जीवन से वे

काफी प्रभावित थे, शायद इसीलिए कि उनके काफी रिश्तेदार सेना में भर्ती थे। जब उनमें वे सैन्य वृत्ति की झलक देखते तो एक उम्मीद जगती कि कभी बाना सिंह भी फौज में भर्ती हो और उनका नाम रोशन करे। जब कभी छुट्टी आए सैनिकों को बाना सिंह देखते या मिलते तो बहुत खुश होते।

बात सन 1987 की है, जब पाकिस्तानी फौज ने सियाचिन ग्लेशियर में स्थित एक महत्वपूर्ण दुर्गनुमा स्थान पर कब्जा कर लिया था। महत्वपूर्ण इसलिए कि ये भूखंड आसपास की बर्फ से ढकी धरती से और भी 15,000 फीट ऊंचा था।

0: लिया था। महत्वपूर्ण इसलिए कि ये भूखंड आसपास की बर्फ से ढकी धरती से और भी 15,000 फीट ऊंचा था और यहां से दुश्मन की फौज हमारे सारे बचाव क्षेत्र, अड्डों व हर हरकत पर नजर रख सकती थी। एक छोटा परंतु अजेय दुर्ग, कैद पोस्ट, दोनों ओर से सीधी सपाट सफेद दीवारें, और उन पर चढ़ना तो नामुमकिन सा लगता था। भारतीय सेना के लिए इस पर कब्जा करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस पर कब्जा करने के लिए एक कार्यवाहक दल का गठन किया गया। काम था इस कैद पोस्ट को दुश्मन के चंगुल से छुड़ाना। काम बहुत कठिन था, ये जानते हुए भी बाना सिंह ने अपना नाम स्वयं निवेदित किया। वे इस कार्यवाहक दल में शामिल ही नहीं कर लिए गए, बल्कि टुकड़ी के नेतृत्व की बागडोर भी उन्हें ही सौंपी गई। बाना सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर योजना बनाई।
1: साहब, ये रास्ता तो बहुत मुश्किल है।
2: हाँ साहब,
1: यहाँ से कैद पोस्ट 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है।
2: जी साहब।
1: और प्लान के अनुसार तो हमें 2 गुनी लंबाई का रास्ता तय करना पड़ेगा।
2: बिल्कुल।
1: और इन सीधी सपाट दीवारों पर चढ़ाई तो और भी मुश्किल है।
2: बहुत मुश्किल। बिल्कुल, बिल्कुल।
3: देखो चुन्नी लाल, ये मैंने एक नक्शा बनाया है।
1: हाँ।
3: ये देखो, पास आ जाओ, आ गया हो, आ गया। ये देखो, ये इधर देखो, ये इधर से यहाँ से हम ऊपर चढ़ते हैं तो इस खड़ी चट्टान के कारण हमें कोई देख नहीं सकता।
1: हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब। रास्ता तो मुश्किल है, पर अगर जीत भी मिलेगी तो इसी रास्ते से।
3: बिल्कुल, यही मैं कहना चाहता हूँ।
0: मौसम जनवरी की जानलेवा सर्दी का था। हवा भयंकर रफ्तार से चल रही थी, हाथ सुन्न थे, सांस फूल रही थी और चारों ओर बर्फ ही बर्फ। दीवार की चढ़ाई शुरू की गई। भयंकर तूफानी रात। अभी एक तिहाई राह पार की थी कि दल का एक सदस्य गर्त में जा गिरा। लेकिन साथियों, उनके पास पीछे मुड़कर देखने का भी अवसर नहीं था। इससे विचलित होना पूरे ऑपरेशन को जोखिम में डाल सकता था। ये रणबांकुरे अपने कंधों पर सामान लादे, पैरों में कंटीले कीलों वाले बूट पहनकर रस्सियों के जरिए और कुल्हाड़ियों के सहारे ऊपर चढ़ते रहे। सुबह सवेरे कोई 5:30 बजे का समय था। तब उन्होंने लिया आखिरी पड़ाव। वहां से दुश्मन थोड़ी ही दूरी पर था।
4: साहब जी, अभी और कितनी दूर जाना है?
3: बस थोड़ी दूर और। वो देखो, उस गड्ढे के पास।
4: जी।
1: अच्छा।
0: बांध टूटने का समय आ गया था। बाना सिंह और उनके साथी पहले मोर्चे पर कूद पड़े।
3: उधर से दुश्मन आ रहे हैं।

0: यही रोक कर रखना, मैं दूसरे बंकर की तरफ पहुंचता हूं।
1: ठीक है साहब।
2: बाना सिंह कभी इस मोर्चे पर दौड़ते तो कभी उस पर, स्टैनगन से गोलियों की बौछार करते हुए, कभी संगीन घोपते हुए तो कहीं ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मनों पर वो कहर बरपा रहे थे। आखिरकार उन्होंने वहां से शत्रु का सफाया कर दिया।
1: जय हिंद कर्नल साहब।
3: जय हिंद बाना सिंह।
1: कर्नल साहब, अब कैद पोस्ट हमारे कब्जे में है, हमने एक एक को भगा दिया है।
3: वेरी गुड बाना सिंह, वेल डन।
1: थैंक यू सर जी, थैंक यू।
2: नायब सूबेदार बाना सिंह ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में परम उत्कृष्ट वीरता और विशिष्ट नेतृत्व का परिचय दिया, जिसके कारण उन्हें भारत के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और उस पोस्ट का नाम कैद पोस्ट से हटाकर बाना पोस्ट रख दिया गया। अभी आपने सुना विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि पर किस तरह बाना सिंह और उनके साथियों ने अपनी सूझबूझ व अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए अपने देश की मर्यादा को बनाए रखा। कितनी हैरानी की बात है ना कि इन बर्फ में लिपटे पहाड़ों पर और इस खामोश सफेदी के बीच कहीं कोई रंग नहीं, लेकिन नाम, नाम सियाचिन यानी गुलाबों का संग्रह।

सूबेदार बाना सिंह। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख एवं विषय संयोजन अनुभूति यादव, आलेख परामर्श सूबेदार बाना सिंह और मेजर जनरल सूरज भाटिया, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, दिनेश वर्मा, राजेश आहूजा, मंगत राम, सुनील लोहिया और आकाश आहूजा, तकनीकी निर्देशन पुष्पलता कुमार, ध्वनियांकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो। अभी आपने सुना कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह। और श्रोताओं, अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे।

श्रोताओं, तलत साहब की आवाज में जो दर्द और नज़ाकत थी वो सीधे दिल में उतर जाती है। फिल्म आरजू का ये नगमा आज भी उतना ही ताज़ा है।

श्रोताओं, तलत महमूद को किंग ऑफ गज़ल्स कहा जाता है। उन्होंने फिल्मी गीतों को गज़ल की तहजीब से नवाजा। उनकी आवाज़ की वो मशहूर कांपती हुई लय उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी।

श्रोताओं, अनिल विश्वास से लेकर मदन मोहन तक हर संगीतकार ने तलत साहब की आवाज को तराशा। उनकी गायकी में एक तहजीब थी, एक ठहराव था।

श्रोताओं, तलत महमूद ने फिल्म आराम, दाग, वारिस और डाक बाबू जैसी फिल्मों में अभिनय भी किया। हालांकि उन्हें गायक के रूप में अधिक सफलता मिली। भारत सरकार ने उन्हें 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित किया।

श्रोताओं, वक्त की पाबंदी हमें इजाजत लेने पर मजबूर कर रही है। तलत महमूद आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी मखमली आवाज की गूंज

श्रोताओं, एक ही कलाकार में आज के कलाकार थे गायक तलत महमूद। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। पेश है प्रोग्राम बोलते नगमे। वाचन स्वर है वंदना राठौर और नेहा गुप्ता के।

0: 14वें कार्यक्रम में। और जैसा कि अभी वंदना जी से कहा कि वंदना जी नजरों को झुकाने की बजाय एक बार ऊपर की ओर देखिए, ये आसमां कितना सुंदर है और इस आसमां में जो चांद तारे सितारे, ये जो धरती पे फिजाएं हैं, हवाएं हैं, गुनगुना रही हैं, कुछ नगमे चल पड़े हैं हौले हौले से, हौले हौले से।
1: नेहा जी,
0: हाँ,
1: ये जो हौले हौले से नगमे आ रहे हैं
0: जी,
1: ये जो लम्हे हमारे साथ में क्रिएट कर रहे हैं
0: जी,
1: नगमों के साथ में ये जो गुनगुनाहटे आ रही हैं, धीमे से बज रही हैं चारों तरफ, और उसमें से कोई एक बात निकल कर आ रही है जो बहुत ही पाकीज़ा है, पवित्र सी है, जो श्रोताओं को जरूर उनकी रूह को छू लेगी, ऐसा तो हम यकीन के साथ कह सकते हैं। तो आपको कोई सूत्र मिला?
0: हाँ, सूत्र मिला है श्रोताओं। एक फिल्म आई थी जोधा अकबर, आशुतोष गोवारिकर जी ने बनाई थी। जावेद अख्तर साहब ने ये जो नगमा लिखा है बहुत सुंदर लिखा है। उन्होंने इस लम्हे को जैसे मानो देखा हो, प्रेम को बढ़ते हुए देखा हो, पूर्ण होते हुए देखा हो, और जब प्रेम अपना रूप ले रहा होता है तो एक खास तरह की बारिश होती है, और उस बारिश में जो लोग भीगते हैं उसमें से जो रूहानी महक आती है वो बिल्कुल जुदा होती है।

0: नेहा जी
1: जी,
0: आवाज का ये जो तिलिस्म था
1: जी,
0: जब जब उनकी आवाज सुनाई पड़ती है किसी भी गीत में अगर हम कहें
1: जी,
0: तो ऐसा लगता है कि जो वो पुराना एक दौर था जब हम लोग मोहम्मद रफी साहब को सुन रहे होते थे
1: जी,
0: किशोर दा को सुन रहे होते थे, वो दौर लौट आया है। तो ये आवाज जो शख्सियत है वो भी बड़ी कमाल की है, सोनू निगम, और उनके साथ
1: वो है 24 कैरेट सोने जैसी आवाज वाली शहद से मीठी मधुश्री की। और नेहा जी ये देखिए कितना खूबसूरत सा परिदृश्य नजर आ रहा है सामने,
0: जो सूरज की रोशनी खिड़की से खुलकर और छन कर आती है, वो किस तरह से पूरे वातावरण को भव्यता से भर देती है। लगता है पूरा सोना एक जगह पर कहीं इकट्ठा हो गया है और वो सोना पिघल कर ऐश्वर्या राय के चेहरे पे जाकर समा गया है।
1: बिल्कुल, कहते हैं ना कि जब इस तरह के भाव उमड़ते हैं तो शायद जमी भी ठहरती है और आसमां भी नूर बन के बरसता है और वो देखना चाहता है कि शायद ये सदियों में कोई ऐसा होता है जो मोहब्बत करता है और उसकी मोहब्बत, वो जो कलमा पढ़ रहे होते हैं वो एक ही कलमा है और उसे सिर्फ और सिर्फ फरिश्ते दोहराते।

0: के जरिए कि जो एक इमेज हम लोगों ने अकबर की सोची थी जब मुगले आजम फिल्म देखी थी जहां पे पृथ्वीराज कपूर ने एक इमेज बनाई थी कि वो इस तरह से एक उनका पूरा ऑरा था, लेकिन जब ऋतिक रोशन का नाम सुना था तो ये लगा कि अरे ऋतिक रोशन कैसे इस भूमिका के साथ न्याय कर पाएंगे, लेकिन जब इस फिल्म को देखते हैं हम तब ही लगता है कि अरे वाह क्या बात है, क्या अद्भुत रूप और रंग नजर आया है, कितना उन्होंने काम किया होगा इस चरित्र को निभाने के लिए।
1: बहुत सच कह रही हैं आप जी। ये शायद एक्टर्स इसीलिए तो होते हैं नहीं
0: बिल्कुल
1: कि किसी भी रूप पे ढल जाए,
0: लेकिन अभी तक अगर वो याद आ रहे हैं नेहा जी तो इसके पीछे भी एक कारण ये है कि जो दूसरा गीत है जो
1: अब मैं समझी
0: बिल्कुल बेकरार है कि हमको भी श्रोताओं के साथ साझा कीजिए। तो वहां पर भी देखिए अलग रूप में
2: ऋतिक रोशन अपने नाराजगी और गुस्से के साथ साथ जो भावपूर्ण शैली होती है उसमें भी वो कमाल का असर छोड़ जाते हैं पर्दे पर,
0: जिसका हमने पिछली बार भी जिक्र किया था, उसी फिल्म का एक गीत लिया था नेहा जी,
1: अग्निपथ,
0: अग्निपथ फिल्म का। तो देखिए यहाँ पर भी उसी फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत, क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कोई और गीत चुने,
1: लेकिन ये गीत सुधीर श्रोताओं मैं सच कह रही हूँ कि जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आप कैप्टिवेट होते जाएंगे, आपको लगेगा कि आह पहले इस गीत को इस नजरिए से क्यों नहीं देखा और सुना था अच्छा लगेगा।
0: तो सुनते हैं।

0: अमिताभ भट्टाचार्य मतलब कैसे वो लिखते हैं, एक लड़की की कहानी जो पहले सहमी हुई सी रहती है, बहुत सारे ख्वाब होते हैं लेकिन वो ख्वाब जो हैं वो बंधे हुए रहते हैं, उसमें सुर तो हैं लेकिन वो लय नहीं है, वो बात नहीं है, और वो लय वो बात किसी के आने से किसी और की दृष्टि पड़ती है। वो कहते हैं कि हल्की सी कहीं कोई एक बूंद पड़ी और वो फूल खिलने सा लगा
1: जैसे कि प्रकृति पर जब पड़ती है प्रकाश की किरणें तो प्रकृति का हर एक कोना कोना चमक उठता है और उनसे साक्षात्कार हमारा होता है कि कितना कुछ है प्रकृति के भीतर समाहित है। और यही स्थिति पूरी तरह से परिलक्षित हो रही है जो हमारी फिल्म की अभिनेत्री है
0: प्रियंका चोपड़ा
1: जी। हाँ
0: सुधीर श्रोताओं, अजय अतुल का जो संगीत है इस गाने को, मैं कहूँ कि इस तरह से जैसे हमारे शरीर में आरएनए और डीएनए होते हैं ना, कि दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, नहीं तो कोई मतलब नहीं होगा, वैसे ही शब्द संगीत और आवाज़, मतलब ये जो तीनों कॉम्बिनेशन है इतना मधुर उसको बनाए रहे हैं, इतना मधुर कि मानो मन करता है कि रुक के बिल्कुल सब काम छोड़कर एक कप चाय हो और ये गीत हो।

0: नेहा जी
1: जी,
0: जो गीत है, जिस तरह से प्रेम में व्यक्ति कोई डूबा हुआ होता है और जब प्रेम की अभिव्यक्ति इस रूप में दिखाई पड़ती है जैसे कि अभी हम इस गीत को सुन रहे थे, तो जब ये बात होती है ना कि जिंदगी ने पहनी है मुस्कान,
1: क्या बात,
0: कहां से कौन सा शब्द लाकर कैसे उस बात को इतना भावपूर्ण अर्थपूर्ण बना देना, ये तो एक लेखक का कमाल होता ही है। और ये बात सच भी होती है कि जब भी कभी जीवन में ऐसे किसी भी व्यक्ति का प्रवेश होता है हमारे भी, तो ऐसा लगता है कि राहें वही होती हैं, सब कुछ आसपास का वातावरण भी वही होता है, हम भी वही होते हैं, लेकिन कौन सी ऐसी जादू की छड़ी ऐसी होती है सामने वाले व्यक्ति के पास कि सब कुछ नया नया सा लगता है, हर एक स्थिति जो होती है, परिस्थिति जो होती है, लगता है कि अरे ये तो अभी हमने पहली बार इसको हम महसूस कर रहे हैं।
1: तभी शायद वंदना जी और दोस्तों प्रेम के भाव को सर्वोपरि रखा गया ना इस दुनिया में
0: जी,
1: कि प्रेम में ही ऐसी ताकत है कि जर्रे को पूरा आसमां बना दे है ना। और इसमें एक और बात बड़ी अच्छी सी है सुधीर श्रोताओं, कि वो जो ख्वाब बिल्कुल शांत पड़े थे, जब वो दृष्टि पड़ती है, जब वो साथ मिलता है, कैसे जिंदगी करवट लेने लगती है, पूरा माहौल सिंदूरी हो जाता है। तो उस साथ के लिए बहुत ऑनेस्टी दोनों ने दिखाई इस फिल्म में, है ना, कि ऑनेस्टी कितनी, वफा की बात कितनी जरूरी है, तभी तो शायद ये लम्हा आता है।
0: और नेहा जी सबसे बड़ी बात ये कि ये जो सारा कुछ तिलिस्म रचा जा रहा है शब्दों के जरिए, संगीत के जरिए, लेकिन एक आवाज जो कि मनोभाव है प्रियंका चोपड़ा के, लेकिन उस मनोभाव को आवाज दे रहे हैं रूप कुमार राठौर।

0: वंदना जी, बात करते करते जब हम और आप इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे कुछ ऐसी धारा सी बह रही है। दोस्तों, सच में ऐसा लगता है हम दोनों को ही कि जिंदगी को कई बार हम लोग नए नजरिए से देखते हैं और महसूस होता है कि अभी तो देखा ही नहीं पूरा। ये जो गजल है साज जबलपुरी जी का ना, जो हम लोगों ने चुना है, बहुत सुंदर। चंदन दास जी बिल्कुल सौंधे से मालूम पड़ते हैं, प्यारे से मालूम पड़ते हैं।
1: ये आवाज जो चंदन दास

चंदन दास जी की वो आवाज जो शायद उस अंचल का प्यार और खुशबू और अपनायत लिए हुए है, जब वो अपनी आवाज से कहते हैं कि ये जो आरजू है दिल की, इसको ठुकराइए मत, ये मौसम कह रहा है कि मौसम के हम साथ हो लें। और वो फिर कहते हैं कि मुझको समझाने से अच्छा है

0: नेहा जी, अभी तो दो जो गीत सुने थे उन्होंने हमें किसी और ही दुनिया में पहुंचा दिया था, जो बड़ी ही खूबसूरत प्रेम भरी दुनिया थी जहां पर सिर्फ मिलन मिलन की बातें थी और खुशनुमा पूरा वातावरण था एक तरह से। लेकिन ये जब हम अभी गजल सुन रहे हैं तो इसमें बहुत कुछ ऐसा है कि जहां पर कुछ भीगी पुरानी यादें जो होती हैं, बहुत सारे हमारे तन्हाई जुदाई के जो दिन होते हैं वो सब एक के बाद एक बरबस हमारी आंखों के सामने आ गए और मन भीग गया, आंखें भीग रही हैं।
1: लेकिन वो कहते हैं ना कि ये जीवन चलता रहता है
0: जी,
1: द शो मस्ट गो ऑन।
0: तो चलिए इसी सूत्र को थाम लेते हैं नेहा जी, और अपने श्रोताओं को भी ये वादा करते हैं उनके साथ कि हम आपको कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेंगे,
1: नहीं छोड़ेंगे। और आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो लिखिए हमारा नंबर
0: 8004926250।
1: तो वंदना जी, दोस्तों से एक वादा करते हैं कि अगली बार आएंगे, मुलाकात होगी और जीवन को और उन नगमों को फिर से देखेंगे, गुनगुनाएंगे, दोहराएंगे और फिर से उस नदी में डूब जाएंगे, संगीत
0: मुस्कुराएंगे, खिलखिलाएंगे। तो चलिए इसी खिलखिलाहटों की छांव तले अब हम लेते हैं अपने दोस्तों से विदा और उनसे कहते हैं नमस्कार।
1: बोलते नगमे।
2: अभी आप बोलते नगमे प्रोग्राम सुन रहे थे, वाचन स्वर थे नेहा गुप्ता और वंदना राठौर के। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। 12 बजने को हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।

0: जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री तथा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चल रहे संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितताएं और व्यापार, प्रौद्योगिकी तथा जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक परिदृश्य को बदल रही हैं और ऐसी उम्मीद बढ़ रही है कि ब्रिक्स इसमें सार्थक तथा स्थिरता लाने वाली भूमिका निभाएगा। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। कल दूसरे दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स A20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री डॉ

0: जयशंकर ने आज सुबह नई दिल्ली में इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने व्यापक रणनीतिक भारत इंडोनेशिया साझेदारी की प्रगति और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान के साथ सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कृषि, डिजिटल अवसंरचना, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छ ऊर्जा से लेकर विनिर्माण तथा प्रौद्योगिकी भागीदारी के बाद अब भारत अफ्रीका सहयोग का अगला चरण उच्च मूल्य उत्पादों और एकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्मित होगा। कल नई दिल्ली में भारत अफ्रीका कारोबारी संवाद और प्रदर्शनी तथा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने यह बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज एनडीआरएफ के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में एनडीआरएफ की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
1: एनडीआरएफ को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान एनडीआरएफ के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम एनडीएमए और एनडीआरएफ ने किया है।
0: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल नई दिल्ली में कृषि मंत्री शिवराज चौहान से मुलाकात कर राज्य की विभिन्न कृषि चुनौतियों से उन्हें अवगत कराया तथा मूल्य वर्धित फसल खेती पर जोर दिया। श्री चौहान ने उन्हें आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार पंजाब के किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कपास, दलहन, तिलहन और बागवानी अभियान के लिए केंद्र और पंजाब सरकार मिलकर काम करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. A two-day BRICS foreign ministers meeting got underway in New Delhi today. The meeting is being chaired by External Affairs Minister S. Jaishankar. Foreign ministers and heads of delegation from BRICS member countries and partner nations are participating in the meeting. During the meeting, the foreign ministers will exchange views on global and regional issues of mutual interest. In his opening remarks, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said, "Peace and security remain central to the global order." He said the recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy. He emphasized that in this complicated and uncertain world, discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities.
3: Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global landscape. It can be leveraged for good governance and inclusive growth. Peace and security remain central to the global order. Recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy. There is also a deeply shared interest in strengthening cooperation against terrorism.
2: Foreign ministers of several countries are participating in BRICS meeting. They include Brazil's Mauro Vieira, Russia's Sergei Lavrov, Iran's Syed Abbas Araghchi, Indonesia's Sugiono, Dato Seri Utama Mohammed bin Haji Hassan from Malaysia, UAE's Khalifa Shaheen Al-Murad, and Ronald Lamola from South Africa, among others. Foreign ministers of BRICS member countries will also call on Prime Minister Narendra Modi this afternoon. The theme for India's BRICS chairship this year

आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज सुनिए पंडित किशन महाराज का तबला वादन। प्रस्तुत है तबले पर राग रूपक, कलाकार पंडित किशन महाराज।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप पंडित किशन महाराज से तबले पर रूपक ताल सुन रहे थे, और अब सुनिए शंकर ताल।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप पंडित किशन महाराज का तबला वादन सुन रहे थे। आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी पसंद। प्रस्तुत कर रही हैं मधु कुमार।

है कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मधु का प्यार भरा नमस्कार। और श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम का आरंभ हमारे एक श्रोता के इस संदेश के साथ, उनका नाम मैं आपको बाद में बताऊंगी। इन्होंने लिखा है कि मंजिल तो मिल जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकलते ही नहीं। और ये हमें लिखा है मधु कनौजिया, गोविंद कनौजिया, गौरी कनौजिया, हनी कनौजिया, बाला कनौजिया, और इन्होंने लिखा है प्रयागराज से। और एक गीत की भी फरमाइश की है, फिल्म का नाम है ये वादा रहा। और इस गीत की फरमाइश हमारे इन श्रोताओं की भी है।

है और इनके नाम है टीकमगढ़ से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली, सोनम और आशीष। बिलाईगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिंपल देवांगन। मथुरा से शारदा प्रसाद प्रजापति, गोविंद प्रजापति, नीलम प्रजापति, सिद्धार्थ प्रजापति, श्रीजी और इनके परिवार के अन्य सदस्य। उज्जैन से रेखा वर्मा, लोकेंद्र वर्मा। आगरा से राजू लवानिया। दादनपुर प्रयागराज से विकास और नीतीश आर्या। चलिए आपको सुनवाते हैं ये गाना, फिल्म का नाम है ये वादा रहा।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। तो श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आप भी अच्छे अच्छे संदेश लिखकर हमें भेज सकते हैं, जिसका प्रसारण हम अपने इस कार्यक्रम में करेंगे। और इसमें जुड़ने के लिए हम आपको एक नंबर भी बता रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए, जो हमारे नए श्रोता इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं। नंबर है 8004926250। नंबर एक बार फिर से 8004926250। और इस कार्यक्रम का प्रसारण दोपहर 12:30 पर हर सोमवार और बृहस्पतिवार को किया जाता है। तो श्रोताओं, चलते हैं हम अगले गीत की तरफ, और ये गीत भी बेहद ही मधुर गीत है, और फिल्म का नाम है कपूर एंड सन्स। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत, लेकिन उससे पहले हमारे उन श्रोताओं के नाम जिन्होंने दूर दूर से हमें खत लिखे हैं, और ये हैं गुजरात से धीरज वी रबारी, औरंगाबाद से अनिल कुमार घोड़के, वैशाली, प्राजक्ता, वैष्णवी, गायत्री और यज्ञेश, छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामूरिया, अजय देव, तुषार देव तामूरिया, डॉली, पूजा, आरती और प्रभा देवी, दुर्ग से संजय साहू, सुजाता, शशांक और सीमा, नवाशहर पंजाब से गगनदीप, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांक, प्रियम और वामिका। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

अगला गीत सुनवाने से पहले कुछ पंक्तियां याद आ गई, आप भी सुनिए। मन में मैल रखने से अच्छा है कि कड़वा सच बोल दिया जाए। इससे क्या होगा कि झूठे लोग तो दूर हो जाएंगे और सच्चे साथ रह जाएंगे। और अगर आपने सच की छलनी लगा दी तो आसपास भीड़ तो ज़रूर कम होगी, पर जो बचेंगे वो हीरे होंगे, पत्थर नहीं। तो आइए चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ। फिल्म का नाम है लुका छुपी और इस गीत की फरमाइश हमें आई है करनाल से, सुधीर, नूतन, संदीप, जगदीप प्रजापति, प्रतिमा शर्मा और इशिता, डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लकी और तानिया, हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, दुल्हापुर से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का लुका छुपी फिल्म का ये गीत।

किसी शायर ने भी क्या खूब बात लिखी है कि जिसे निभा न सकूं ऐसा वादा नहीं करता, जिसे निभा न सकूं ऐसा वादा नहीं करता, मैं बातें अपनी औकात से ज़्यादा नहीं करता, भले ही तमन्ना रखता हूं आसमान छू लेने की, लेकिन औरों को गिराने का इरादा नहीं रखता। देखिए, बहुत बड़ी बात इस शायर ने लिख दी है कि अगर आपको आसमान छूना है तो आपको किसी को गिरा कर नहीं, आप अपने परिश्रम पर विश्वास रखिए और आगे बढ़िए। जिस तरह हम आ गए हैं इस कार्यक्रम में अगले गीत की तरफ, और ये फिल्म है जीवा। इस गीत की फरमाइश आई है विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़ से, विनोद खड़ से, संभलपुर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, कीर्तिनगर नई दिल्ली से कविता मानसी, गौरव अरोड़ा, प्रीतम नगर प्रयागराज से प्रियंका, और बुंदेलखंड से बहादुर चक्रवर्ती, बालोद से देव शंकर तामूरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, पूजा, आरती, जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी कल्पित, बेबी करवी, मेरठ से दिग्दर्शन कविता कर्ण, शक्ति रिया, जया और दर्शन भाई। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

दोस्तों, ज़िंदगी में हमें ऐसे लोग तो मिल जाएंगे जो हमारे सामने हमारी बढ़ाई करते हैं और हमारे पीठ पीछे दुश्मनों की तरह बर्ताव करते हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि वो दोस्त मेरी ज़िंदगी में बहुत मायने रखते हैं। गौर से सुनिएगा, वो दोस्त मेरी ज़िंदगी में बहुत मायने रखते हैं जो वक्त आने पर सामने मेरे आईने रखते हैं। जी हाँ, सच्चा दोस्त तो वही होता है जो आपकी बुराइयों को, आपकी गलतियों को बताता रहे ताकि आप संभल कर चले। अच्छा दोस्त वो नहीं होता कि आपकी गलतियों पे पर्दा डालता जाए, वही है आपके सच्चे मित्र जो आपको संभालें ना कि बिगाड़े। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले गीत की तरफ, और ये फिल्म है चेन्नई एक्सप्रेस, और इसका एक गाना है बन के तितली उड़ा मन कहीं दूर। तो इस गीत की फरमाइश आई है पंजाब से भूषण खेड़ा, विशाल लाडी, शालिनी वाणी, जीवन सिंह और आरबी खेड़ा। आर नगर से उत्तम सिंह जंगहल, मोरस जंगहल, अनिल कुमार, अजित, आयुष और नंदनी। दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह और रिंकी शेखावत। तो सुनिए चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म का ये गाना।

अभी आप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद सुन रहे थे। प्रस्तुत कर रही थी मधु कुमार। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।
1: एक नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केन्द्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
2: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व

0: और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितताएं और व्यापार, प्रौद्योगिकी तथा जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक परिदृश्य को बदल रही हैं और ऐसी उम्मीद बढ़ रही है कि ब्रिक्स इसमें सार्थक तथा स्थिरता लाने वाली भूमिका निभाएगा। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कृषि, डिजिटल अवसंरचना, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छ ऊर्जा से लेकर विनिर्माण तथा प्रौद्योगिकी भागीदारी के बाद अब भारत अफ्रीका सहयोग का अगला चरण उच्च मूल्य उत्पादों और एकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्मित होगा। कल नई दिल्ली में भारत अफ्रीका कारोबारी संवाद और प्रदर्शनी तथा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने यह बात कही। कांग्रेस विधायक वीडी सतीशन केरलम के नए मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन के दौरान उनके नाम की घोषणा की। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज 3 दिन की यात्रा पर सिक्किम पहुंच रहे हैं। श्री सिंधिया कल टेमी तारकू में सिक्किम राज्य विश्वविद्यालय का दौरा करेंगे और भालेतुंगा में स्काईवॉक परियोजना तथा गंगतोक में ऑर्किडेरियम सहित विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर उन पर निशाना साधा। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि श्री गांधी पिछले 22 वर्ष से सार्वजनिक जीवन में हैं और इस दौरान उन्होंने 54 यात्राएं की हैं। श्री पात्रा ने आरोप लगाया कि उनकी विदेश यात्राओं पर लगभग 60 करोड़ रूपये व्यक्तिगत रूप से खर्च किए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत जागरेटेड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जागरेट टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। ये फेमा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी पेइचिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे चीन के राष्ट्रपति के साथ चर्चा के लिए बेहद उत्सुक हैं। श्री जिनफिंग ने ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानों से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ मुनक्कदा तब्दीली हिंद के नवे साल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि आज हमारे पास 7 मेट्रो शहर है। हिंदुस्तान की पहली रैपिड ट्रेन दिल्ली और मेरठ के दरमियान चली। अमनो अमान के हवाले से उत्तर प्रदेश के मुकर्रर करदा अहदाफ सबके सामने हैं। वजीर आला ने कहा कि आप उत्तर प्रदेश में जहां भी जाएं आपको तरक्की, सलामती, रोजगार और जरई तरक्की का एक नया मॉडल नजर आएगा। तमाम 75 अजला में बैक वक्त तरक्की हो रही है।
1: भारत का पहला एमआरओ वहां हम बना रहे हैं। लॉजिस्टिक का भारत का सबसे बड़ा हब वहां बनने जा रहा है। क्या नहीं है आज वहां पे कर जा सकती। 7 सिटी हमारी ऐसी है जहां आज के दिन पे मेट्रो का चालन हो। भारत की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच, इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में प्रारंभ का है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन, चाहे वह नेपाल के साथ हो, बिहार के साथ हो, झारखंड के साथ हो, छत्तीसगढ़ के साथ हो, मध्य प्रदेश के साथ हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो या दिल्ली, सबकी कनेक्टिविटी ये
0: गाजियाबाद।

0: अरे हम कहा तो से राम राम
1: राम राम जया, और अपने पनघट कार्यक्रम सुनने वाले सब भैया बहनी हरिन के
0: राम राम
1: राम राम।
0: सत्या बहनी,
1: हाँ
0: और बतावा का हाल चाल है?
1: बहनी हाल चाल सब कुशल मंगल है। और आज सवेरमा चली गई रहे बगिया, कहे से कि कल इतनी तेज आंधी आए बहनी कि अमुआ इतना झड़ गवा रहा है। हाँ। इतना झड़ देख के इतना दुख लागत रहा
0: छोटी छोटी कि हाँ,
1: बड़ छोट हर तरीके से तो लगा कि देखा जो उन बड़वार है तो चलो वो तो कोनो इस्तेमाल में आ जाये है, लेकिन जो उन छोटवार है उनका देख कर बड़ा दुख हुआ। मुना जो है प्रभु की कृपा से कोई कहाँ कुछ कह सकता है।
0: बिल्कुल सही देखा सत्या बहनी, ये सब तो देखा प्राकृतिक चीजें हैं और देखा ये अपने नियम से होत रही हैं।
1: बिल्कुल।
0: हाँ, पर एक बात बताइए सत्या बहनी।
1: हाँ?
0: कि अच्छा हम तो से आज कुछ कहे चाही थी।
1: हाँ?
0: अगर तो कहा तो हम कही
1: ले, आज तो का सोच के आयो जोन तो पूछे जरूरत पड़ गई बहनी।
0: देखा थोड़ा संकोच होत रहा और संकोच ई बात की रहा सत्या बहनी कि देखा जब हम तू बताओ कि तू बगिया गई रहो तो हम एक बात ये सोचा कि देखा तू बगिया गई रहो फिर ओके बाद घरे आई हुई हो तो काम करे जो उन कामकाज रहा हाँ, ओका करे हुई हो, फिर देखा लड़कन बच्चन में लग गई हुई हो तो देखा मतलब जब पूरा दिन व्यस्त बीत जाते तो एक पल के लिए मन में ऐसे मतलब एक आहट सी आवा थी, मन कहा था कि यार थोड़ा सा आराम मिल जाए शरीर का।
1: कभी कदम मन ऐसे कहता बस अब बहुत हो गया, थोड़ा अपने लिए है ना। लेकिन जानो तो जब कल आंधी आए तो रात में सोच लिए रहे कि सवेरे उठ के जाए पड़े बाग है ना, और तो सब सुबह थोड़ा जल्दी उठ के बाग गए, फिर आए घर का सारा काम निपटावत भय और जोन बटे फिर यहाँ दरे आवा। तो ये बात तो सही कहती हो, घर गृहस्थी के भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमारे बहनी हरे हम ही नहीं हमार बहनी हरे भी जैसे अपने आप के भुलाए बैठे थे।
0: हाँ।
1: उनकर मात्र मुख्य भूमिका इवा घर में सबके समय पे हर चीज उपलब्ध करावे। बच्चन का सवेरे स्कूल है, सुबह उठ के उन्हें तैयार व्यार कह के उनका टिफिन बस्ता भोजन पानी बनाए के उन्हें तैयार कह के विद्यालय के लिए भेजे, ओके बाद फिर शुरू हो जाता भैया हरन के बाहर जाए के बाद ओके लिए।
0: हाँ देखा सत्य बहनी बिल्कुल सही कहूँ तो देखा आज कस ना यही पे बत कही हो जाए कि देखा हमार जो बहनी लोगन है अपने लिए भी समय निकाले या अपने लिए भी समय निकालना है जरूरी।
1: बिल्कुल।
0: तो देखा जब हम एक स्त्री के मन की बात सुनी तो मन तो ओकर कहा था कि यार कुछ पल मिल जाए जेमा हम थोड़ा सुकून से जी ले, पर देखा ऐसा होत नहीं। काम काज और जो उन्हें इतनी जिम्मेदारी में वो जो उन्हें गढ़ी और मढ़ी जा रही है कि देखा मन चाहे जौन का है लेकिन अगर जिम्मेदारी सामने है तो मन की ना सुन के आपन जिम्मेदारी पूरी करिए कैसे है ना। देखा स्त्री का भगवान यही लिए बनाए, कहा जाता है ना कि स्त्री का है पूरे सृष्टि के लिए स्त्री की आवश्यकता कितनी महत्वपूर्ण है कि यदि स्त्री ना रहे पृथ्वी पर तो सब कुछ अधूरा है।
1: बिल्कुल सही कहती हो। कहा जाता ना कि जैसे सृष्टि के चलावे के लिए भगवान है ना, मुन घर गृहस्थी के चलावे के लिए स्त्री बनाए हैं है ना।
0: हाँ।
1: तो स्त्री जो बनाए हैं तो घर गृहस्थी का अपन दायित्व पूरा करे में अपने आप के भूल जाते हैं। मुन समय का मांग अब ई है कि कुछ अपने लिए भी जीना है जरूरी है ना।
0: बिल्कुल सही। और का देखा अपनी जिम्मेदारी के बीच खुद की जो मुस्कान है वो का भी जगह बनावे, मतलब वो भी जगह बनाए, थोड़ा आराम थोड़ा सुकून थोड़ा मैं भी जिंदगी में बहुत आवश्यक होता
1: है। बिल्कुल सही कहती हो, अपने आत्मसम्मान के लिए थोड़ा मैं ले आओ बहुत जरूरी
0: है। बहुत जरूरी है।
1: ओकरे साथे साथे हर चीज व्यक्ति के हर बहनी हरिन के मन में एक शौक रहता है जो घर गृहस्थी के मन पढ़ के अपन शौक के भूल जाती है। मुना जरूरी है कि अपने शौक के जिंदा रखें।
0: सत्या बहनी देखा कई बार हम एक बात ये देखी थी कि जो उन पुरुष होते, देखा ये बात पुरुष के लिए नहीं कही जा रही है कैसे देखा पुरुष का जो उन पुरुष होते हैं उनका कहा है कि देखा घर से निकल गए तो कुछ पल के लिए तो कुछ जिम्मेदारी से मुक्त हो गए, पर जब एक स्त्री जो उनके बाहर में नहीं कर रही है बाहर निकल के वो देखा अपन काम काज करके फिर जब घर लौटा थी तो देखा उस समय भी उनका दिमाग में वही चलत रहा था कि देखा अब घर जाके हम का ये काम करेगा।
1: बिल्कुल सही।
0: तो देखा कितना ज्यादा जिम्मेदारी से वो गढ़ी हुई है। तो इसलिए हम कहा कि देखा आज मतलब अपनी बहनी लोगन के लिए बात करब कि उनका सोचे चाहिए और हमका लगते कि कबो कब अपने मन से जो चिंता है थोड़ी देर के लिए दूर करके जो मन करे ओका कर भी लेगा चाहिए।

0: बिल्कुल। और अगर जैसे समय नहीं मिल पाता तो बच्चे स्कूल चले गए, भैया लोग चले गए, तो दोपहर बहुत काम रहा था हमें पता है, लेकिन वो दोपहर का समय काम के दें, लेकिन वो काम में से कुछ अपने लिए समय चुरावें,
1: हाँ
0: है ना।
1: बिल्कुल। और
0: अपने
1: का
0: शौक श्रृंगार की इच्छा हो तो ओका पूरी करें, जैसे कढ़ाई बुनाई का शौक हो ओका
1: ओका
0: करें,
1: करे।
0: कोई को पेंटिंग का शौक हो ओका करें, जो भी उनका मन करे खुद के लिए। नहीं तो अब आजकल सबके पास बड़ा वाला फोन है, ये है ना, फोन पे ही अपन रुचि के अनुसार चाहे किताब पढ़े, नावल पढ़े, कुछ भी जौन जौन चीज रहत हो, उपन्यास वगैरह।
1: देखा सत्य मैंने बिल्कुल सही कहो कि देखा मन का शांत रखना बहुत जरूरी है। और देखा मन तब शांत रहा थे यदि मन में उथल पुथल रहे ना तो कुछ अच्छा नहीं लगा।
0: बिल्कुल सही
1: और जब
0: कहती
1: मन
0: हैं।
1: शांत रहा थे तो मन में तमाम अच्छी अच्छी बात आवती, खुद से प्यार करे के मन करत है, सजे सवरे के मन करत है, और लोगन के साथ उठे बैठे के मन करत है। और नहीं तो यदि मन में अगर चिंता है तो कहूँ देखा मन नहीं लगत। तो देखा
0: बिल्कुल
1: खुद से प्यार जो ने एक स्वार्थ का नाम ना दे, हर स्त्री सोचे थे कि हम स्वार्थी हो गई का ये काम, अगर हम अपने लिए थोड़ा समय निकाल के हम स्वार्थी तो ना हो जाए।
0: नहीं बहन, देखो भगवान इतने प्रेम से ही काया बनाए हैं, है ना, तो जरूरी है कि हम थोड़ा समय अपने लिए भी दें।
1: बिल्कुल
0: अपने जो भगवान इतने अच्छे अच्छे विचार हमारे अंदर डाले हैं, तो हम अपने विचारन का थोड़ा उपयोग अच्छे से करी। अपने जो हमारी रुचि है, भगवान अगर हमारे अंदर कोई रुचि है तो ईश्वर ने ही डाला है ना वो रुचि,
1: बिल्कुल
0: तो
1: सही।
0: वो रुचि के लिए थोड़ा सा अपने लिए काम करें, रुचि के अनुसार चलें।
1: और
0: तो
1: का
0: उनका देखो अगर आप अपने मन पसंदीदा काम करी हो ना तो बड़ा मन प्रसन्न
1: प्रसन्न
0: रहता।
1: रहे। और देखा सत्य बहनी मन जो है हम लोगन के प्रसन्न रह बहुत जरूरी। कैसे हम सब लोगन से बहुत सारे लोग जुड़े हैं, देखा
0: बिल्कुल
1: ननवार गदेल होए चाहे बड़ पुरान होए, चाहे हमार संगी साथी हो या हमार रिश्तेदार होए, हमार जो है भाई बहन होए। तो देखा यदि हम खुश रह, हमार चेहरा पे एक मुस्कान रही, तभी तो हम अगले का भी एक मतलब अच्छा जीवन दे पाओ, अगला भी
0: बिल्कुल
1: सोची,
0: सही बात।
1: है
0: अगर
1: ना।
0: मन प्रसन्न रही तो हम प्रसन्नता से सबको
1: बिल्कुल
0: स्वागत कर सकी थे, है ना।
1: बिल्कुल। तो देखा जब खुद खुश रहा तबे दूसरन का भी खुशियां बांट सकब, है ना।
0: बिल्कुल
1: तो सत्य बनी कसना जब खुशी की बात होते तो एक खुशी और हुई जाए। बिल्कुल
0: अपने पनघटे पे ढोलक की थाप हो जाए, है ना।
1: सही। हाँ तो
0: तो
1: चला सुन
0: चल
1: लिया जाए,
0: सुनावा था इन कामनी श्रीवास्तव बनी एक नी नीक नी खेमटा।
1: चला सुन लिया जाए।

0: सत्या बहनी देखा खूब निक के गवनी सुनवाए दियो तो हमार मन खुश होएगा।
1: और का अंगन में अगर कचनार कलियां खिल गई हैं तो महक ना उठी अंगन
0: में। और का और देखा अब जब हमार अंगना भी महक चुका है तो अब देखा एक बात और बताई बातचीत है बैंक और देखा एमा बात किए हैं आलोक श्रीवास्तव से। आलोक

0: सत्य बहनी देखा खूब निक के गौनी सुनवाए दियो तो हम मार मन खुश होएगा।
1: और का अंगन में अगर कचनार कलियां खिल रही हैं तो महक ना उठी अंगन में।
0: और का और देखा अब जब हमार अंगना भी महक चुका है तो अब देखा एक बात और बताई बातचीत है बैंक और देखा एमा बात किए हैं आलोक श्रीवास्तव से
1: देखा बहनी आजकल के समय में हम सब लोग अपनी जरूरतन के पूरा करे के खातिर और जोन बटे तरह तरह के भौतिक सुख सुविधा लेवे के खातिर काफ़ी ज़्यादा खर्च कर दी थे जैसे बचत करब बड़ा मुश्किल हो जाता। मुला जब हम सब बचत के बारे में सोची था तो सबसे पहला नाम ख्याल में आवत है अगर तो वो होता

0: बैंक क। और जब हम सब बैंक में जाई थे खाता खुलवावे के लिए या फिर कुछ पैसा जमा करे के लिए, तो हम लोगन के मन में कई भ्रम होता, या उस भ्रम के दूर करे के लिए कई दिमाग में सवाल रहथिन जेकर जवाब भी लेवे के चाहिए। यही सब सवालन के जवाब देवे के खातिर आज हम सबके बीच में अपने पनघटे पर आए हैं आलोक जी। तो चला इन्हीं से जान लीन जाए कि बैंक व सरकारी योजना के कैसे के ई योजना है, ओकर लाभ का उठत है। तो सबसे पहले आलोक जी, आपका हमरे पनघटे पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आपसे हम ई जाना चाहब कि बैंक में जो सरकारी योजनाएं हैं जनता के लिए, लोगन के हित के लिए, उन्हें सहयोग देवे के लिए, तो उन योजनाओं में से कौन कौन योजनाएं हैं, थोड़ा ओके फायदे के बारे में, नुकसान के बारे में, ओके नियम के बारे में थोड़ा बताई हैं।
1: जी नमस्कार जी। जैसे आपने बोला कि बैंक व बैंक में सरकारी योजनाएं जो चल रही हैं, तो उसमें कुछ तीन चार चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको बताना चाहूँगा कुछ संक्षिप्त रूप में।
0: हाँ, हाँ,
1: विस्तार में तो नहीं।
0: हाँ, हाँ,
1: तो पहली जो योजना है हमारी वो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना।
0: अच्छा अच्छा।
1: इसमें क्या है कि कोई भी व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकता है, बशर्ते उसकी उम्र जो है वो 18 से 50 साल की उम्र के होने चाहिए। इसमें जो है, जैसे कि ये नाम से ही है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, यानी एक बीमा है ये, जिसमें 2 लाख का बीमा राशि दी जाती है व्यक्ति को।
0: अच्छा।
1: उसके लिए उसे वार्षिक जो उसकी किस्त होती है वो 436 रुपए की होती है, जो कि उसे सालाना एक बार देना होता है।
0: हाँ।
1: इसमें अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटनावश या किसी बीमारी से अगर होती है, तो उस एवज में सरकार जो है उनके परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता प्रदान करती है।
0: योजना कब चली रही, मतलब?
1: ये योजना 2014 से लागू है, जब से
0: अच्छा, तो 14 से अब ये 26 है ना। तो ये अब एक ही बीच के दौरान में का ऐसे कई व्यक्ति के लाभ मिल पावा है अभी तक?
1: कई लोगों को लाभ मिला है, ऐसे कई लोग हैं जिनको लाभ मिला है। जैसे कि अभी मैं एक आपको घटना बताऊंगा कुछ संक्षिप्त रूप में,
0: हाँ,
1: बहुत विस्तार में तो नहीं।
0: हाँ, हाँ,
1: तो पहली जो योजना है हमारी वो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना।
0: अच्छा अच्छा।
1: इसमें क्या है कि कोई भी व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकता है, बशर्ते उसकी उम्र जो है वो 18 से 50 साल की उम्र के होने चाहिए। इसमें जो है, जैसे कि ये नाम से ही है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, यानी एक बीमा है ये, जिसमें इस योजना का लाभ हम कहते हैं सभी को उठाना चाहिए। अपनी नज़दीकी शाखा में जाकर अपने शाखा प्रबंधक से मिल के इनसे आप जानकारी लें, वो विस्तार रूप में आपको बताएंगे और इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होगी।
0: अच्छा, जैसे ये आप बताएं कि एक तरीके से उनका जौन बटे जीवन बीमा योजना है, इकरे अलावा और कौन सी योजना है?
1: एक जैसा अभी आपको मैंने एक बताया, दूसरी जो योजना है वो भी है प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना।
0: अच्छा अच्छा।
1: इसमें क्या है कि अगर किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु दुर्घटना में होती है, तब उसके परिवार को इसमें 2 लाख रुपए दिया जाएगा।
0: अच्छा।
1: और इसकी जो वार्षिक किस्त होती है वो मात्र 20 रुपए सालाना होती है। आप 20 रुपए में 2 लाख का दुर्घटना बीमा कवर ले सकते हैं, जिसको हम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कहते हैं जो है।
0: अच्छा, ये योजना भाई। और जैसे कि बच्चन के लिए, खाते के लिए,
1: जैसे बच्चों के खाते के लिए आपने, हाँ, जैसे आपने बोला बच्चों के लिए, तो सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत जो है एक सुकन्या समृद्धि योजना खोली हुई है।
0: जी जी जी।
1: जिसमें बच्चे की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए तब आप ये खाता खुलवा सकते हैं। अगर बच्चे की उम्र 11 साल या 12 साल हो गई तब आप इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। तो इसमें जो दस्तावेज लगते हैं, मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। अगर आप इसे खुलवाना चाहते हैं अपनी बच्ची के लिए, तो उसका आधार कार्ड व जन्म प्रमाण पत्र अवश्य होना चाहिए। और जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे अगर आप 1,000 रुपए प्रति माह जमा करते हैं और बच्ची की उम्र 1 साल है, तो आपका साल में जो है 12,000 रुपए जमा होता है। और ये पैसा आपको जब तक बच्ची 15 साल की नहीं हो जाती,
0: हाँ,
1: तब तक आपको ये जमा करना रहेगा।
0: अच्छा।
1: 15 साल तक आप इसको आप

0: जमा करेंगे तो ये राशि जो आपकी आएगी वो आएगी 1,80,000 रुपये 15 सालों में, और इसकी निकासी जो होती है वो आप 21वें साल में होगी, जब बच्चे 21 साल की हो जाएगी तब ये निकासी कर सकते हैं। उस समय वो राशि इनको 5,39,000 के करीबन मिलेगी, और ये गारंटीड है, मतलब फिक्स है, बिल्कुल उतना ही पैसा आपको मिलेगा
1: मिलेगा।
0: वो।
1: बिल्कुल सही कहें आप, तो योजना बारे में बताएं। मुना, हमारे मन में भी कुछ सवाल है।
0: जी
1: हाँ, आप ये बतावें कि जैसे कि हम लोग खाता खुलवाई थे तो खाता के भी कई प्रकार होते
0: जी
1: हैं ना। तो जहमन से एक बहुत चलन में है बचत
0: जी
1: खाता, जेका कि सेविंग अकाउंट के नाम से भी लोग जानथिन। ओकरे साथे साथे एक और अकाउंट के बारे में हम सुने हैं, करंट अकाउंट,
0: जी जी
1: जेका कहथिन करंट खाता। हाँ,
0: जी
1: तो ई दोनों अकाउंट में का अंतर है, और ये दोनों अकाउंट के कौन कौन से लाभ कौन लोग ले सकथिन, एकरे बारे में थोड़ा बताओ, और इन दोनों के ब्याज दर के बारे में भी थोड़ा बताइए।
0: जैसे बचत खाता और करंट अकाउंट के बारे में आपने बताया, तो मैं इसको बड़ी सरल शब्दों में बताना चाहूँगा कि जो बचत खाता जो हम लोग खोलते हैं, जैसे कोई वेतन भोगी है या कोई छोटा मोटा काम कर रहा है, तो उन लोगों के लिए बचत खाता खुलता है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा लेन देन नहीं, मतलब एक सीमित तौर पर कर सकते हैं।
1: और जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है बचत खाता, तो इमरजेंसी के लिए
0: हाँ
1: अपने कुछ
0: जी
1: बचत कह
0: जी
1: के रखें।
0: जी जी और जैसे करंट अकाउंट आपने बोला, तो करंट अकाउंट जो मूलतः खोला जाता है वो व्यवसाय के लिए खोला जाता है, जिनका लेन देन काफ़ी अधिक होता है, जिन्हें ट्रांजेक्शन यानी लेन देन बहुत ज़्यादा करना होता है, तो उसके लिए वो लोग जो है करंट अकाउंट का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप बचत खाते में लेन देन की प्रक्रिया ज़्यादा करेंगे तो उसमें आपको गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स काटा जाएगा,
1: अच्छा,
0: और टैक्स से बचने का तरीका यही है कि आप करंट अकाउंट खुलवाएं। करंट अकाउंट के लिए जो आप व्यवसाय कर रहे हैं उसका GST TIN पिन नंबर होना चाहिए, आपका पैन आधार होना चाहिए। उसमें फिर अगर आप सालाना जो उसकी राशि है लेन देन की वो 20 लाख रुपए तक की है, अगर 20 लाख रुपए तक का करंट अकाउंट में आप लेन देन करते हैं तो उसमें कोई भी राशि नहीं काटी जाएगी,
1: अच्छा,
0: और अगर 20 लाख से ऊपर होता है तब उसमें 2% के हिसाब से टैक्स कटता है।
1: कहे के मतलब आप कही है कि बचत खाता सभी लोगन के लिए है अमन, और अगर हम करंट अकाउंट का बात करी तो ये एक तरीके से व्यापारी वर्ग के लिए, व्यवसायी लोगन के लिए ज़्यादा अच्छी है।
0: जी आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल जी।
1: अच्छा, ये तो आप अंतर बताएं, ये सही कहें कि व्यवसायी के लिए अलग है और आम लोगन के लिए जो बचत अपने भविष्य के लिए कुछ जमा पूंजी बचाए के रखा थी उनके लिए ये बचत खाता सेविंग अकाउंट होता। मुना, देखा जाता कि KYC जो नाम का अक्सर बैंकों में लिया जाता कि आपका KYC नहीं हुआ बा और ई नहीं हुआ बा, और अक्सर जो है काफ़ी लोग एक के लिए परेशान होते, और KYC हर 6ठे महीने या 8वें महीने जैसे कि, तो कई बार बार कराओ जरूरी है।
0: देखिए, KYC आपको जो है बार बार कराने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते अगर आप उसमें कुछ बदलाव ना करें अपने खातों में। पहला कि जैसे अगर आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करना है
1: हाँ,
0: तो उसमें आपको पूरी KYC करानी पड़ेगी,
1: अच्छा,
0: या तो अगर आप पैन कार्ड अगर आपके खाते में नहीं है, आप पैन कार्ड जुड़वाना चाहती हैं तब आपको KYC करनी होगी, या आधार कार्ड में आपने कोई संशोधन कराया है, अब उसको आप अपने बचत खाते में उसको आप सुधारना चाहते हैं, तो इस स्थिति में आपको KYC कराने की ज़रूरत पड़ेगी। बार बार KYC कराने की ज़रूरत नहीं है, होती है।
1: अच्छा,
0: अगर आपका खाते में किसी तरह की कोई आप जो है बदलाव नहीं चाहते हैं और सारी चीज़ें ठीक हैं तो उसमें बार बार KYC की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
1: अच्छा आलोक जी, कभी कदा ये देखे में आवत है कि बहुत से लोग अपने कुछ ऐसी आर्थिक समस्या में या कुछ ऐसी परिस्थितियों में फंसा रहथिन जिनमें उन्हें पैसे की तुरंत ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होता, तो देखा ही हर जगह से नात रिश्तेदार से तो नहीं मिल पाते। मुना, कभी कदा क्या होता, बैंक ऐसा एक सहयोगी रूप में उभर के सामने आवत है कि जो लोगन के लोन उपलब्ध करावथिन, है ना। तो एहमन लोन भी कई तरीके का होता, जैसे कि हम ज़्यादा तो नहीं जानित लेकिन सुने हैं कि CC लोन और पर्सनल लोन, ये सब जो लोन होता है, ये दोनों लोनन में का अंतर है।
0: देखिए, जैसे आपने बताया CC और पर्सनल लोन, तो जो पर्सनल लोन होता है, हम लोग बेसिकली जो है जो वेतन भोगी होते हैं,
1: हाँ,
0: जिनकी वेतन किसी भी शाखा में किसी भी बैंक में आ रही है, हम उनको पर्सनल लोन देते हैं। उसके
1: अच्छा
0: लिए उस व्यक्ति का वेतन भोगी होना बहुत ज़रूरी है।
1: अच्छा

0: मतलब उस बैंक में आपकी सैलरी, मतलब अकाउंट में आपकी सैलरी क्रेडिट हो रही हो, वो पर्सनल लोन के लिए होता है। और जो सीसी होता है, जिसे हम कैश क्रेडिट कहते हैं, कैश क्रेडिट ज़्यादातर हम छोटे व्यवसायी बड़े व्यवसायी इन दोनों को ही दिए जाते हैं। तो ये अंतर है, जो सीसी है वह व्यवसायी लोगों को दिया जाता है, और जो पर्सनल लोन जो आप बोल रहे हैं वो सैलरीड पर्सन को, यानी जो वेतनभोगी होते
1: अच्छा,
0: हैं।
1: ऐसे पूर्व जैसे हम लोग बात कह रहे करेंट अकाउंट का, तो मतलब सीसी लोन लेवे के लिए आपका करेंट अकाउंट
0: करंट
1: भी हो
0: अकाउंट
1: जरूरी
0: होना
1: है।
0: चाहिए, और
1: हाँ
0: कम से कम वो 6 महीने तक संचालित होना चाहिए सुचारू रूप से। ये नहीं होना चाहिए कि आपने 1 महीने में खोला, और क्यों, क्योंकि उसमें अगर संचालित आप करते हैं लगातार 6 महीने, तो उससे आपका लेन देन की प्रक्रिया दिख जाती है कि आप कितना लेन देन, कितना जमा निकासी कर रहे हैं। तो उसी के आधार पर फिर आपके कैश क्रेडिट की जो लिमिट होती है, जो सीमा
1: हाँ
0: होती है,
1: हाँ हाँ
0: वो बनाई जाती है।
1: अच्छा, ये तो बहुत अच्छा आप बताएं कि देखें अभी जो ऐसे पूर्व हम लोग ये आपका बचत खाता और जो बटे करेंट अकाउंट, तो करेंट अकाउंट का संबंध आपका सीसी लोन से पड़ता
0: सीसी
1: है
0: लोन से
1: ना।
0: जी।
1: तो एक साथ साथ आप भैया ये बताएं कि जैसे कि बहुत से लोग का होता अपने राशि के कुछ साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए कहते हम के फिक्स कराए देते है ना। तो ये फिक्स डिपॉजिट में आलोक जी, अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे फिक्स डिपॉजिट लोग करथिन है ना,
0: जी
1: तो कोई साल भर के लिए करथिन, कोई 2 साल के लिए करथिन, कुछ लोग 5 साल 7 साल। तो
0: जी
1: ये बताइए ये जो जमा अपन राशि कुछ दिनों के लिए रखथिन, तो एहमन ब्याज दर कैसे लगत है, और साल भर वाले में का लाभ होता, 2 साल वाले में, 5 साल वाले में, क्या तरीके से लोगन करावें।
0: देखिए, जो फिक्स डिपॉजिट किया जाता है वो, उसका जो समय अवधि होती है वो 1 साल 6 महीने या उससे ऊपर भी आप करा सकते हैं। वो ग्राहक के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या चाहता है। जो है इसमें जो ब्याज दर मिलती है, जो आपको बचत खाते में जो ब्याज दर मिलती है, उससे कई गुना ज़्यादा रहती है ये। जैसे अगर आप बचत खाता आपके खुला हुआ है, तो उसमें जो सालाना आपको ब्याज मिलेगी वो 2.60% सालाना उसमें आपको मिलेगा जो है। और वही अगर आप एफडी करवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट अगर आप करवाते हैं, तो उसमें आपको 6.5 से लेके 8.5% तक भी ब्याज प्राप्त होता
1: अच्छा,
0: है।
1: 5 साल वाले अवधि के लिए, 5 साल की अवधि के लिए अगर कोई जमा करती तो भी यही ब्याज दर रहता।
0: नहीं देखिए, इसमें थोड़ा सा चेंज होता है। अगर आप 1 से 3 वर्ष के लिए कराते हैं, तो उसमें ब्याज दर आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलती है। और अगर आप ज़्यादा समय के लिए कराते हैं, मान लीजिए जैसे 5 साल या 10 साल के कराते हैं, तो उसमें 1 या 1.5% का जो ब्याज दर है वो कम होता है थोड़ा सा, क्योंकि वे समय अवधि ज़्यादा रहती है उसमें।
1: अच्छा, ये आप तो बताएं जो बहुत सही बताएं मुना, आपसे बस हम ये जानना चाहब कि जैसे कि बहुत से पेंशनर होथिन भाई लोग जो अपने जो है सर्विस से जेकर नौकरी से निवृत्त, सेवानिवृत्त हो जाए के बाद, तो उन पेंशन भोगी जो होथिन तो उनका पेंशन आवत है, और जिस खाते में पेंशन आवत है ओमन नामनी भी कोई ना कोई रहत होई
0: जी
1: है ना।
0: जी
1: मुन्ना कोनो कारणवश पेंशनर अगर नहीं रह गए तो ओहमें उनके खाता में जो राशि है तो वो का राशि सिर्फ नामनी के मिली, काहे कि मान लीजिए केहू के 4 बच्चे हैं और उनके खाते में नामनी एक है, तो जो बचा हुआ राशि है तो वो सिर्फ नामनी के मिली या 3 और जो अतिरिक्त बच्चे हैं सब में बटी वो।
0: नहीं देखिए, अगर जो पेंशनर हैं और उनके खाते में अगर कोई नॉमिनी पहले से पड़ा हुआ है, और किसी कारणवश वो पेंशनर नहीं रहते हैं, तो जो भी धनराशि उस समय होगी वो सारी धनराशि नामित व्यक्ति को मिलेगी जो नॉमिनी है। तो उसमें बाकी अगर कोई उनके 2 या 3 बच्चे हैं या जो भी हैं, तो वो उनको नहीं मिलेगा। जो नॉमिनी में होगा उसी को वो पैसा मिलेगा। और अगर मान लीजिए कि उस पेंशनर के खाते में नॉमिनी नहीं है, तब वो पैसा अगर उनके 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चों में बराबर बराबर से
1: बट
0: बटेगा जो
1: जाए,
0: है।
1: बिल्कुल सही कहन, और आप देखें आयन हमरे पनघटे पर और इस तरीके से अच्छी अच्छी जानकारी दिए, हमें लगत है लोगन के मन में काफ़ी जो सवाल रहे हुए हैं अब वो भ्रम दूर हो गए हुई,
0: जी
1: सवाल का जवाब मिल गए हुई। तो आप हमरे पनघटे पर आयन और इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दिए ना, के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।
2: सत्या बहनी, देखा बातचीत कितनी अच्छी रही, और जो है अभिलाषा बहनी फरियाए फरियाए के आलोक जी से सब पूछिन।

0: देखा हो कितने अच्छे से सारी जानकारी दी, और हमार बहनी और भैया लोग इसे जरूर से फायदा लेंगे। तो देखा अब एक ही बात कसना गीत सुन लिया जाए, और देखा गीत है फिल्म है मिलन और सुनावती लता जी।
1: तो चलो सुना जाए।

0: सत्या बेनी, देखा कितनी अच्छी गीत रहा।
1: बहुत अच्छा।
0: अब देखा, जब बात अच्छी गीत की होते तो कसना कुछ हो जाए स्वास्थ्य के लिए। तो देखा आज अपने रसोई घर से है, बच्चों के लिए स्वास्थ्यवर्धक टिफिन कैसे बनाएं।
1: हाँ, कहे से कि बच्चन के अंदर सबसे ज्यादा नाटक रहता खाए में, और घर में सामने तो आप कुछ खिलाए भी सकत हो, लेकिन जब स्कूल का टिफिन ले जाती तो हुआ उनकर अगर इच्छा हो तब खाई है, नहीं तो फिर टिफिन वापस आवत।
0: बिल्कुल सही। और देखा ये सबसे बड़ी चिंता का विषय होते हैं देखा माँ के लिए, तो जब यदि माँ अगर देख ले कि बच्चा का टिफिन जो उन्हें वापस आएगा तो परेशान हो जाती, उनका लगा था कि का दे दे कि हम इनके टिफिन खत्म हो जाए। तो देखा टिफिन में स्वास्थ्यवर्धक तो हुए।

0: बात सही है, पर देखा उनके रुचि का भी होए।
1: बिल्कुल हा?
0: तो जब बात रुचि की होए तो देखा सबसे पहले तो हम तुमसे बताए, ज़्यादातर बच्चन का पराठा बहुत पसंद होता है, पालक का पराठा, मेथी का पराठा, और देखा ये सब जो है स्वास्थ्यवर्धक भी होते हैं। अच्छा देखा एक चीज़ और है, लौकी बच्चन नहीं खाते, तो जब नहीं खाते तो उनका जो उन्हें का करे कि देखा आटे माँ जो उन्हें लौकी कद्दूकस कर ले और फिर ओकाओमा सान के और छोटा छोटा पराठा बना दे और चटनी के साथ दे दे, देखा जो उन्हें टिफिन रोज खत्म हुई।

0: रहे कि देखा आटे में जो ने लौकी कद्दूकस कर ले और फिर ओका उमा सान के और छोटा छोटा पराठा बनाए थे और चटनी के साथ दे दे, देखा जो ने टिफिन रोज खत्म हो जाए।
1: बिल्कुल सही कहते हो। देखा यही तरह से कुछ बच्चे साग सब्जी भी नहीं खावा चाहते, तो अगर साग सब्जी आप बनाई हैं तो वही साग सब्जी थोड़ा आटा मिला के सान दे, है ना, और दे और बच्चे के समझावे कि ये आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक प्रद है और जो है स्वास्थ्य के ध्यान देवे समय हमेशा स्वाद पे न जाए, स्वास्थ्य के लिए सोचा है ना। कैसे बच्चन जैसे देखे हो बू बच्चन चुकंदर नहीं खावा चाहते, हाँ तो हम तो कहते बच्चन अगर चुकंदर नहीं खावा चाहते सलाद के रूप में ओमन, तो जैसे कि आप कोनो सब्जी बनावते हो या फिर कद्दूकस कहके कर बढ़िया हलवा भी बना सकत है।
0: देखा सत्य भाई जानत हो हम अक्सर कहा करी थी कि देखा गदेलन का जो है पाव भाजी बहुत पसंद होती है ना, तो जब हम भाजी बनाई थी तो अक्सर बच्चे भाजी की जो है वो कर रहे थे कि भाई हमका चाही या खाए का मन कर रहे थे, तो जब भी भाजी बनावे तो देखा हम अक्सर उमन नेनुआ डाल दी थी, कद्दू बाकी सब्जी तो जाते हैं ओके साथ साथ नेनुआ भी जाते, ओके साथ साथ जो है चुकंदर भी डाल दी थी, कैसे उसे रंग बहुत अच्छा आ जाता है और देखा पौष्टिक भी होता है, तो जो भाजी बना थी वो पूरी पौष्टिकता वाली भाजी हो जाती। तो एका देखा जब भी भाजी बनावे जब अब गर्मी का समय है तो जितनी भी सब्जियां होए ओमा सारी सब्जियां डाल के वो भाजी का तैयार कर ले और देखा बच्चन कितने मन से खा ले, उनको थोड़ा सा स्वाद दे दे हल्का सा मसाला डाल के और थोड़ा सा खट्टापन दे दे, देखा वो अपने आप बच्चन मांग मांग के खाए।
1: बिल्कुल सही कहती हो, जरूरत है कि कोने सूझबूझ के साथ उनका टिफिन बनावा जाए, थोड़ा आकर्षक बनावा जाए, कहे कि बच्चन देखा स्वाद पे नहीं जाते रंग और बनावट पे जाते हैं, है ना।
0: जाने तो सत्य भाई नहीं कई बार तो हम जब देखा हम भी देखा है लड़कन का जो ने टिकिया बहुत पसंद होती आलू की, है ना, तो देखा जो ने थोड़ा थोड़ा सा देखा आलू भी अपनी जगह पौष्टिक है, बच्चन खाए तो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, पर देखा घर बाहर की चीज से तो अच्छा है घर की चीज खाए, तो देखा छोटी छोटी से आलू जो है उबाल के टिकिया बनाए के उनका चाट की तरह बच्चन का दे दे, ओहू कबू कबू अच्छा लगा थे।
1: बिल्कुल
0: है ना। और देखा मटर आवा थी मटर की चाट बनाए के बच्चन का दे दे, उनका जब अक्सर कहा होते हम बच्चन के जो मानसिकता होती जब वो स्कूल पहुंचा थे विद्यालय पहुंचा थे तो अक्सर कहा होते कि कुछ लड़कन बच्चन जो ने इन तरह का कोनो बाहरी खाना ले आवा थी, तो जब बाहरी खाना देखा थे तो उनके मन ललचाते उनके मन भी कर रहे थे कि लाओ हम यही खा ली, तो जब उनके जो टिफिन में होते सादा खाना होते तो उनका मन नहीं भरत कि हम खाए हम कैसे खाए, तो देखा जब एक दूसरे का देख के बच्चन उनके मन ज्यादा करत है तो कस ना जो उन्हें जो उन टिफिन में है कुछ अच्छी अच्छी चीजें बना के दे, कद्दू देखा जो उन कद्दू होते है कद्दू का जो उन्हें अक्सर ही कहा करे कि जैसे थोड़ा सा कद्दूकस कर ले कद्दूकस करके ओका थोड़ा सा जो ने सब्जी की तरह बनाए के और देखा आटा मसान के
1: ओका बिल्कुल देखा बच्चन के अगर रुचिकर बनना था तो बच्चन भी खाथिन, जरूरी है कि उन्हें घुमाए के फुसलाए के अच्छे से खिलावे। मुना देखा अब हमार मन करता टे कि कसने एक और गौ नहीं सुन लीन जाए,
0: चला सुन लिया जाए।

0: देखा गीत तो सुन लिया गवा, पर अब वक्त है संदेश सुनने के।
1: बिल्कुल।
2: जहाँ बातन में होता अपनेपन का मिठास, माटी की खुशबू और दिल से दिल का जुड़ाव, जहाँ मिलके हम हंसी थे, बोली थे और आपन सुख दुख बांटी थे, ये हम सब का आपस में जोड़े का एक अदृश्य डोर है। बहनी हरिन, हमें बहुत खुशी हुए अगर आपो पनघट का हिस्सा बनी है।
0: तो हमका जरूर बतावें कि आप सबके हमारे कार्यक्रम कैसन लागत है, कौन बात आपका ज्यादा पसंद आवत थी और इमा आप नवा का जोड़े चाहत। आपन प्यारी प्यारी प्रतिक्रिया और सुझाव हमका ईमेल संदेश और व्हाट्सएप के जरिए भेजें।
3: हमारा ईमेल एड्रेस है
4: panghatprogram@gmail.com। स्पेलिंग है PANGHATPROGRAMME@gmail.com। panghatprogram@gmail.com। एमा कौनो प्रकार के कोई स्पेस ना हुई, सारे अक्षर छोटी ABCD या स्मॉल लेटर में हुई हैं।
3: हमारा व्हाट्सएप नंबर है 800-4926-250। तो सखियन देर कोनी बात के, तुरंत उठावें अपन मोबाइल और भेज दें अपने मन के बात, या तो लिख के या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके। आपके संदेश के हम सब के
5: बेसब्री से इंतजार रही।
1: तब बहनी अरन से विदा लीन जाए।
0: राम राम, राम, राम, राम बहनी अरन।

0: देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने भागीदार देशों को उनकी उपस्थिति और सहयोग मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स चल रहे संघर्ष के दौरान सार्थक भूमिका निभा सकता है।
1: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
0: बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे।
2: बैठक में ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोफ, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची, इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो, मलेशिया के विदेश मंत्री दातो श्री उतामा मोहम्मद बिन हाजी हसन, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मामलों के राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोलो सहित अन्य लोग भाग ले रहे हैं। कल दूसरे दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में भाग लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबूधाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को एक और नए स्तर पर ले जाने के लिए चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदारी के अंतर्गत ADNOC गैस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने 10 वर्ष के लिए लगभग $3 अरब के अनुमानित मूल्य के LNG आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात और भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA के अंतर्गत वर्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को $200 अरब तक पहुंचाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। UAE में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने आकाशवाणी विशेष बातचीत में कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है।
4: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब केवल व्यापार और निवेश तक सीमित नहीं रहे हैं। अब हमारी साझेदारी तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुरक्षा, संस्कृति और स्वास्थ्य जैसे कई नए क्षेत्रों तक विस्तार कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पूरा क्षेत्र अभूतपूर्व परिस्थितियों से गुजर रहा है।
3: UAE भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन चुका है, जहां भारत का निर्यात $37 अरब तक पहुंच गया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस ने 10 दिन से चल रही अनिश्चितताओं को खत्म करते हुए आज VD सतीशन को केरलम का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। ये घोषणा कांग्रेस नेताओं अजय माकन, मुकुल वासनिक और दीपा दास मुंशी ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान की। इस घोषणा के साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF राज्य में सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। UDF ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है।

0: असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्व सरमा की मंत्रिपरिषद के नवनियुक्त सदस्यों को विभाग आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रामेश्वर तेली को विकास, श्रम कल्याण और चाय बागान, जनजाति तथा आदिवासी कल्याण विभाग दिए गए हैं। अतुल बोरा पंचायत और ग्रामीण विकास, असम समझौते का क्रियान्वयन, सीमा सुरक्षा और विकास तथा उत्पाद शुल्क विभाग संभालेंगे। चरण बोरो को परिवहन विभाग और बोडोलैंड कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है। श्रीमती अजंता नियोग महिला और बाल विकास तथा पर्यटन विभाग संभालेंगी। निर्वाचन आयोग ने आज विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की है, जिसे 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। भारत ने कहा है कि कल ओमान के तट पर हुए भारतीय ध्वज वाले जहाज पर हुआ हमला अस्वीकार्य है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में वाणिज्यिक जहाजों और आम नागरिकों को लगातार निशाना बनाए जाने पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की ऐतिहासिक सफलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें त्वरित और समन्वित कार्रवाई तथा स्वदेशी हथियारों और प्रणालियों का उपयोग किया गया। नई दिल्ली में कलम और कवच के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में श्री सेठ ने कहा कि आधुनिक भारत नई चुनौतियों के समय में वैज्ञानिक अनुसंधानों को सैन्य शक्ति के साथ जोड़ रहा है। भारतीय सेना और नौसेना ने आज अंतर सेवा सहयोग को मजबूत करने और अधिक समन्वय को बढ़ावा देने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अंतर सेवा सहयोग को संस्थागत रूप देना और परिचालन सामंजस्य को मजबूत बनाना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज NDRF के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में NDRF की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
1: NDRF को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान NDRF के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम NDMA और NDRF ने किया है।
0: प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत जायग्रेड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जायग्रेड टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। पंजाब पुलिस ने 5 मई को जालंधर में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय के मुख्य द्वार के पास हुए विस्फोट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों ने बताया है कि आरोपी कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी के संपर्क में था। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। इस बीच उसी रात अमृतसर में एक सैन्य चौकी पर हुए एक अन्य विस्फोट की जांच जारी है। मध्य प्रदेश के देवास जिले की पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह के मुताबिक हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई है। फैक्ट्री में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर बिहार के अररिया जिले के बताए जा रहे हैं। संभागायुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर ऋतुराज सिंह मौके पर पहुंच गए हैं और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे को हृदय विदारक बताया है। डॉ. यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को निःशुल्क इलाज देने की घोषणा की है। लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स 2025 की रिपोर्ट में कल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में मान्यता दी गई। नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने प्रदेश को यह मान्यता दी। वर्ष 2023 तक जम्मू कश्मीर आकांक्षी प्रदेश की श्रेणी में था। वर्ष 2024 में इसे तेजी से प्रगति

0: करने वाले प्रदेश के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
1: बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में आज श्री जिनफिंग के साथ बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन का भविष्य उज्जवल होगा। ट्रंप के साथ अमेरिका के शीर्ष व्यापारिक नेता भी आए हैं। इनमें एनवीडिया के जेनसन हुआंग, एप्पल के टिम कुक, टेस्ला और स्पेसएक्स के एलन मस्क और ब्लैक रॉक के लैरी फिंक के नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये वर्ष चीन अमेरिका संबंधों के लिए ऐतिहासिक होगा। चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनावों के बारे में जिनफिंग ने कहा कि व्यापारिक संघर्ष में कोई भी विजय नहीं होता। राष्ट्रपति ट्रंप की यह यात्रा पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके बाद ईंधन से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आए व्यवधानों के बीच हो रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति वार्षिक आधार पर अप्रैल में 42 महीने के उच्चतम स्तर 8.3% पर पहुंच गई। पिछले वर्ष मार्च में ये 3.88% थी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अनुसार मुद्रास्फीति में ये वृद्धि मुख्य रूप से खनिज तेल, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस, मूल धातुओं, विनिर्मित उत्पादों और गैर खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने के कारण हुई। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की अमाली शूज को केवल 28 मिनट में हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना विश्व चैंपियन जापान की अकाने यामागुची से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक और चिराग शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के ब्रायन जेरेमी गुंटिंग और मोहम्मद हैकल की जोड़ी को हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबुधाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त।
2: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लोकगीतों के आज के इस कार्यक्रम में लीजिए पहले सुनिए फूलचंद्र और साथियों के गाए लोकगीत, पहले सुनिए देवी गीत।

0: और अब दादरा सुनिए, कलाकार हैं कुमकुम वैश्य।
1: मोरा पियावा विदेशवा।

इसी के साथ लोकगीतों का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर। 3 बजे हैं, हमारी आज की ये सभा अब समाप्त होती है। शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। श्रोताओं, हमारे विविध भारती के नेशनल नेटवर्क के कार्यक्रम जारी रहेंगे।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 4 बजे हैं, हमारी आज की सायंकालीन सभा आरंभ होती है। थोड़ी ही देर में आप संदेश टू सोल्जर्स प्रोग्राम सुनेंगे।

अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। मैं हूं आपके साथ विनीता बेदी। और दोस्तों, हर हफ्ते हमें रहता है इंतजार एक ऐसी शख्सियत से मिलने का इस कार्यक्रम में, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर उन्होंने अपना जीवन सेना के लिए समर्पित कर दिया और साथ ही साथ हम सबके लिए अनुभवों की एक मिसाल बन गए। और इस कड़ी में आज हमारे साथ हमारी अतिथि हैं भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे, जिन्होंने लगभग डेढ़ दशक तक भारतीय वायुसेना में अपनी सेवा दी है। रिटायरमेंट के बाद वे कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम कर रही हैं, साथ ही साइबर सुरक्षा इंफोसेक से जुड़े कार्यों में भी आप योगदान दे रही हैं। प्रतीक्षा ठाकरे का नाम विशेष रूप से उन महिला सैन्य अधिकारियों में लिया जाता है जिन्होंने भारतीय वायुसेना में नेतृत्व, अनुशासन और तकनीकी दक्षता का उदाहरण प्रस्तुत किया है। आपकी विशिष्टता और विशेषज्ञता रक्षा सेवाओं, नेतृत्व, सुरक्षा और तकनीकी प्रबंधन में रही है। हम आपका स्वागत करते हैं प्रतीक्षा जी, और संदेश टू सोल्जर्स में आज आपने समय निकालकर जो

0: यहां शिरकत किए इस कार्यक्रम में, उसके लिए आपके हृदय से आभारी हैं।
1: धन्यवाद विनीता जी, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच का हिस्सा बनना वास्तव में मेरे लिए सम्मान और गर्व की बात है, जहाँ मुझे पूरे भारत के सैनिकों तक अपना संदेश पहुँचाने का अवसर मिल रहा है।
0: जी शुक्रिया, इसलिए भी कि आपने आकाशवाणी में ना केवल आकर हम लोगों को अनुभवों का खजाना सौंपा है, बल्कि इसलिए भी कि आप इसके लिए हमारे ही आभार जता रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बात मैं कार्यक्रम शुरू करने से पहले ही आपसे कहना चाहती हूँ, यू आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल, आप इतनी यंग हैं, और ऐसे में जब हम आपके साथ रिटायर्ड शब्द इस्तेमाल करते हैं तो वो थोड़ा सा समझ नहीं आता, क्योंकि रिटायर्ड तो आमतौर पर व्यक्ति 60 साल की उम्र के बाद होता है, तो आप इतनी छोटी सी उम्र में रिटायर्ड कैसे हैं?
1: बात आपकी सही है, क्योंकि मैं भी रिटायर्ड ये शब्द थोड़े से बुजुर्ग लोगों के साथ एसोसिएट करती थी, बट क्योंकि मैंने अपने लाइफ के प्राइम 14 साल एयरफोर्स को समर्पित किए हैं और उसके बाद मैं सेवानिवृत्त हुई हूँ, इसी वजह से वो रिटायर्ड शब्द है, और वो मेरे लिए है पक्का, और डेफिनेटली इट इज नॉट फॉर द रैंक बट इट इज फॉर मी फ्रॉम द एयरफोर्स।
0: दैट्स सो सो ब्यूटीफुल। अच्छा एक बात बताएं, आपको कैसे लगा कि आपको एयरफोर्स में आना है, कौन था इसके पीछे या किससे आपको प्रेरणा मिली?
1: विनीता जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसके पीछे कोई व्यक्ति नहीं है, बट ये ऐसी एक चीज है जो मुझे विरासत में मिली है
0: जी।
1: क्योंकि अगर मैं शुरुआत करूं तो मेरे दादाजी स्वतंत्र सेनानी थे जो भारत की आजादी के लिए लड़े, उसके बाद परंपरा बढ़ाई गई मेरे फादर ने, जो इंडियन आर्मी में भर्ती हुए और 25 साल की सेवा जो उन्होंने देश के लिए की, उसके बाद वो रिटायर्ड हुए एज कर्नल, और परिवार की मैं तीसरी पीढ़ी हूँ जिसने सिर्फ यूनिफॉर्म वर्दी पहनने का सपना ही नहीं देखा बल्कि उसको जीने का सपना भी देखा।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसीलिए दोस्तों मैंने आप सभी से ये बात कही कि आज की हमारी अतिथि अनुभवों का खजाना है, और इतना कुछ है इनके पास हमें बताने के लिए, क्योंकि आपके परिवार में प्रारंभ से ही फोर्सेस के लिए बहुत रुझान रहा है ना, तो भारतीय वायुसेना में यानी इंडियन एयरफोर्स में जब आप आई तो वो एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा था?
1: अच्छा विनीता जी, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊंगी मेरे बचपन के तरफ, जहां पे मेरा सपना तो डॉक्टर बनने का था। जैसे उस टाइम पे जब मैं छोटी थी उस टाइम मेजरली दो प्रोफेशन ज्यादा नामचीन हुआ करते थे, एक था डॉक्टर दूसरा था इंजीनियर, की ये दो प्रोफेशन है तो आपने जिंदगी में कुछ पा लिया है नहीं तो नहीं। जो मैं अभी सोचती हूँ ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत बातें हैं, और भी बहुत अच्छे प्रोफेशन हैं, बट हालांकि उस टाइम मेरा सपना था डॉक्टर बनने का। और जैसे मैंने आपको बताया, मैंने घर पे एक ही प्रोफेशन देखा था, वो था देश सेवा का
0: जी।
1: तो तब मैंने ठाना कि अच्छा डॉक्टर बनूंगी तो डिफेंस फोर्सेस में ही डॉक्टर बनूंगी, ताकि मेरे दो सपने पूरे हो सके, एक तो देश की सेवा और देश के नागरिकों की सेवा। तो मैं पढ़ाई में अच्छी थी, पढ़ाई करती चली गई, अच्छा किया, बायो में मेरा काफी रुझान था, काफी इंटरेस्ट था, तो बायो लिया। जब मैंने प्री मेडिकल एग्जाम दिया तब मेरे उतने अच्छे नंबर नहीं आए कि मैं MBBS कर पाऊं, हालांकि इतने नंबर थे कि मुझे डेंटल में एडमिशन मिल सकता था, लेकिन उस टाइम ऐसा लगा कि नहीं, करना है तो MBBS ही करना है। तो जब मैं कॉलेज में एंटर होने वाली थी, उस टाइम मेरा 12th होने के बाद, मेरे फादर तब तक रिटायर्ड हो चुके थे और वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में नागपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे।
0: अच्छा।
1: हालांकि उन्होंने और मेरी मम्मी ने कभी भी मेरे ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला कि तुमने ये करना है या वो प्रोफेशन चुनना है, बट मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मेरे फादर के मन में था कि मेरी बेटी भी इंजीनियर बने उन्हीं की तरह। तो उन्होंने देखा कि मैं पढ़ाई में अच्छी हूं, तो उन्होंने बोला मेडिकल के तरफ अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ, इंजीनियरिंग कर लो, ये भी एक अच्छा प्रोफेशन है, वहां से भी तुम कुछ ना कुछ अच्छा तो कर ही लोगी, इतना विश्वास उनको मेरे ऊपर था। तो वहां से शुरुआत हुई कि ठीक है, इंजीनियरिंग की एग्जाम दी, मुझे एडमिशन मिला नागपुर यूनिवर्सिटी के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिला, वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच उस टाइम की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में एडमिशन ली, एंड फिर मैंने अपना करियर स्टार्ट किया इन इंजीनियरिंग। तब तक लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता था कि आधा सपना तो मेरा रह गया है जो है डॉक्टर बनने का।
0: हाँ।
1: लेकिन जो बचा आधा था शायद

0: वो भी कहीं छूटता नजर आ रहा था मुझे। लेकिन एक और बात बताना चाहूंगी विनीता जी कि ये हम जो कहते हैं कि हमने सपना छोड़ दिया, वो बात नहीं होती, सपना हमें नहीं छोड़ता, ये बात होती
1: ओह
0: है।
1: सो ब्यूटीफुल, कितनी प्यारी बात कही है आपने।
0: सो कहीं ना कहीं वो सपना मुझे ही चेस कर रहा था कि नहीं, तुम अगर डॉक्टर नहीं बनी हो तो डिफेंस फोर्सेस में तो पक्का जाओगी। सो दैट वाज द पॉइंट जब मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली जहां पे एयरफोर्स इंजीनियरिंग कॉलेज में नागपुर में रिक्रूटमेंट के लिए आए। मेरे कुछ फ्रेंड्स भी जा रहे थे तो मैं भी गई उनके साथ कि चलो जाते हैं, क्योंकि थर्ड ईयर तक हमारा प्लेसमेंट हो चुका था वन ऑफ द बेस्ट आईटी कंपनीज में।
1: हाँ
0: सो लाइफ तो सेट थी। एज अ यंग पर्सन मुझे लगता था लाइफ में और क्या चाहिए, आपका ग्रेजुएशन हो गया है, आपकी नौकरी लग चुकी है, पैसे कमाना है एंड लाइफ में मजे ही मजे हैं, ये होता था उस टाइम। एंड अभी भी काफी यंग लोगों का दिमाग में माइंडसेट ये होता है। बट स्टिल जैसे मैंने आपको बताया कि वो सपना था मेरे मन में कि वर्दी तो पहननी है, यूनिफॉर्म वॉज माई ड्रीम। सो वैसे करके देन रिक्रूटमेंट के लिए हम गए, एयरफोर्स ने एग्जाम्स कंडक्ट की। उस टाइम फास्ट ट्रैक एग्जाम एक होता था, उसमें एग्जाम हुई, क्लियर किया। एंड द नेक्स्ट थिंग जो मेरे ध्यान में है, मेरे जहन में है कि हम मैसूर पहुंचे, मैं और मेरे फ्रेंड्स, SSB देने के लिए। और आपको एक और चीज बताना चाहूंगी, SSB के जो वो 5 दिन होते हैं, मतलब वो लाइफ के आर द बेस्ट डेज, दैट इज द गोल्डन पीरियड। और एक संदेश जो मैं अभी देना चाहूंगी देश के सब यंग बच्चों को कि रिजल्ट कुछ भी हो लेकिन यू शुड एंजॉय, यू शुड एक्सपीरियंस दोज 5 डेज ऑफ SSB। वो आपको आपके खुद के बारे में इतना सिखाता है जो और कहीं आपको सीखने नहीं मिलेगा।
1: अमेजिंग। और ना सिर्फ सीखने को बहुत कुछ मिलता है बल्कि ये आपका वो सपना पूरा करता है कि आपके तन पर यूनिफॉर्म हो, मन में जज्बा हो और हमेशा आगे बढ़ने के लिए कदम उठें।
0: जी बिल्कुल।
1: और साथ के साथ आपके आपके कदम तो जमीन पर नहीं, आपके कदम तो आसमान के लिए है ना। तो आपने डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने का सपना ही नहीं देखा बल्कि इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन भी की। इसके आगे की यात्रा की बात आप से बिल्कुल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके इस आसमानी यात्रा की शुरुआत के लिए ये गाना विशेष रूप से आपके लिए समर्पित।

0: नया दोस्तों संदेश टू सोल्जर्स में स्वागत है एक बार फिर से आपका। मैं हूं आपके साथ विनीता बेदी और आज हमारी गेस्ट हैं इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे। और प्रतीक्षा जी, एक बात जो मैं आपसे जानना चाहती हूं इस गाने के बाद पर्टिकुलरली, कि क्या कभी कोई ऐसा है जिसने ये गाना आपको डेडिकेट किया है या कोई आपके लिए ये गाना गाता है?
1: जी हाँ बिल्कुल, ये है मेरे हस्बैंड जो खुद एयरफोर्स में है।
0: ओह नाइस, अच्छा अच्छा, वो भी एयरफोर्स में?
1: जी हाँ, वो अभी सर्विंग है, विंग कमांडर अभिषेक लूथरा मेरे हस्बैंड है। एंड बिल्कुल ये गाना वो कभी हमारे लिए गाते हैं, कभी हम उनके लिए गाते हैं।
0: बहुत ही बढ़िया। अच्छा एक बात बताएं, आप एयरफोर्स ने आपकी पर्सनालिटी को कैसे बदल दिया, क्या उसका क्या पॉजिटिव या क्या नेगेटिव तो नहीं ही है, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या आपकी पर्सनालिटी पे आया? क्योंकि आपने अभी तक जो कुछ भी अपने बारे में बताया प्रतीक्षा जी, मुझे लगता है कि आप तो पहले से ही काफी फोकस्ड और डेडिकेटेड रही, तो एयरफोर्स ने भी कुछ आप में बदला?
1: बिल्कुल, लेकिन एयरफोर्स जाने से पहले जो एक एडवाइस मेरे फादर ने मुझे दिया था, मतलब जस्ट मैं निकल रही थी एयरफोर्स अकेडमी डुंडिगल के लिए, और एक चीज जो आखिरी में उन्होंने मुझे जाते वक्त कही थी कि बेटा ये वर्दी है, ये कोई कपड़ा नहीं है, इसकी इज्जत करना, बिकॉज ये तुम्हें सम्मान और एक पहचान देगी। और उस लास्ट थॉट्स, लास्ट सेंटेंसेस के बाद जब मैं एयरफोर्स अकेडमी पहुंची, सो एक वो अलग दुनिया थी। जैसे मैंने आपको बताया मेरे फादर आर्मी में थे, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे ये नहीं बताया कि ट्रेनिंग में होता क्या है। और जब मैंने उनको वापस जाके पूछा कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं, तो उन्होंने बोला वो एक्सपीरियंस तुम्हारा खुद का था और मैं चाहता था कि वो एक्सपीरियंस तुम लो और उसको अपनी तरीके से ढालो, ना कि कोई पहले से दिमाग में कोई चीज लेके चलना, वो ठीक बात नहीं है।
0: Oh, that's so amazing. In fact, मुझे लगता है कि आपने ये जो बात कही है ना, ये उन सभी फादर्स को सुनना चाहिए जो अपने बच्चों के स्कूल बैग्स अपने कंधों में रखकर उनको बस स्टैंड पर छोड़ने के लिए आते हैं। They should learn कि प्रतीक्षा जी के फादर ने कहा था कि तुम्हें अपनी ट्रेनिंग खुद अपनी नजरों से अपने एक्सपीरियंस के साथ समझनी है, वही तुम्हारे काम आएगी। ब्यूटिफुल, बहुत ही खूबसूरत बात। अच्छा, अब ट्रेनिंग की बात आपने कही है, तो ट्रेनिंग के दौरान सबसे कठिन चुनौती, सबसे मुश्किल घड़ी आपके लिए कौन सी रही?
1: वैसे तो मुझे बताना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एज एक्स फौजी अगर मैं ये बोलूं तो कुछ लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, लेकिन ट्रेनिंग के टाइम जो सबसे मुश्किल चीज थी मेरे लिए थी, वो थी रनिंग।
0: रनिंग?
1: जी हाँ, ऑल्दो मैं स्पोर्ट्स पर्सन रह चुकी हूँ, मैं वॉलीबॉल खेलती थी, मैं बास्केटबॉल खेलती थी, लेकिन जो अकेडमी में जिस लेवल की रनिंग होती है, क्रॉस कंट्री होती है, उससे मैं डर जाती थी शुरुआत में। बहरहाल ट्रेनिंग होती ही इसके लिए कि आपको पहले ट्रेनिंग में मेंटली टफ बनाया जाता है, उसके बाद आप फिजिकली टफ तो बन ही जाते हो। तो वो एक शुरुआत की चुनौती थी जो मैंने कर ली थी, वो पार कर ली थी मैंने। लेकिन हाँ जी, अगर आप पूछेंगे तो एक रनिंग एक मेरा बहुत बड़ा खौफ था।
0: इसीलिए आपने जमीन छोड़कर आसमान चुना।
1: हो सकता है।
0: अच्छा एक बात और बताइए, विंग कमांडर बनने की जो आपकी जर्नी थी, उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं कि माइलस्टोन्स रहे आपके लिए?
1: जी, विंग कमांडर की जर्नी बिल्कुल आपको बताना चाहूंगी, बिल्कुल भी आसान नहीं है। डिफेंस फोर्सेस में जाना ही आसान नहीं होता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये एक और चीज बताना देश के सैनिकों को और जो एस्पायरिंग बच्चे हैं जो आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं, कि डिफेंस केवल एक नौकरी नहीं है, ये एक जीवन शैली है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ।

0: तो आपको पूरी तरह अपने में ढालनी पड़ती है, बिल्कुल आपको आपकी पास्ट लाइफ जो आप एयरफोर्स ज्वाइन करने से पहले जो चल रही थी, जो आपको लाइफ, आपको पूरी तरह छोड़नी पड़ती है, क्योंकि एक वे ऑफ लाइफ का कहने का मतलब ही ये है कि एक डिसिप्लिन लाना, डिसिप्लिन, इंटेग्रिटी एंड कमिटमेंट जो आपको आपके काम की तरफ देनी पड़ती है। तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं उस जर्नी में टू बिकम अ विंग कमांडर, स्टार्टिंग विथ पोस्टिंग्स। आपको अलग अलग जगह पोस्टिंग जाना होता है, आपके फ्रेंड्स छूट जाते हैं, और आपको एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट करना होता है, आपको बंदूक चलानी होती है, आपको फिजिकल फिट रहना पड़ता है। तो सारी चीजें आपके लाइफ में एक साथ हो रही होती है।
1: जी
0: सो दैट कम्स फ्रॉम योर मेंटल फिटनेस एज वेल एज फिजिकल फिटनेस। तो ये सारी चीजें आपको ट्रेनिंग में ही आपको तैयार किया जाता है ताकि आगे के लाइफ में आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहें।
1: अच्छा प्रतीक्षा जी, एक बात और बताइए, हम डिफेंस फोर्सेस की बात कर रहे हैं, डिफेंस फोर्सेस में डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट की जो इम्पोर्टेंस है आपकी नजर में क्या है? वैसे तो मुझे लगता है कि हमारी सबकी जिंदगी में, चाहे वो फोर्सेस में हो या सिविलियंस हो, टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन तो सबकी लाइफ में होना ही चाहिए।
0: जी
1: लेकिन जब हम फोर्सेस की बात करते हैं तब हम इसे बहुत हाईलाइटेड रूप में देखते हैं, तो एज पर यू इसकी क्या इंपॉर्टेंस है?
0: जी देखिए, डिसिप्लिन, आपने जैसा बोला कि डिसिप्लिन हर एक के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट डिसिप्लिन आप, मुझे नहीं लगता आप कभी अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं।
1: जी
0: एंड सक्सेस का पैरामीटर हर एक के लाइफ का अलग होता है। सो डिसिप्लिन आर्म फोर्सेस में इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देखिए, आर्म फोर्सेस बना ही इसलिए ताकि वॉर टाइम में हम काम कर सके और देश को प्रोटेक्ट कर सके। सो
1: बिल्कुल
0: उसके लिए पहला स्टेप ही, पहला कदम ही डिसिप्लिन है। अगर आप अपने काम में, आप अपने लाइफ में हर एक चीज को लेके डिसिप्लिन है, तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी आएगा, और टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। सेकेंड सेकेंड का भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप वॉर टाइम सिनेरियो देखेंगे तो हर एक सेकेंड का बहुत बहुत मेजर इंपॉर्टेंस होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम कम्युनिकेशन, ऑन ग्राउंड, इन एयर, फ्लाइंग, एवरीथिंग, हर एक जगह पे टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। सो इसीलिए जैसे आपने कहा, बहुत हाईलाइट किया जाता है क्योंकि डिफेंस फोर्सेस चलती ही इन दो चक्कों पे है, वो है डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट। कोई भी एक चीज अगर खराब हुई तो आपकी गाड़ी पटरी से नीचे उतर जाएगी।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, आप उन खास लोगों में से हैं, या कहना चाहिए कि उन महिला सैन्य अधिकारियों में से हैं जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स में लीडरशिप, डिसिप्लिन और टेक्निकल एक्सीलेंस का एग्जाम्पल दिया है।
0: जी
1: तो इस नजरिए से मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आपने लीडरशिप का सबसे बड़ा पाठ खुद क्या सीखा है? मतलब आपकी नजर में लीडरशिप की कौन सा ऐसा लेसन है जिसने आपकी पर्सनालिटी को वो बनाया है जो आज आप हैं और बड़े फक्र से सब आपका नाम लेते हैं?
0: जी लीडरशिप में मैं तीन चीजें आपको बताना चाहूंगी। एक है पेशेंस एंड पेशेंटली लिसनिंग, खुद धैर्य रखना और धैर्य के साथ सामने वाले की बात सुनना, ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात आती है ऑलवेज लीड बाय एग्जाम्पल। आप अपनी टीम को अगर आप बोल रहे हैं कुछ करने के लिए, पहले आपको करके दिखाना पड़ेगा। अगर आप बोल रहे हैं इंटेग्रिटी होनी चाहिए, तो आपको इंटेग्रिटी दिखानी होगी, आपको एथिकली एक्ट करना पड़ेगा। वो होता है लीड बाय एग्जाम्पल। और तीसरी चीज है आपकी टीम। आपकी टीम आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है, तो आपकी टीम का ख्याल रखना ये आपकी जिम्मेदारी होती है। दैट इज वॉट इज लीडरशिप फॉर मी।
1: दैट्स अमेजिंग, इतनी खूबसूरत डेफिनेशन आपने लीडरशिप की दी है। तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छी लीडर ना सिर्फ डिफेंस फोर्सेस में या इंडियन एयरफोर्स में रही हैं, बल्कि अब जो आप कॉरपोरेट वर्ल्ड में हैं, आपने वहां भी लीडरशिप की एक मिसाल कायम की होगी, मैं ऐसा मान के चलती हूँ। तो ये तो खैर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई आपने, ये कहकर कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन की क्या इंपॉर्टेंस रही है। बट अदरवाइज अगर आपसे ये कहा जाए कि डिफेंस की फील्ड में महिलाओं की भूमिका को आप कैसे देखती हैं, ये बात मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूं कि ना सिर्फ एक महिला होने का गौरव आप रखती हैं, बल्कि एक बेहतरीन ऑफिसर के रूप में आप जानी जाती हैं, आप रिटायर्ड हुई हैं, लेकिन आज भी लोग आपका नाम बहुत सम्मान से लेते हैं। तो

0: आपको क्या लगता है कि महिलाओं की क्या भूमिका है इस फील्ड में, रक्षा सेवाओं में खासकर?
1: जी देखिए, महिला या मर्द, मुझे लगता है दोनों में कोई फर्क नहीं है. फॉर दैट मैटर इवन डिफेंस फोर्सेस में कोई जेंडर बायस नहीं है
0: जी.
1: क्योंकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है. तो अगर मैं आपको मेरी ट्रेनिंग के डेज में लेके जाऊं तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो एक महिला होके मैंने नहीं की है या किसी और मेल ऑफिसर ने हमारे साथ जो थे ट्रेनिंग में उन्होंने ज्यादा की है या हमने कम की है. तो अगर ट्रेनिंग में भेदभाव नहीं है तो आगे भी कोई भेदभाव नहीं होता है. सो एज अ वुमन अगर आप मुझे पूछे तो बहुत जरूरी है कि आप आपके मेल काउंटर पार्ट्स के साथ कंधे से कंधा मिला के चले. और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक जो बंधन होता है वो हमारे दिमाग में होता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी. वो जो एक सेल्फ डाउट होता है वो हमारे अंदर होता है ना कि बाहर. बाहर सबको दुनिया एक समान देख रही है और स्पेशली डिफेंस फोर्सेस सबको एक समान ही देख रही है. तो एज अ वुमेन मैं बस इतना बताना चाहूंगी कि आपने अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करना चाहिए. आप उतनी ही केपेबल हो जितना एक मेल ऑफिसर होते हैं.
0: जी बेहतरीन. मुझे लगता है कि कोई जेंडर बायस एटलीस्ट डिफेंस फोर्सेस में नहीं है, ये बात आपकी इस स्टेटमेंट ने तो साबित कर ही दी है. तो अगर किसी के मन में ये वहम हो कि औरत है ये कैसे कर पाएगी, या महिलाएं कैसे इस फील्ड में जा सकती हैं, या आर्मी नेवी एयरफोर्स ये औरतों के लिए नहीं है, उन सब की बात का एक बहुत ही करारा जवाब आपने अपने इस स्टेटमेंट के द्वारा दिया है. हैट्स ऑफ टू यू, आई रियली गिव यू अप्लॉज फॉर दिस आंसर. और मुझे लगता है कि जिस तरह आपने इंडियन एयरफोर्स को अपनी भूमिका से बहुत गौरवान्वित किया है, तो ये बादलों का गाना तो आपके लिए बनता ही है.

0: संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप आकाशवाणी रेनबो पर। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त विनीता बेदी। मैं बहुत सारी बातें कर रही हूं प्रतीक्षा जी से, बहुत कुछ अच्छा जानने को भी मिल रहा है और काफी कुछ आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं। तो एक बात जो मैं आप सबकी तरफ से प्रतीक्षा जी से पूछना चाहती हूँ वो ये है कि आपके लिए अब तक अगर पूछा जाए तो आपकी जिंदगी का सबसे गौरव भरा पल कौन सा था, आपका प्राउडेस्ट मोमेंट ऐसा कौन सा था जिस पर आपको लगे कि ये वो पल है जो मैं सपना देख रही थी जिसका।
1: विनीता जी, वैसे तो काफी है। पहला तो था और अभी भी है, जो जिस दिन मैंने यूनिफॉर्म पहली बार पहनी वो पक्का मेरा एक प्राउडेस्ट मोमेंट था। बट उसके बाद मैं कहना चाहूंगी कि हर सैनिक के जीवन में एक ऐसा पल होता है जो सिर्फ याद नहीं रहता लेकिन उनके रूह में बस जाता है। और मेरे जीवन में एक ऐसा पल आया था 26 जनवरी 2015 में। 26 जनवरी 2015 में जो आरडी परेड हुई थी, रिपब्लिक डे परेड,
0: हां जी,
1: उसमें आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स का इंडिविजुअल ऑल वुमेन कंटिंजेंट बना था। और मैं उस कंटिंजेंट का पार्ट थी एयरफोर्स की तरफ से।
0: ओह वंडरफुल।
1: अब आप सोचिए, एक लड़की जिसका बचपन का सपना था यूनिफॉर्म पहनना, देश सेवा करना, अब वो देश के सबसे बड़े मंच पे खड़ी थी, वो था राजपथ। और पहले तो उसका सिलेक्शन हुआ, पहले तो 2 महीने की उसकी पूरी ट्रेनिंग होती है स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर, क्योंकि जनवरी एंड में होता है, 26 जनवरी को होता है पूरा परेड। तो पहले तो जैसे मैंने आपको बताया, वो मेंटल टफनेस से स्टार्ट होती है, फिर फिजिकल टफनेस पे जाती है, बिकॉज वो आसान नहीं होता है। वो परेड होती है लगभग 14 किलोमीटर लंबी परेड, जो आपको पूरे कंटिंजेंट के साथ ताल में ताल मिला के रिदम में आपको मार्च करते हुए जाना होता है
0: पूरे 14 किलोमीटर।
1: बिल्कुल। तो वो सिर्फ एक मार्च नहीं होती, वो एक गौरव होता है और एक अनुशासन होता है कि आप आपकी पूरी टीम के साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला के चले। और वो भारत की एक शक्ति का प्रदर्शन होता है पूरे विश्व के सामने। सो जब हम राजपथ पे चले, तब मार्च किया कंटिंजेंट के साथ, और फिर वो पल आया जहां हमने भारत के सुप्रीम कमांडर जो राष्ट्रपति थे उस समय के, श्री प्रणब मुखर्जी जी, और उनके साथ हमारे प्रधानमंत्री जी थे श्री नरेंद्र मोदी जी, और भारत के इतिहास में पहली बार अमेरिका के प्रेसिडेंट आए थे इंडिया में एज चीफ गेस्ट फॉर दैट ईयर, मिस्टर बराक ओबामा। सो एक वो जो सलामी थी
0: जी,
1: वो सिर्फ हमारी ट्रेनिंग नहीं थी, वो एक हर लड़की की मेहनत थी, हर महिला का सपना था, और उसके साथ हमको पता था पूरे देश का विश्वास है हमारे साथ। बट आज भी मैं उस पल को याद करती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो एक सिर्फ पल नहीं था, बट वो एक हर महिला, हर लड़की, इस देश की हर लड़की का एक वो सपना था कि उस राजपथ पे मैं चलूं। क्योंकि उस दिन मैंने एक और बात सीखी थी कि सीमाएं बाहर नहीं होती, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो हमारे दिमाग में होती है। और जब आप वर्दी पहनते हैं तो आप खुद को प्रूव नहीं करते, लेकिन आप आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाते हैं।

0: तो मुझे लगा वो उस तरफ हमने एक छोटा सा योगदान दिया था।
1: कितनी सुंदर बात आपने कही है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आप एक मिसाल बनते हैं, आप उनके लिए एक रास्ता तैयार करते हैं जिस पर चलकर वो आपसे भी आगे निकल पाएं, आपके सपनों को और अधिक बुलंदियों पे पहुंचा सके। बहुत ही खूबसूरत बात और बहुत सुंदर विचार है आपके। प्रतीक्षा जी, एक बात और बताइए, ये जब आपने अपना अनुभव बताया रिपब्लिक डे परेड पर, तो उस वक्त जब आप राजपथ पर थी, आपको अपने बचपन के उस सपने को पूरा होते देखने की खुशी तो होगी ही, साथ में ये भी फीलिंग थी कि आपने अपने पापा को प्राउड किया है आज।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं फिर से उस चीज पे जाना चाहूंगी जहां मैंने बोला कि आप सपना छोड़ सकते हो लेकिन सपना आपको नहीं छोड़ता है।
1: कितनी
0: क्योंकि
1: सुंदर बात।
0: एक और चीज मैं बताती हूँ आपको, जब मैं स्कूल में थी तब मैं एनसीसी में थी और तब भी मुझे मौका मिला था रिपब्लिक डे परेड पे जाने का, लेकिन तब दिमाग में था कि मेरी स्टडीज मिस हो जाएंगी, मेरी पढ़ाई मिस हो जाएगी, क्योंकि तब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी। तब मैंने दिल पे पत्थर रख के अपनी मैम को बोला था कि मैम मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी पढ़ाई मिस हो जाएगी। तो वो सपना मेरा शायद अधूरा रह गया था जो एयरफोर्स ने पूरा किया है।
1: हाउ स्वीट, कितनी प्यारी बात है ये कि आपने बचपन के सपने को बड़े होकर जिया, और ना सिर्फ जिया बल्कि दूसरों के लिए एक मिसाल बना दिया। बहुत ही सुंदर। अच्छा प्रतीक्षा जी, एक बात बताइए, आप तो इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा रही हैं, तो बहुत थ्रिल माना जाता है इस डिफेंस फोर्स को, तो आपका भी कोई थ्रिलिंग एक्सपीरियंस रहा होगा जो आज आप हमारे साथ बांटना चाहेंगी?
0: जी बिल्कुल। और थ्रिलिंग तो डेफिनेटली है, एयरफोर्स इज फुल ऑफ थ्रिल। और उस थ्रिल में मैंने एक जो काम किया था वो था पैरा जंपिंग का। पैरा जंपिंग एक ऐसा अनुभव रहा है मेरी लाइफ में जिसने मुझे बाहर से तो बदला ही है, जैसे एयरफोर्स ने मुझे बाहर से बदला है, लेकिन पैरा जंपिंग ने मुझे अंदर से बदल दिया।
1: क्या बात है।
0: उसका अनुभव ऐसा रहा कि Mi-17 हेलीकॉप्टर से आपको 5 जंप्स करनी होती है तब आप ट्रेन पैरा जंपर बनते हैं।
1: और ये जो 5 जंप करनी होती हैं, ये किसी टाइम पीरियड में करनी होती है?
0: जी ये 2-3 दिन के पीरियड में करनी होती है क्योंकि मॉर्निंग जंप्स होती है, आपकी नाइट जंप्स होती है, सो वो सब मिला के 2-3 दिन में आपको कंप्लीट करनी होती
1: सिर्फ
0: है।
1: 2-3 दिन में?
0: जी हाँ।
1: माय गॉड।
0: और उसके पहले अगेन हर एक चीज की ट्रेनिंग तो होती ही है, तो ट्रेनिंग के बाद फिर आप में वो कॉन्फिडेंस आता है कि आप जंप करें। और वो लगभग 3,000 से 5,000 फीट की ऊंचाई से जंप की जाती है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि वो सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं होता है, वो अपने अंदर का जो डर है वो निकालने के लिए होता है। और आपको मैं एक और चीज बताऊंगी, उस टाइम तक मुझे ऊंचाई का डर था, थोड़ा सा तो डर रहता था मुझे। और जब मेरी पहली जंप थी मैं इतनी एक्साइटेड थी उस पहले जंप के लिए क्योंकि वो होता है ना, इट्स एन अननोन टेरिटरी, आपको पता नहीं है क्या होने वाला है। तो पहली जंप तो बहुत मजेदार थी और इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस, इतना खूबसूरत अनुभव था वो कि आपको पता नहीं होता आगे क्या होने वाला है, बस एक एड्रेनलिन रश होता है, एक एक्साइटमेंट होती है।
1: जी
0: क्योंकि जैसे कहते हैं कभी कभी अनजानी चीज भी डराती नहीं है लेकिन आपको उड़ना सिखाती है।
1: हाँ,
0: लेकिन दूसरा जंप जो था वो थोड़ा अलग था क्योंकि तब तक मुझे पता चल चुका था कि पहले जंप में हुआ क्या था। तो दूसरी जंप में मुझे ऑनेस्टली बताओ डर लगा था और मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी सुसाइड मिशन पे निकली
1: ओ
0: हूं।
1: माय गॉड।
0: तीसरे जंप के बाद मैं बहुत कंफर्टेबल हो गई थी और एक मैजिकल फीलिंग थी उस टाइम पे क्योंकि आप जब जंप कर जाते हो आप वहां पे होते हो जहां पे और कोई शोर नहीं है, कोई नहीं है आपके आसपास, सिर्फ आप हो, चारों तरफ सन्नाटा है और आपकी अपनी सांस से आप सुन पा रहे हो,
1: इनर स्ट्रेंथ
0: इनर
1: बेसिकली।
0: स्ट्रेंथ। वो एक ऐसा पल है जब आपको लगता है कि एक पक्षी होना कैसे लगता है, दैट इज एक्चुअल फ्रीडम। एंड वो एक पॉइंट होता है जहां आप खुद से कनेक्ट करते हो।
1: ऑसम, कितना सुंदर एक्सपीरियंस रहा होगा आपका, और सुनकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं अगर आप देख सकें तो। मतलब ऐसा जब आप ये अभी एक्सप्लेन कर रही थी, ये बता रही थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे हम आपके साथ खड़े हुए और आपके साथ ही जंप करने के लिए नीचे झांक रहे हैं और भगवान को याद कर रहे हैं। तो ये आपका डिस्क्रिप्शन तो बहुत ही खूबसूरत है। आई मस्ट से कि आप बताती बहुत अच्छा है अपने अनुभव। और एक और बात

0: बताइए। देखिए अभी आपने अभी तक जो भी बात बताई वो आपकी सक्सेस स्टोरीज थी
1: जी।
0: क्या ऐसा कभी हुआ कि आपको किसी असफलता का सामना करना पड़ा हो? और अगर ऐसा हुआ तो फेलियर का डर और फेलियर से उबरना, मतलब उस डर को पीछे छोड़ना या उस डर से बाहर निकलना, ये आपका तरीका क्या है इसके लिए?
1: एक कहीं मैंने ये बड़ी अच्छी चीज पढ़ी थी कि असफलता अंत नहीं होता, ये बस एक नया रास्ता दिखाना और उसका दिखाने का तरीका होता है
0: जी।
1: सो फेलियर्स तो बिल्कुल आए हैं लाइफ में, बहुत फेलियर्स है और वो जिंदगी ही क्या जहां पे फेलियर्स ना हो।
0: हाँ,
1: लेकिन आपको लाइफ सिखाती है कि आप गिरिए, आप उठिए, आप अपने कपड़े झाड़िए, साफ कीजिए और आगे बढ़िए, ये जिंदगी है।
0: बहुत सुंदर।
1: तो आप जैसे पूछ रही हैं कि फेलियर्स काफी आए हैं, लेकिन हाँ इनिशियली एक जो सेटबैक लगता है आपको, एक थोड़ा सा धक्का सा लगता है, आपने उस पीरियड से जल्दी उबर जाना चाहिए। अगर आप उस फेज में ज्यादा दिन तक रहे या ज्यादा टाइम तक रहे, फिर वो फेलियर आपको खा जाएगा। एंड वही मेंटल टफनेस डिफेंस फोर्सेस हर एक इंसान को सिखाती है, रादर डिफेंस फोर्सेस तो सिखाती है, लेकिन एक संदेश जो मैं सबको देना चाहूंगी कि ये आपने खुद में भी डेवलप करना चाहिए कि फेलियर्स तो आएंगे, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं सबके लाइफ में फेलियर्स तो आए हैं, लेकिन कितनी जल्दी आप उन फेलियर्स से उबर के आगे बढ़ना सीख लेते हैं वो एक्चुअल लाइफ है।
0: बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। मुझे लगता है कि जो भी आपके साथ थोड़ी देर भी बैठ जाता होगा ना प्रतीक्षा जी, वो एक बेहतर इंसान बनकर ही बाहर निकलता होगा। आई एम श्योर फॉर दैट, बिकॉज यू हैव सच पॉजिटिव वाइब्स, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है आप में जो हर किसी को, जो भी आपके संपर्क में आता है उसको प्रेरित ही करता है, मोटिवेट ही करता है। अच्छा, आपकी इस, जब भी हम आपके एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो आपकी सेवा काल के दौरान ऐसा कोई आपका एक्सपीरियंस रहा जिसने आपको बहुत इमोशनल किया हो और मोटिवेट किया हो?
1: इमोशनल किया हो
0: जी,
1: ऐसे तो काफी इंसिडेंट हुए हैं, क्योंकि जैसे अगर मैं बोलूंगी कि कुछ चीजें, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे रहे हैं लाइफ में, मेरे प्रोफेशनल लाइफ में, जो स्टार्ट किए हैं बहुत ज्यादा मेहनत करके, रिसर्च करके, और फिर कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि अलग अलग उसके रीजंस हैं, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, बिकॉज देखिए गवर्नमेंट सर्विस है, आपका बजट होता है, काफी सारी चीजें होती है, तो किसी भी रीजन के वजह से शायद वो आगे ना बढ़े, तो तब बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आपने, मतलब मेरे नजरिए से मैंने उसमें अपनी लाइफ झोंक दी थी, लेकिन अगर उसका जो आउटकम मैंने एक्सपेक्ट किया था वो अगर नहीं मिला तो बुरा तो लगता है
0: जी।
1: लेकिन ठीक है, दैट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, एंड वही सेटबैक्स है जिसको आपको पीछे छोड़ देना है और आगे बढ़ते चले जाना है।
0: इसी बात पर हम एक गाना सुनते हैं जो मोटिवेट भी करता है और इमोशनल भी कर देता है। केसरी फिल्म का गाना जो आपको बेहद पसंद है, संदेश टू सोल्जर्स में आज आप हैं दोस्तों इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे जी के साथ।

0: विचार आ रहे होंगे। तो मैं अब आपसे यही पूछना चाहती हूँ प्रतीक्षा जी कि अगर युवा इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, पहली बात, और दूसरा एफकैट और सीडीएस जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आपकी क्या सजेशन है युवाओं के लिए?
1: जी विनीता जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है क्योंकि मेरे हिसाब से ये प्रोग्राम, ये मंच उसी
0: रहे होंगे उनके मन में किस तरह के विचार आ रहे होंगे। तो मैं अब आपसे यही पूछना चाहती हूँ प्रतीक्षा जी कि अगर युवा इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, पहली बात, और दूसरा एफकैट और सीडीएस जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आपकी क्या सजेशन है युवाओं के लिए?
1: जी विनीता जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है क्योंकि मेरे हिसाब से ये प्रोग्राम, ये मंच उसी के लिए है ताकि हम जो एस्पायरिंग बच्चे हैं जो फौज ज्वाइन करना चाह रहे हैं, हम उनको अच्छा संदेश दें ताकि वो ज्वाइन कर सके। सो तैयारी के हिसाब से देखिए, मैं एक चीज शुरुआत में कहना चाहूंगी कि अगर आपका लक्ष्य नौकरी है तो डिफेंस फोर्सेस आपके लिए सही जगह नहीं है, लेकिन अगर आपका सपना देश सेवा है तो इससे बढ़िया कोई जगह नहीं है। तैयारी के हिसाब से पहले तो पक्का आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए, पढ़ाई में मन लगाइए, क्योंकि आपने ये चीजें सुनी होंगी कि फौज में पढ़ाई नहीं है, जबकि मैं एक बताना चाहूंगी फौज में बहुत ज्यादा पढ़ाई है और जो सीनियर ऑफिसर्स भी हैं जो जनरल ब्रिगेडियर बन जाते हैं वो भी पढ़ाई करते रहते हैं। तो पढ़ाई का कोई पीछा नहीं छूटता है अगर आपने फौज ज्वाइन कर लिया, तो ये एक दिमाग में जरूर रखिए कि पढ़ाई तो रहेगी रहेगी। तो आप पहले से खुद को प्रिपेयर कीजिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए, अच्छे से आप अपना 12th पास कीजिए, अच्छे नंबर लाइए, और ग्रेजुएशन के बाद अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप ग्रेजुएशन में भी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आजकल जो अलग अलग तरीके के एग्जाम्स हैं, एफकैट है, जैसे एयरफोर्स के लिए एफकैट है, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, और तो इसमें इनिशियली आपके जो ग्रेजुएशन है उसके बेसिस पे एग्जाम होता है। तो अगर आप इंजीनियरिंग ब्रांच में आप एडमिशन ले रहे हैं या इंजीनियरिंग ब्रांच में आप आना चाहते हैं एयरफोर्स में, सो आपके इंजीनियरिंग का जो बैकग्राउंड है उसके बेसिस पे आपको सवाल पूछे जाते हैं, प्लस थोड़ी सी आपकी जनरल नॉलेज जो सामान्य ज्ञान होता है उसके बारे में भी आपने थोड़ी सी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आप डिफेंस फोर्सेज में जा रहे हैं एंड उसके रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पेपर होता है, एक एग्जाम होता है। तो ऑल एंड ऑल पूरी तरीके से आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, उससे आपका कोई निजात नहीं है। उसके अलावा एक आपको मेंटल टफनेस आपको खुद में करना पड़ेगा, आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप मेंटली टफ हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इमोशनल लोगों की जगह नहीं है, नहीं, ये बहुत अलग अलग चीजें हैं, आप इमोशनल हो सकते हैं लेकिन आपको मेंटली टफ रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मेंटली टफ है तभी आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर पाएंगे जो मोस्टली फिजिकल होती है। जो इनिशियल 6 महीने की ट्रेनिंग होती है वो ज्यादातर फिजिकल और कम पढ़ाई, और उसके बाद जब आप स्पेशलाइजेशन में जाते हैं तब उसमें ज्यादा पढ़ाई होती है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी आपकी कभी नहीं रुकती। मेरे लास्ट डे तक भी, जहां मैंने 14 साल कंप्लीट किए एयरफोर्स में, आखिरी दिन तक फिजिकल एक्टिविटी चल रही थी, पीटी, परेड, रनिंग, जिससे मैं बहुत डरती थी, वो मैंने आखिरी दम तक किया है एयरफोर्स के और अभी भी करती हूँ, और इसीलिए फिजिकली फिट रहती हूँ। तो ये कुछ प्रिपरेशन है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको अगेन डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, आपकी लाइफ में आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, आपको खुद को कमिट करना पड़ेगा कि हाँ ये मुझे करना है। अगर आपने वो सपना देखा है तो आप वो सपना जिएंगे, क्योंकि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते।
0: कलाम साहब ने ये बात कही
1: जी,
0: बहुत सुंदर, और ये जो आपने एक संदेश दिया है सभी युवाओं को, मुझे लगता है कि हालांकि अभी बहुत कुछ मुझे आपसे बात करनी है, जानना है, लेकिन एक ये छोटा सा गाना मैं जरूर चलाना चाहूंगी आपकी इस बात पर कि जब आप कह रहे हैं कि मेंटल फिटनेस के साथ साथ फिजिकल फिटनेस भी बहुत जरूरी है एंड वाइस वर्सा, तो ये एक गीत सभी युवाओं के लिए प्रतीक्षा जी की तरफ से।

संदेश टू सोल्जर्स का लास्ट सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हम सभी के लिए, आपका यहां पर होना प्रतीक्षा जी। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे आज हमसे संदेश टू सोल्जर्स में बात कर रही हैं। बहुत कुछ सजेशन उन्होंने दी, बहुत कुछ मोटिवेशन दिया, लेकिन एक बात जाने बगैर भला हम आपको कैसे जाने दे सकते हैं। आप स्वयं एक महिला हैं और महिला होने के नाते आपने विशेष प्रयास किए हैं अपनी जगह बनाने के लिए, तो सेना में करियर बनाने के लिए।

0: युवतियों को मैं एक चीज जो मेरे जहन में बसी है और जो मैंने भी सीखी है, ऐसा नहीं है कि मैं सीख के आई थी, लेकिन मैंने भी अपने एक्सपीरियंस से सीखी है कि सेल्फ डाउट कभी नहीं करना चाहिए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए क्या मैं ये कर पाऊंगी, क्या वो लड़का कर रहा है, वो आदमी कर रहा है, तो क्या मैं ये कर पाऊंगी। नहीं, आप सब कुछ कर सकती हो, सब कुछ। आप अभी देखिए, हर दुनिया में हर फील्ड में लड़की है, ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहां पे लड़की नहीं है, नॉट ओनली इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड। तो वैसे ही मिलिट्री में भी, डिफेंस फोर्सेस में भी सेल्फ डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और आप में अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है कि हाँ, ये मैं करूंगी। देखिए, फेलियर्स तो आएंगे, वो
1: बिल्कुल.
0: सबके लाइफ में आते हैं, वो जेंडर देख के नहीं आते हैं। सो फेलियर आते हैं, फेस इट, गिरिए, उठिए, कपड़े झाड़िए और चलते बनिए।
1: मुझे आपकी ये वाली बात तो बहुत ही पसंद आई है कि अगर कभी ऐसा कुछ होता भी है, गिर भी पड़ते हैं तो भी रुकना नहीं है, कपड़े झाड़िए और आगे चलिए. तो सभी लड़कियों को, सभी महिलाओं को जो फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं, इस बात से डेफिनेटली प्रेरणा मिलेगी. अच्छा, आप अब क्योंकि रिटायर हो चुके हैं, क्या आपके लाइफ में रिटायरमेंट के बाद कोई चेंजेस आए हैं क्या?
0: जी, सबसे बड़ा चेंज तो वो है जो सुबह उठते से ही जो मैं यूनिफॉर्म पहनती थी, वो एक बहुत बड़ा चेंज है और वो मैं बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को देखती हूँ कि रोज वो यूनिफॉर्म पहन के यूनिट जाते हैं, तो वो एक चीज मैं बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। उसके अलावा देखिए, वर्क वाइज तो अभी भी मैं वर्किंग हूँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हूँ, मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है आर्म फोर्सेस से, जितना मैं वहां अप्लाई कर सकती हूँ करती हूँ, तो कमिटमेंट में तो कोई कमी नहीं है। लेकिन एक जो ऑरा होता है, और आजकल की जो जेंजी लैंग्वेज में कहते हैं वाइब, वो थोड़ी सी मुझे मिसिंग लगती है, क्योंकि बाहर कॉरपोरेट में काफी लोग अकेले अकेले से काम करते हैं, जबकि डिफेंस फोर्सेस में इट इज ऑलवेज अ टीम वर्क। सो आई जेन्युइनली मिस दैट टीम वर्क एंड द वाइब ऑफ डिफेंस फोर्सेस।
1: ओह स्वीट, ये जो वाइब आपने बताई है ना, मुझे लगता है कि किसी भी फील्ड में जब सब मिलकर कोई काम कर रहे होते हैं तो अपने आप वो काम भी बहुत अच्छा होता है, और एक वाइब तो पॉजिटिविटी की रहती ही है. अच्छा, महिला अधिकारियों के लिए इंडियन एयरफोर्स में क्या क्या ऐसे अवसर हैं कि वो भी आपकी तरह अपने आप को एक प्राउड ऑफिसर कह सकती हैं?
0: पहली बात होगी, किसी चीज के लिए मना मत कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप अनकंफर्टेबल हो किसी चीज, कोई काम करने के लिए और तब भी आप हाँ बोल रहे हैं, नहीं। लेकिन आप में वो क्षमता होनी चाहिए कि आप अपॉर्चुनिटी को भापे,
1: जी
0: और किसी भी चीज के लिए मना मत कीजिए, किसी भी चीज से डरिए मत कि ये होगा नहीं होगा, कोई बात नहीं, चलिए आप काम करिए, और आप में वो कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए। तो वही कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर जगाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला कि जो बाधाएं होती है, जो जो हम बाउंड्रीज बनाते हैं, वो हमारे दिमाग में होती है, बाहर कोई नहीं बना रहा हमारे लिए वो बाउंड्रीज, हम खुद ही बनाते हैं। तो अगर आपने वो बाउंड्रीज पार कर ली, आपने वो जो लक्ष्मण रेखा आपने पार कर ली, तो वर्ल्ड इज ऑन योर फिंगर टिप्स, आप दुनिया, पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। वो
1: क्या बात.
0: कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत छोड़िए अपना।
1: तो आपको ये लगता है कि हमारी युवा पीढ़ी, स्पेशली जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, वो अगर कॉन्फिडेंस का गहना पहन ले तो उन्हें फिर किसी और गहने की जरूरत नहीं पड़ेगी?
0: बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया, बिल्कुल वही गहना पहनना है हमने, और कोई पहने ना पहने, लेकिन कॉन्फिडेंस का गहना हमेशा होना चाहिए हमारे पास।
1: थैंक यू सो मच प्रतीक्षा ठाकरे जी. आज आप संदेश सोल्जर्स में आई हैं और आपने अपने इतने खूबसूरत अनुभव और उससे भी बढ़कर प्रेरक विचार हम सबके साथ बांटे हैं. मुझे लगता है कि डिफेंस फोर्सेस का इससे खूबसूरत उपहार हमारे श्रोताओं के लिए और कुछ हो ही नहीं सकता. तो समय निकालने के लिए आपका आभार, अपनी पॉजिटिविटी हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका आभार, और चलते चलते एक सल्यूट तो आपके लिए बनता ही है. तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम सभी को प्रेरित करने के लिए. आई होप आपका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा होगा आज यहाँ.
0: धन्यवाद विनीता जी, यहाँ पहली बात तो मुझे बुलाने के लिए और ये बातचीत करने के लिए, और आखिरी में बस एक लाइन कहूंगी कि देश सेवा सिर्फ एक ड्यूटी नहीं, ये एक ऑनर है, और जो ये ऑनर

0: पा लेता है वो जिंदगी में कभी नहीं हारता। धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका। और दोस्तों सुनते रहिए संदेश टू सोल्जर्स, हम सभी दिल से सलाम करते हैं अपने सोल्जर्स का। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से प्रतीक्षा ठाकरे जी का। धन्यवाद। जय हिंद।
0: जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

श्रोताओं, प्रोग्राम का आगाज कर रही हैं फिल्म कभी खुशी कभी गम के इस गाने के साथ। आवाजें सोनू निगम और अलका याग्निक की हैं। गीत के बोल लिखे हैं अनिल पांडे ने और संगीत संदेश शांडिल्य ने तैयार किया है।

संदेश शांडिल्य के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे अनिल पांडे का लिखा ये गाना। फिल्म का नाम था कभी खुशी कभी गम। आवाजें सोनू निगम और अलका याग्निक की मिली जुली थी।

येसुदास और हिमलता की मिलीजुली आवाजें। फिल्म का नाम चित चोर।

0: यशोदास और हिमलता की मिलीजुली आवाजों में अभी आप सुन रही थी चितचोर फिल्म का ये गाना। गीतकार और संगीतकार थी रविंद्र जैन।
1: तो बंदगी हो जाए सफल,
2: तू जो मेरे सुर में मधनी सा मगरी सा सरे रे
0: कार्यक्रम की आखिरी पेशकश फिल्म कटी पतंग सी, आवाज किशोर कुमार की, बोल आनंद बख्शी की और संगीत आरडी बर्मन साहब का।

आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम का आखिरी नगमा, आनंद बख्शी का लिखा गीत था, फिल्म का नाम था कटी पतंग और आवाज किशोर कुमार की। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में युवाणी कार्यक्रम।

0: युवा साथी अपना कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी।
1: हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम युवानी और मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अंबुश पांडे। वैसे दोस्तों, आज का जो मौसम है, अगर देखें तो कभी धूप ऐसे मुस्कुरा रही है जैसे कोई पुराना दोस्त मिल गया हो, तो कभी हवा ऐसे चल रही है जैसे कह रही हो चलो थोड़ा कहीं घुमा कर लाते हैं आपको। और सच बताऊँ तो ये मौसम भी ना बिल्कुल हमारे मूड जैसा है, कभी खुश, कभी शरारती और कभी कभी थोड़ा सा ड्रामेबाज। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आपने भी महसूस किया होगा कि ये मौसम थोड़ा ज़्यादा ही एक्टिव हो गया है। अचानक से तेज़ हवाएं चलने लगती हैं, पेड़ झूमने लगते हैं और आसमान में बादल ऐसे इकट्ठा हो जाते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा इवेंट होने वाला हो। और जी हाँ, हम बात कर रहा हूँ मैं आंधी और तूफान की। अब आंधी तूफान का नाम सुनते ही कुछ लोगों को रोमांच महसूस होता है तो कुछ लोग तुरंत खिड़की दरवाजे बंद करने में लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ मौसम का मिजाज नहीं है बल्कि हमें एक छोटा सा मैसेज भी देता है कि जैसे ज़िंदगी में कभी कभी अचानक मुश्किलें आ जाती हैं, वैसे ही ये आंधी तूफान भी हमें संभल कर चलना सिखाते हैं। और दोस्तों, अगर हम आज की शाम की बात करें तो आज की शाम कुछ खास है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उस चीज़ की जो हमारी हर सांस, हर कदम, हर सपने को आगे बढ़ाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऊर्जा की। सोचिए, अगर ऊर्जा ना हो तो क्या होगा? ना मोबाइल चलेगा, ना पंखा घूमेगा, ना गाड़ियाँ चलेंगी, और तो और ये रेडियो भी खामोश हो जाएगा और फिर तो मेरी आवाज़ भी आप तक नहीं पहुँच पाएगी। लेकिन दोस्तों, आज सवाल सिर्फ ऊर्जा का नहीं है, सवाल है सही ऊर्जा का, स्वच्छ ऊर्जा का और भविष्य की ऊर्जा का। हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से हम स्वच्छ ऊर्जा और भविष्य की ऊर्जा को लेकर अपने आप को, अपने भविष्य को और देश के भविष्य को आगे ले जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले लेते हैं हमारे आज के कार्यक्रम का ये पहला गीत।

0: घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे ऊर्जा की। हम सब जानते हैं कि आज भी दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा कोयला, पेट्रोल और डीजल जैसे पारंपरिक स्रोतों पर निर्भर है, लेकिन ये संसाधन सीमित हैं और सबसे बड़ी बात, ये हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण, ये सब उसी का परिणाम है। और इसी के साथ यहाँ ये प्रश्न ज़रूर उठता है कि क्या इसका कोई समाधान है? तो उत्तर है हाँ, बिल्कुल है, और वही है ऊर्जा के नए विकल्प। दोस्तों, सूरज हर दिन हमें बिना किसी बिल के रोशनी देता है, और अब वही सूरज हमारी ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत बन चुका है, क्योंकि हम सोलर पैनल के जरिए सूरज की

किरणों को बिजली में बदल रहे हैं, और वो भी बड़ी मात्रा में। और सबसे खास बात, इसमें ना धुआं है ना प्रदूषण है। और आज हमारे देश में सोलर एनर्जी बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर लोग खुद बिजली बना रहे हैं। और दोस्तों, अब तेज़ हवा चलती है तो पवन चक्कियाँ घूमती हैं, और वही घूमना बिजली में बदल जाता है। भारत के कई राज्यों में जैसे तमिलनाडु और गुजरात में पवन ऊर्जा का खूब इस्तेमाल हो रहा है। और सोचिए, जो हवा हमें ठंडक देती है, वही हमारे घरों को रोशन या रोशनी भी प्रदान कर रही है। और अगर हम बात करें जल ऊर्जा की, तो नदियों और बांधों से बहता हुआ पानी भी ऊर्जा का बड़ा स्रोत है। हाइड्रो पावर प्लांट्स में भी पानी के बहाव से जो टरबाइन घूमती है और जो बिजली बनती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है हमारे लिए। और दोस्तों, इन सभी ऊर्जा के स्रोतों के माध्यम से हम विकास की सीढ़ियाँ तो चढ़ रहे हैं, पर हमें ध्यान रखना होगा कि इसमें पर्यावरण को नुकसान ना हो, क्योंकि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बेहद ही ज़रूरी है। दोस्तों, आजकल के समय में जो चीज़ें हमें बेकार समझते हैं, जिन्हें जिन चीज़ों को हम बेकार समझते हैं, जैसे खेती का कचरा, गोबर, सूखे पत्ते, वही बन सकते हैं ऊर्जा का नया स्रोत भी। बात करें अगर हम बायोगैस प्लांट्स में, तो इन्हीं जो बायोगैस प्लांट्स होते हैं, इनमें ऐसे गैस जो है बनती है, उससे हमें खाना भी उससे हम बना सकते हैं और बिजली भी बना सकते हैं। यानी ये कचरा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक तरीके का खजाना है। तो दोस्तों, वही आज के मॉडर्न टाइम में अगर हम देखें, तो हाइड्रोजन ऊर्जा को भविष्य की शक्ति के रूप में भी देखा जा रहा है। हाइड्रोजन को अगर हम कहें तो फ्यूल ऑफ द फ्यूचर कहा जाता है। ये सबसे स्वच्छ ईंधन है, क्योंकि इसे जलाने पर सिर्फ पानी बनता है। पानी ना धुआं ना प्रदूषण, मतलब एक तरीके से एकदम प्योर, ना किसी प्रकार का प्रदूषण, ना किसी प्रकार का धुआं, सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा। तो दोस्तों, आने वाले समय में हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियाँ आम हो सकती हैं। और वैसे हर नई चीज़ के साथ कुछ चुनौतियाँ भी आती हैं। जैसे अगर हम बात करें सोलर पैनल की, तो ये थोड़ा महंगे भी होते हैं, हर व्यक्ति के बस में नहीं है कि वो उसे अफोर्ड कर सके। और उसके बाद अगर देखें तो पवन ऊर्जा, हर जगह ये संभव भी नहीं है, क्योंकि जहाँ तेज़ हवाएँ चलती हैं, सिर्फ वहीं पर पवन चक्कियाँ लगाकर पवन ऊर्जा के जो है पवन ऊर्जा बनाई जा सकती है। और तकनीक और जागरूकता की कमी का भी एक ही कारण हो सकता है। लेकिन अगर हमारे इरादे मजबूत हों, तो रास्ते खुद बन जाते हैं। और इसीलिए भारत सरकार भी नए ऊर्जा विकल्पों को एक तरीके से बढ़ावा दे रही है, जैसे सोलर मिशन, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, जिसकी वजह से हमारा देश धीरे धीरे एक ग्रीन एनर्जी लीडर बन रहा है। और अब बारी आती है हमारी जिम्मेदारी की। तो दोस्तों, सिर्फ सरकार या वैज्ञानिक ही नहीं, बल्कि हम या हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि ऊर्जा को अनावश्यक खर्च ना करें। और इसके लिए हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे बिजली हमें व्यर्थ नहीं करना है, बिना मतलब के हमको ऐसे ही बिजली को खर्च नहीं करना है, बल्कि इसे बचाना है, सोलर ऊर्जा को अपनाना है सबसे ज़्यादा जितना हो सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर बात है, वो ये है कि पर्यावरण का भी हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि हर छोटी छोटी जो कोशिशें हैं, वही एक बड़ा बदलाव लेकर आती है। फिलहाल हम और भी बातें करेंगे हमारे प्रोग्राम में, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: तो दोस्तों अब बारी है हमारे आज के कार्यक्रम के स्पेशल सेगमेंट यानी कि कविता पाठ की। और आज के हमारे कवि हैं चंद्रकांत द्विवेदी। तो आइए सुनते हैं कविता पाठ।
1: मेरी कविता का शीर्षक है जय जवान जय किसान। इस देश के वीर जवानों और किसानों का वंदन करता हूँ। इस देश के वीर जवानों और किसानों का वंदन करता हूँ। इनके किए उपकारों का सादर अभिनंदन करता हूँ। इनके किए उपकारों का सादर अभिनंदन करता हूँ। हम ऋणी रहेंगे सदा सर्वदा इनके त्याग और बलिदानों के। हम ऋणी रहेंगे सदा सर्वदा इनके त्याग और बलिदानों के। कर्ज चुका ना सकेंगे हम इनके हम पर किए एहसानों के। कर्ज चुका ना सकेंगे हम इनके हम पर किए एहसानों के। और जवानों और किसानों का न जाति धर्म से नाता है। जवानों और किसानों का न जाति धर्म से नाता है। एक है रक्षक मातृभूमि का तो दूजा अन्न का दाता है। एक है रक्षक मातृभूमि का तो दूजा अन्न का दाता है। देश के जवानों के लिए कुछ पंक्तियां हैं कि देश की रक्षा करना मित्रों कोई साधारण बात नहीं। देश की रक्षा करना मित्रों कोई साधारण बात नहीं। हर वक्त जान हथेली पर रखना औरों के बस की बात नहीं। हर वक्त जान हथेली पर रखना औरों के बस की बात नहीं। अपने नहीं रहते कभी साथ। अपने नहीं रहते कभी साथ। सिर्फ तस्वीर अपनों की रहती है। उसी तस्वीर पर हाथ फेरता आंखें बरसती रहती हैं। उसी तस्वीर पर हाथ फेरता आंखें बरसती रहती हैं। पर दिल में भारत माता की सेवा का भाव जब जगता है। पर दिल में भारत माता की सेवा का भाव जब जगता है। तस्वीर को फिर से जेब में रख अपने फर्ज के लिए वो भगता है। तस्वीर को फिर से जेब में रख अपने फर्ज के लिए वो भगता है। कड़ी धूप हो या हो सर्दी नहीं कभी घबराता है। कड़ी धूप हो या हो सर्दी नहीं कभी घबराता है। किसान देश का देश की खातिर चुनौतियों से टकराता है। किसान देश का देश की खातिर चुनौतियों से टकराता है। कहीं कांटे कहीं ठोकर तो कहीं जख्म मिलते हैं। कहीं कांटे कहीं ठोकर तो कहीं जख्म मिलते हैं। फर्ज और कर्तव्य समझ

समझता पाँव न उसके डिगते हैं, फ़र्ज और कर्तव्य समझता पाँव न उसके डिगते हैं। हम सोएं मखमल बिस्तर पर, वह धरती पर सो जाता है। हम सोएं मखमल बिस्तर पर, वह धरती पर सो जाता है। खून पसीना बहाता जब, तब वह चैन की नींद सो पाता है। खून पसीना बहाता जब, तब वह चैन की नींद सो पाता है। इन दोनों देश के मुकुटमणि को, इन दोनों देश के मुकुटमणि को आज नमन मैं करता हूँ। इस देश के वीर जवानों और किसानों का वंदन करता हूँ। इनके किए उपकारों का सादर अभिनंदन करता हूँ, सादर अभिनंदन करता हूँ। देशभक्ति पर कविता है, सुन लो दुनिया वालों मेरे भारत की शुभ यश गाथा। सुन लो दुनिया वालों मेरे भारत की शुभ यश गाथा। हम सब हैं परिवार के जैसे, जननी हैं भारत माता। हम सब हैं परिवार के जैसे, जननी हैं भारत माता। जब कभी भी भारत माता पर दुश्मन कुदृष्टि दिखलाता है, जब कभी भी भारत माता पर दुश्मन कुदृष्टि दिखलाता है, तब भारत माँ के वीरों से वह मुँह की खा कर जाता है। तब भारत माँ के वीरों से वह मुँह की खा कर जाता है। और शेर कभी भी डरा नहीं है गीदड़ की गुर्राहट से, शेर कभी भी डरा नहीं है गीदड़ की गुर्राहट से। थर थर कांप उठा था दुश्मन अभिनंदन की आहट से, थर थर कांप उठा था दुश्मन अभिनंदन की आहट से। और छुप छुप कर जो वार है करता, कायर है वह वीर नहीं। छुप छुप कर जो वार है करता, कायर है वह वीर नहीं। और घायल कर दे भारत माँ को ऐसी कोई शमशीर नहीं, घायल कर दे भारत माँ को ऐसी कोई शमशीर नहीं। और हथियारों से नहीं युद्ध तो हिम्मत से जीता जाता है, हथियारों से नहीं युद्ध तो हिम्मत से जीता जाता है। सौ सौ को मार कर एक मरे बस वही वीर कहलाता है, सौ सौ को मार कर एक मरे बस वही वीर कहलाता है। और कश्मीर का राग अलापने वालों से हर भारतवासी कहता है, कश्मीर का राग अलापने वालों से हर भारतवासी कहता है, जो बस में रुमाल रख सीट न छोड़े क्या तुम्हें कश्मीर दे सकता है, जो बस में रुमाल रख सीट न छोड़े क्या तुम्हें कश्मीर दे सकता है। और कश्मीर हुआ अब भारत का, अब करो जो तुम कर सकते हो, कश्मीर हुआ अब भारत का, अब करो जो तुम कर सकते हो। शेर के आगे रोने वाले गीदड़ जैसे रो सकते हो, शेर के आगे रोने वाले गीदड़ जैसे रो सकते हो। और तुम कहते हो भारत माँ के वीरों में कुछ खास नहीं, तुम कहते हो भारत माँ के वीरों में कुछ खास नहीं। 18 साल के खुदीराम की फांसी साधारण बात नहीं, 18 साल के खुदीराम की फांसी साधारण बात नहीं। और सौ सौ से एक लड़ा है और सौ सौ को मार गिराया है, सौ सौ से एक लड़ा है और सौ सौ को मार गिराया है। तब जाकर भारत माँ के वीरों ने सुख पाया है, तब जाकर भारत माँ के वीरों ने सुख पाया है। मुझे गर्व अभिमान है भारत माँ का पुत्र कहने में, मुझे गर्व अभिमान है भारत माँ का पुत्र कहने में। मिले भारत माँ की गोद सदा हर जन्म में और जमाने में, मिले भारत माँ की गोद सदा हर जन्म में और जमाने में। कविता का शीर्षक है प्रेम व भक्ति। प्रेम को भक्ति से जोड़ कर देख लो

गिरिधर से हर पल किया वर के मोहन को, खुद को सुहागन किया। विष का प्याला पिया वो भी अमृत हुआ, ये चमत्कार भी भक्ति से ही हुआ। गर लगन मीरा सी सबकी लग जाए तो, गर लगन मीरा सी सबकी लग जाए तो, इस जन्म में ही गिरिधर भी मिल जाएगा प्रेम को भक्ति से। भक्ति शबरी ने की पूरी निष्ठा से।

रही हो प्रतीक्षा अगर माता शबरी सी तो, हो प्रतीक्षा अगर माता शबरी सी तो आगम

0: जाएगा। झूठे संसार से तुम विमुख जो हुए, वास्तविक सुख से जीवन भी खिल जाएगा, प्रेम को भक्ति से।
1: अभी आपने सुना कविता पाठ जिसके कवि थे चंद्रकांत द्विवेदी। हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले सुनाते हैं आपको एक छोटा सा गीत।

तो दोस्तों अब बारी है हमारे अगले सेगमेंट यानी कि प्रेरणा पुंज की, और आपको हम ले चलेंगे एक ऐसे साहित्यिक संसार में जहां सादगी में गहराई है, हंसी में जीवन की सच्चाई छिपी है और जहां हर आम इंसान की कहानी खास बन जाती है। अगर आपने कभी मालगुड़ी नाम की काल्पनिक शहर के बारे में सुना है तो आप पहले ही आर के नारायण की दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। जी हाँ, हमारे आज के जो प्रेरणापुंज हैं वो हैं भारतीय अंग्रेजी साहित्य के महान लेखक आर के नारायण, और इनकी मालगुड़ी की दुनिया की बात करें तो इसमें एक ऐसा शहर है जो काल्पनिक होते हुए भी इतना वास्तविक लगता है कि हर श्रोता खुद को वहाँ का निवासी महसूस करने लगता है। दोस्तों, आर के नारायण का पूरा नाम रासीपुरम कृष्णास्वामी अय्यर नारायण स्वामी है। उनका जन्म 10 अक्टूबर 1906 को चेन्नई में हुआ था। उनका बचपन काफ़ी हद तक मैसूर में बीता, जो बाद में उनकी कहानियों का मुख्य आधार बना। नारायण का जीवन किसी आम इंसान की तरह ही था, संघर्ष, सपने और साधारण अनुभव। लेकिन उनकी खासियत थी कि वे इन साधारण अनुभवों को असाधारण कहानियों में बदल देते थे। नारायण का लेखन सफ़र आसान नहीं था। शुरुआत में उनकी रचनाएं कई प्रकाशकों ने जो है ठुकरा दी थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार उनका पहला उपन्यास स्वामी और फ्रेंड्स 1935 में प्रकाशित हुआ। और ये कहानी एक छोटे बच्चे स्वामी और उसके दोस्तों की थी, जो स्कूल दोस्ती और शरारतों के इर्द गिर्द घूमती है। और अगर बात करें इनके कुछ यादगार किताबों की जो नारायण जी ने लिखी हैं, उनमें शामिल है द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द इंग्लिश टीचर, द गाइड, और यहाँ तक कि इनका जो उपन्यास द गाइड है ये इतना प्रसिद्ध हुआ कि इस पर गाइड नाम की फिल्म भी बनी, जिसमें देव आनंद और वहीदा रहमान ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। दोस्तों, आर के नारायण को उनके साहित्यिक योगदान के लिए कई पुरस्कार भी मिले, जिसमें साहित्य अकादमी अवार्ड जो कि उन्हें 1960 में मिला था, पद्म भूषण जो कि उन्हें 1964 में मिलता है, और पद्म विभूषण जो कि उन्हें 2000 में मिला था। और इनकी रचनाएँ अगर हम कहें तो ये ना केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में पढ़ी जाती हैं।

तो दोस्तों, अगर हम बात करें नारायण जी की, तो इनकी जो लेखन शैली थी, इसकी सबसे जो बड़ी खासियत, जो खास बात थी, उनकी सरल भाषा और गहरी समझ थी। ये बिना किसी जटिल शब्दों के सीधे दिल तक पहुंचने वाली कहानियाँ लिखते थे। उनके पात्र आम लोग होते थे, शिक्षक, दुकानदार, छात्र और साधारण गृहस्थ। उनकी कहानियों में हास्य भी होता था और जीवन की सच्चाई भी होती थी। और अगर देखें तो जो नारायण जी की कहानियाँ थी, ये जब टीवी पर, जैसे जो मालगुड़ी डेज के टाइम पे ये जो उस रूप में दिखाई जाती थी, तो ये हर घर में मालगुड़ी बस गया था। ये धारावाहिक जो है दूरदर्शन पर प्रकाशित होता था और लोगों के दिलों में बसा हुआ था। आर के नारायण हमें ये सिखाते हैं कि महान बनने के लिए असाधारण होना ज़रूरी नहीं है। आपकी साधारण ज़िंदगी भी एक खूबसूरत कहानी बन सकती है, बस उसे देखने का नज़रिया होना चाहिए। तो दोस्तों, इसी क्रम में, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर दिन आपसे एक प्रश्न पूछते हैं और अगले दिन उस प्रश्न का जो भी उत्तर सही हमें देते हैं, जो भी श्रोता हमें, हम उनका नाम हमारे प्रोग्राम में शामिल करते हैं। और इसी क्रम में हमारा जो कल का प्रश्न था, वो था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, जिसका सही उत्तर है 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे, जो कि अब का मुंबई है, में ए ओ ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की

स्थापना की गई थी। और इसी कड़ी में हमारा जो आज का प्रश्न है वो ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष हुए थे वो कौन थे। आप अपना जो भी आपका आंसर है वो हमें पोस्ट कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स पर, या फिर आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं हमारे नंबर 8004926250 पर। एक बार फिर सुन लीजिएगा, 8004926250 पर। सही उत्तर देने वाले जो भी हमारे श्रोता होंगे, जो भी श्रोता साथी होंगे, उनका नाम हम हमारे अगले दिन के कार्यक्रम में सम्मिलित करेंगे। और

तो दोस्तों आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप हमें रिव्यू कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी में जो कि है yuvvaniald@gmail.com। हम आपसे फिर मिलेंगे हमारे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।

हर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने को ही वक्त हो चला है आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचारों का, अब से थोड़ी ही देर में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग ले रहे विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियरा सहित अन्य विदेश मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इससे पहले अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। कल दूसरे दिन ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देश ब्रिक्स एट 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर एक सत्र में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालयी प्रेसवार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
1: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
0: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। तीसरे चरण का अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। इस चरण के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने आज पेचिंग में वार्ता की। व्यापार और प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य खुला रहना चाहिए। बैठक के बाद सभा को संबोधित करते हुए चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। ब्रिटेन ने कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात के पूर्वी तट पर एक जहाज को जब्त कर लिया गया है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरू मध्य के पास फुजैराह बंदरगाह के करीब इस जहाज पर अनाधिकृत कर्मियों ने कब्जा कर लिया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से की गई 7 अपीलों के मद्देनजर कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय सहित अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि मंत्रालय स्तर पर 1 वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। श्री सिंह ने कहा कि कृषि मंत्रालय ने किसानों को उर्वरकों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक करने के लिए गांवों में एक अभियान शुरू किया है। प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप दिल्ली सरकार

अभी हमारी युवा श्रोता अपना युवाणी कार्यक्रम सुन रही थी। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रही हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो

0: कल से मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसके अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में दो दिन घर से काम करेंगे। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। और आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडिया वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। लीजिए सुनिए इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष और कल के मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। पहले आज के शेष कार्यक्रम। रात 9:30 पर गजलों पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित होगा कहकशा। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के प्रसारण में हम आपको सुनवाएंगे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन। 6:30 पर ग्रामीण भाइयों के लिए पंचायत घर कार्यक्रम प्रसारित होगा। आज के इस कार्यक्रम में हमारे ग्रामीण भाई सुनेंगे फूलचंद यादव और साथी के गाए लोकगीत। सात 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम में काव्य कौमुदी के तहत सुधांशु शुक्ल और वंदना त्रिपाठी से उनकी काव्य रचनाएं सुनी जा सकेंगी। 7:45 पर सुगम संगीत के प्रोग्राम में हम आपको सुनवाएंगे सरगम लता की गाए भजन। 8:30 पर विविधा के तहत मयसी महादेवी वर्मा की वार्ता प्रसारित की जाएगी अतीत के झरोखों से। और 8 प्रसारित होगा चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। और अब कल के कुछ प्रमुख आकर्षण इस तरह से हैं। कल रात 9:30 पर गजलों पर आधारित कार्यक्रम सुनिए का कहकशा। रात 10 हम आपको सुनवाएंगे राजेंद्र तिवारी का लिखा नाटक रास्तों का चक्रव्यूह। हमारी प्रातःकालीन सभा में सुबह 6:05 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना प्रसारित किया जाएगा। सुबह 6:20 पर साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे राम नाम की महिमा के संबंध में बापू के विचार। स्वास्थ्य चर्चा रोज की तरह सुबह 6:45 पर प्रसारित होगा। कल के इस कार्यक्रम में डॉक्टर बी एन त्रिपाठी की वार्ता होगी डायरिया का आयुर्वेदिक उपचार। सुगम संगीत के प्रोग्राम में सुबह 9:50 पर कौशिकी राय और शाम 7:45 पर शिल्पी खरे के गाए भजन और गीत सुनवाए जाएंगे। श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ रोज की तरह सुबह 7 सुनवाया जाएगा। और फिल्मों से ली गई चुनिंदा भक्ति रचनाएं आप सुनेंगे सुबह 7:10 पर। शास्त्रीय संगीत के हमारे प्रसारण में सुबह 7:30 पर, दिन में 12:15 पर और रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे कमला बोस का ख्याल गायन। दिन में 12:30 पर आपकी फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित होगा हेलो फरमाइश। सुबह 10:05 पर अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर केंद्रित कार्यक्रम प्रसारित होगा वॉयस ऑफ प्रयागराज। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी उमंग आप सुन सकते हैं सुबह 10:30 पर। दिन में 2:30 पर लोकगीतों का आनंद लीजिएगा। कलाकार होंगी वंदना सरोज और साथी। शाम 5 नन्हे मुन्ने बच्चे अपना कार्यक्रम सुनेंगे नन्ही दुनिया। और 5:15 पर युवाणी कार्यक्रम में युवा श्रोता अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर चर्चा के अलावा खेल जगत और प्रेरणापुंज के केंद्र में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के विचार सुनेंगे। शाम 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई ओंकारनाथ के गाए

रोकी सुनेंगी। शाम 7:31 पर संस्कृत कार्यक्रम में डॉक्टर सौम्या कृष्ण की वार्ता होगी, परिवार मानव जीवनस्य स्तंभ। कल रात 8:30 पर अक्षय वट कार्यक्रम में डॉक्टर अपराजिता चौधरी से की गई बातचीत सुनवाई जाएगी। विषय होगा बढ़ती उम्र में कैसे करें आंखों की देखभाल। श्रोताओं, अभी आप हमारे कार्यक्रमों के बारे में सुन रही थी। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में हम आपको सुनवाएंगे देशगान।

हम अपने सुनने वालों को एक बार फिर याद दिला दी, आज रात 9:30 पर गजलों पर आधारित कार्यक्रम सुनिएगा कहकशा। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के प्रसारण में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन हम आपको सुनवाएंगे। सात 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम में काव्य कौमुदी के तहत सुधांशु शुक्ल और वंदना त्रिपाठी से उनकी काव्य रचनाएं सुनी जा सकेंगी। श्रोताओं, अभी आप हमारी कार्यक्रमों के बारे में सुन रहे थे। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र, मीडियम 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100।

मेगाहर्ट्ज पर। इस स्टूडियो की घड़ी में 6:20 होने को ही वक्त हो चला है आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित संस्कृत में समाचारों का अब से थोड़ी ही देर में।

0: पुनः एकवारम्। वैश्विक अनिश्चितताया आर्थिक समाह्वानानां च मध्ये वृक्षदेशाः रचनात्मिकां भूमिकां निर्वहन्तीति भारतेन दृढतया प्रतिपादितम्। श्वः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः आबुधाबी यात्रायाः समये भारत यूएई देशौ द्वैपाक्षिक सम्बन्धान् अग्रिमस्तरे नेतुं सज्जते स्तः। कांग्रेस दलस्य नेता वी डी सतीशन वर्यः केरलम् राज्यस्य मुख्यमन्त्री भविष्यति इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। अब हमारे ग्रामीण भाई अपना कार्यक्रम सुनेंगे पंचायत घर।

0: पंचो राम राम।
1: का हो सुरेमन भाई, का हाल बा हो खेती किसानी का?
0: ए हो अवधु भैया, खेती किसानी के हाल चाल तो बढ़िया बा। मुला भैया देखा, खेती किसानी में हम सब किसान भैया बहनी हैं इनका, भैया देखा ही जौन तरह की गर्मी पड़त बा।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ई गर्मी से हम सब किसान भैया बहनी हैं इनका बच बचाए के रहब जरूरी बा। काहे कि भैया देखा, खेती किसानी जौन भी काम धाम होए सकारे होए, ताकि अपन खेती किसानियों के काम धाम होत रहे और साथ ही साथ भैया कोनो तरह के ऐसी समस्या गर्मी में ना आवे, ताकि स्वास्थ्य बढ़िया बना रहे।
1: बिल्कुल सही कह गया भैया। हो देखा ये समय जवन गर्मी पड़त बने,
0: हाँ हाँ,
1: तो भैया देखा अपन खेती में जवन जायद के फसल बन हो,
0: हाँ हाँ,
1: देखा भैया यह मुरझुराई जात बा,
0: कह गया
1: तो हमन चाहे किसान भैया हरिन के खेतवई मेड़वई करत रहे,
0: हाँ हाँ,
1: और समय समय पर भैया देखा जब अपने फसल के निगरानी रखिए किसान भैया हरे ने,
0: हाँ हाँ,
1: तो देखा उनके फसल हरी भरी बनी रही हो और तो साथे साथे उनका उत्पादन भी बढ़िया हो रही
0: है। और ये हो अवधु भैया देखा, इ टेम जो ने अपन किसान भैया बहनी हरिन के देखा, जैसे साग सब्जियन की खेती बा,
1: हाँ,
0: चाहे लौकी हो, चाहे नेनुआ हो, चाहे तोरोई हो, चाहे भिंडी हो, चाहे भैया देखा पलकी हो, तो तरह तरह के साग सब्जियन में भैया ये बात का जरूर ध्यान रखी है पंच भैया बहनी हरिन, कि अपन फसल में कौनो तरह के ऐसे देखा सूखापन ना आवे।
1: बिल्कुल
0: टेम से सिंचाई पताई करत रहें और कीट पतिंगा जौन लागत हो, कहे कि देखा पताइन से जौन है खाप शुरू करत हैं और अपन पूरा पेड़ पल्लव जौन है सब धीरे धीरे खाए जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो इस वजह से अपन खेती किसानी का पंच भैया बहनी हरिन ध्यान रखें,
1: हाँ हाँ,
0: ताकि चार पैसा की आमदनी होत रहे।
1: बिल्कुल हो सही के भैया देखा, जब खेती किसानी में अगर किसान भैया अरे ध्यान दी हैं,
0: हाँ हाँ,
1: तो भैया देखा उनका नुकसान कम होए,
0: हाँ,
1: और फायदा ज्यादा होई। और साथे साथे एक बात और कहे चाहब हो,
0: हाँ हाँ बताओ,
1: कि देखा भैया फसल तो बुआई होत है,
0: हाँ?
1: बुआई के बाद देखा किसान भैया अरे कटाई करत है, मड़ाई करत है, और मड़ाई के बाद भैया देखा ओकर अन्न भंडारण भी होत है।
0: हाँ हो भैया देखा, अब जैसे कि अपन चाहे देखा गेहूँ के फसल होए, चाहे भैया देखा चना मटर होए,
1: बिल्कुल
0: चाहे जौन भी अपन फसल किसान भैया बहनी हरिन अपन घर पर लावें, तो के पहले बढ़िया तरीका से जौन है धूप में दिखाई दें, खूब बढ़िया से इन्हीं ओमा जौन मेहूंद होए, इन्हीं ओमा कोनो तरह के सीलापन न रहे,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: कि अपन अनाज में कोनो तरह के जब से रोग बिरामी कीट पतिंगा भुनका जौन लाग जात हैं, तो ऐसे बच बचाव बढ़िया बना रहा है।
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल,
0: अन्न भंडारण की जौन तकनीक बा ओका भैया देखा अपन जैसे पुरनियों करत रहे हैं, कि भैया देखा उमा नीम के पताई के जरिए से अभी तरह तरह के दवो दर्पण चला बा, मूला अपने विशेषज्ञ भैया बहनी हरिन से जरूर राय ले ले हैं, ताकि भैया कोनो तरह के अनाज में नुकसान ना हो पावे।
1: बिल्कुल वो सही के गया भैया हो, अपन देखा जौन है न,
0: हाँ
1: अब तो बाकी देखा पहले रहा तो भैया दूर दूर शहर में जौन है कोल्ड स्टोरेज बना रहे,
0: हाँ हाँ
1: मूला अब तो देखा जौन हरी सब्जी है भैया देखा,
0: हाँ
1: आलू
0: हाँ
1: है, ये सब का देखा अब तो अपने गांव गिरा

0: में भी जो है कोल्ड स्टोरेज खोली के बात
1: कह गया।
0: तो भैया कहीं न कहीं अपन सरकार भी हम किसान भैया बहनी बदे जौन है सचेत बाटे।
1: हाँ हाँ।
0: और सोचत बा कि किसान भाई जौन उत्पादन करत हैं उनके फसल का सही मूल्य मिले।
1: हाँ
0: और
1: हाँ।
0: साथे साथे उनके फसल का उचित रख रखाव भी होत रहे समय समय पे।
1: हाँ।
0: तो भैया दिखा कोल्ड स्टोर के भी अपन महत्व बाटे। किसान भैया हरे जिसे खुदाई करत हैं या कौनो भी साग सब्जी के जौन है तोड़ाई करत हैं तो भैया देखा कुछ ऐसा है कि जौन साग सब्जी कि जौन भी देखा कोल्ड स्टोरेज भी रखा जा सकत
1: हाँ
0: है।
1: हाँ अब देखा जैसे कि आपन किसान भैया बहनी हरिन एक पहले देखा जौन आपन आलू की फसल रही तो आलू के फसल का भी आपन जौन है समचित कि आपन आलू खराब ना होए सड़े गले ना तो ई वजह से आपन किसान भैया बहनी हरिन जौन चतुर रहें जिनके आपन पैदाइश बढ़िया रही आपने ज़्यादा रही कि आगे चल के हम भैया देखा छे भाव से बेचू ले भाई और साथे साथ आपन जैसे कि बीज भिया का जौन है
0: बिल्कुल
1: कि
0: बिल्कुल
1: रखे रहा है कि समय पर आई तो आपन
0: बुआई
1: कोल्ड
0: भी कर
1: स्टोरेज
0: सकते
1: से
0: बिल्कुल
1: निकाल
0: बिल्कुल।
1: के आपन बुआई कर ले तो कोल्ड स्टोरेज का तो बहुत महत्व बा। काहे कि जौन भी साग सब्जी हो चाहे हरियर वाली सब्जी हो चाहे भैया फल फलदार होए भैया तरह तरह के फल भी स्टोरेज में रखल जात है
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल।
1: जौन भैया आपन फसल वो नुकसान नहीं हो ही पावत है और टेम टेम से बढ़िया चार पैसा की आमदनी मिल जात है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कह गया भैया। देखा जौन है वही के साथे साथे भैया देखा अब जौन है जैविक खेती के भी जौन है ये पे जोर दिया जातवे
1: हाँ हाँ
0: कि काहे से कि देखा अब रासायनिक खाद से भैया देखा अपनी माटी के संरचना दिनों दिन बिगड़ी चली जात
1: कह गया।
0: तो भैया कहीं न कहीं जौन है सरकार भी सचेत है
1: हाँ
0: और
1: हाँ
0: किसान भैया भी जौन है इनका सोचे के चाहिए कि जौन है अपने माटी के संरचना बनी रहे।
1: हाँ हाँ
0: ओकरे बदे देखा अब ये समय जैसे भैया देखा ढैंचा का समय है
1: हाँ हाँ
0: तो कुछ भैया चतुर किसान हैं जो प्रगतिशील भैया लोग हैं देखा ढैंचा को बुआई तो कही दे हैं
1: कह गया।
0: मुला हम कहब जे पिछड़ा होए
1: हाँ हाँ
0: आगे पीछे भैया देखा अब ढैंचा को जो कर खेत में जरूर बुआई कही दें।
1: हाँ हाँ उधर भाई
0: उसे कहब कि भैया देखा धान लगावे से पहले
1: हाँ
0: ढैंचा के खेत में सड़ाई दें
1: कह गया।
0: और भैया बढ़िया से हरी खाद बन जाए उनके हो
1: हाँ हाँ
0: जोने में कि उनका रासायनिक खाद कम से कम मात्रा में डाले के पड़े।
1: ये तो बहुत नीक बात बताया हो अधू भाई। हम कहे कि अब सब किसान भैया बहनी है इनका हम कहे एक देखा आंदोलन के तौर तरीका से काहे कि आपन जोन ये देखा खेती की जोन माटी बा
0: बिल्कुल
1: माटी के गुणवत्ता बनी रहे माटी के गुणवत्ता बिगड़े ना पावे।
0: बिल्कुल
1: हाँ
0: बिल्कुल
1: और ज़्यादा से ज़्यादा जैविक जोन है खाद का प्रयोग करें ताकि भैया देखा जैसे मान लो खेती किसानी में साग सब्जी अनाज तो पैदावार होगा बहुत और मान लो उमर रासायनिक खाद का प्रयोग किसान भैया बहनी हरिन किन तो भैया देखा चाहे उमर जोन है हम सब देखा भैया बहनी हरिन के बदे चाहे पशु हों चाहे
0: बिल्कुल
1: अपन देखा तरह तरह के जोन पक्षी बा अगर रासायनिक खाद का प्रयोग ज़्यादा करें किसान भैया बहनी हरिन तो हम सब भैया देखा समाज में तरह तरह के रोग तरह तरह के बेरामी भैया देखा घेर ली
0: बिल्कुल
1: और तरह
0: बिल्कुल।
1: तरह की समस्या आई तो ज़्यादा से ज़्यादा हम तो भैया यही पंच भैया बहनी हरिन से कहा कि जैविक खाद का प्रयोग करें और जैविक खेती में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं।
0: बिल्कुल बिल्कुल भैया देखा हो कुछ प्रगतिशील किसान भैया हैं जो उनकी देखा मूंग के भी बुआई करे हैं
1: हाँ हाँ
0: ओका भैया देखा वह जोन है फली तोड़ के और खेत में पलटाई कई देते हैं।
1: कही
0: तो
1: गया।
0: भैया ये हर किसान के ये चाहिए कि अपने माटी को उर्वरा शक्ति बनाए रखें
1: हाँ
0: ओकरे प्रति उनका सचेत रहे के चाहिए जोन है
1: हाँ
0: और तब देखा बढ़िया फसल का उत्पादन होई और
1: हाँ
0: गुणवत्तापूर्ण होई भैया देखा उनका अनाज।
1: हाँ अब माटी की गुणवत्ता भैया देखा जैसे कि अपन खेती किसानी के साथ साथ किसान भैया बहनी हरिन के कहें जेके खेत में पड़ा नहीं गोबर जेकर खेत में पड़ा नहीं गोबर वो किसान का जानव दूबर
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल।
1: ज़्यादा से ज़्यादा अवधु भैया हम तो यह कहब कि आपन घर में गाय भैंस भेड़ बकरी जौन भी पशुपालन हो जौन तरीके से आपन किसान भैया बहनी हरिन सहज में कई

0: सकें।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो अपन पशुपालन करें उनके देखा गोबर से, तरह तरह की जौन भी देखा उपजाऊपन जौन अपन खाद तैयार होत है, तो उधर किसान भैया बहनियर इनका पशुअन से भी चार पैसा की आमदनी,
1: बिल्कुल
0: गोबर
1: बिल्कुल।
0: से बढ़िया खेत के माटी की गुणवत्ता बढ़िया बनी रहे
1: बिल्कुल
0: और
1: भैया,
0: साथ अपन खेत की उपजाऊपन में अनाज भी बढ़िया हो।
1: बिल्कुल हो सही कह गया भैया। देखा हो सुरेमन भाई, हम कहा बात बत कही तो होत रही बोला, आज पंचेती में पंच भैया हरिन का सुन हुआ एक तीन बतावा।
0: देखा उधो भैया, देखा ये बात बत कही भी होत रही मुला, हम समझते कि किसान भैया बहनी हरिन जोहत हुई हैं कि का ढोल नगड़िया ना बाजी का हो। तो भैया आज जौन है भैया देखा मेरी खेती मेरी बात माँ प्रगतिशील किसान राम कृपाल से दिनेश चंद पांडे भैया की देखा एक बातों बात कही बा।
1: हाँ हाँ
0: तो
1: हाँ।
0: यह सुनो आवा जाई मुला भैया जौन है फूलचंद और संघातिन की गाई एक विकास गीत बा हो। तो आगे किसान भैया बहनी हरन सुन ले तो फिर आगे बात बात कही हो।
1: बिल्कुल भैया सुनवा दे।
0: हाँ हाँ तो सुना है।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: हाँ भैया, देखा हो
2: संदेशो होगा, और साथ ही साथ भैया देखा फूलचंद और संघातिन के गाय विकास गीतो हो गई। अब भैया देखा अपन पंचायती कार्यक्रम में भैया देखा टेम टेम पर अपने प्रगतिशील किसान भैया बहनी हरिन का भी बुलवावा जाता है। तो अपन खेती किसानी से, बाग बगीचा से संबंधित हो, चाहे अपन पशुपालन से संबंधित हो,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: तो खेती किसानी के साथ साथ भी हमार किसान भैया बहनी हरिन अपन चार पैसा की आमदनी बताए, तरह तरह के भी अपन रोजी रोजगार करत हुए,
1: बिल्कुल
2: तो खेती किसानी के साथ साथ चार पैसा की आमदनी होत है। तो आज अपने कार्यक्रम में भैया देखा मेरी खेती मेरी बात में एक प्रगतिशील किसान भैया हैं, जो राम कृपाल से अपन दिनेश चंद पांडे भैया की जो है बातचीत चर्चा भैया बा, तो हम समझते किसान भैया बहनी हर इनका सुनवाई दिहल जाए, तो फिर आगे बात बात कही होई।
1: बिल्कुल मैं सुनवा दे।
2: हाँ हाँ, तो सुनाए।
3: राम कृपाल भैया, देखा आप प्रगतिशील किसान हैं और खेती किसानी के साथ साथ कुछ जो गांव से या ज़मीन से जुड़ा रोजी रोजगार बा वह में भाग लेते हैं, तो हम कही थे कि भैया देखा खेती के साथ साथ और कौन कौन रोजगार करत।
4: खेती किसानी के साथ साथ साहब हम गैया भी रखे हैं, भैंस भी रखे हैं।
3: जी जी।
4: कुछ उससे हो जाता है, बैल भी रखे हैं, जोताई भी करते हैं हल से, हल बैल से, और उसके साथ साथ मधुमक्खी पालन का भी काम करते हैं, जिससे कि दो पैसा उसमें भी मिल जाए, जब उसे समय मिलता है तो उसमें लग जाते हैं, और उसमें से जब समय खत्म होता है तब उसमें लग जाते हैं।
3: मधुमक्खी पालन कब से करे लगा
4: ये साहब? मधुमक्खी पालन हम 2012-13 में ट्रेनिंग किए हैं।
3: अच्छा अच्छा।
4: और उसके बाद फिर उसी में एक लोग थे उनके साथ मिलकर उनके हमने नौकरी करने लगा।
3: अच्छा अच्छा।
4: फिर हमारा उनका तो कुछ कम जमा, तो फिर अपना खुद का काम ये सर 19-20 में हमने अपना खुद खरीद लिया 10 बक्सा से शुरू किया। इस समय हमारे पास 54 बक्सा पहुँच गया।
3: अच्छा अच्छा। काय मतलब एक पहले एक मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया।
4: जी जी।
3: फिर प्रशिक्षण लेने के बाद गेहूँ के साथ काम करना।
4: हाँ, कि उसका और गहराई से अध्ययन मिल जाएगी, कहाँ क्या त्रुटियाँ हैं, विपरीत मौसम में इसको कैसे पाला जाए।
3: तो ये शुरुआत 10 बक्सा से कह रहे हैं।
4: हाँ, 10 बक्सा
3: तो से हमें का बहुत जरूरी चीज हो था कि भैया हर जो करे चाहें तो उनके लिए कौन कौन चीजें की जरूरत पड़े
4: उनके लिए, कि कोई भी काम करने से पहले उसके विषय में गहराई से अध्ययन करना बहुत जरूरी है।
3: हाँ।
4: यदि गहराई से अध्ययन नहीं करेंगे तो उसमें नुकसान का चांस ज्यादा रहा था।
3: अच्छा अच्छा।
4: तो यह बदे ओके गहराई से अध्ययन कर लीजिए, जैसे पशु है, अब ये मधुमक्खी पालन है, तो हम ये ध्यान में रखें कि किस मौसम में कैसे इसको रखा जाए, कब इसको हमको चारा देने की जरूरत है, कब ये बीमार है, कब इसको गर्मी लग रही है, कब इसको ठंडी लग रही है, इस सब चीज का जब हम ध्यान में रखेंगे तो निश्चित है वो हमको

0: फायदा देगा।
1: तो ये सब बात भैया वो जो प्रशिक्षण लेते रहे तो हमें बताओ अगर
0: हाँ,
1: आप।
0: उसमें बताया गया। उसके साथ साथ हमने प्रैक्टिकली, वो तो पुस्तकीय ज्ञान मिला जो उनको अनुभव था वो दिए। उसके बाद हमने इस समय के वातावरण में क्या मधुमक्खियों को चाहिए, क्या उनको मिल पा रहा है, अब क्या मिल नहीं पा रहा है, उसके लिए हम कैसे करें कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिले और कम से कम मक्खी को कष्ट मिले।
1: कायक मतलब ये भैया कि प्रशिक्षण लेने के बाद जो पहले से यह धंधा में लगा रहा
0: जी जी जी
1: ओके साथे जुड़ के ओकर अनुभव क्या है कि भाई कितना चारा कब दे, कौन प्रजाति के कौन दे,
0: हाँ,
1: तो
0: कहाँ कहाँ ले जाया
1: कहाँ कहाँ
0: जाए।
1: ले जाया जाए। तो एक बात ही बताओ रामकृपाल भैया,
0: जी,
1: ये मधुमक्खी कितने प्रकार को होती है?
0: अपने यहाँ जो भारत में देखी गई है वो मधुमक्खियाँ 5 प्रकार की पाई
1: कौन
0: जाती
1: कौन
0: हैं।
1: भैया?
0: ये पहली है जिसको डांभर कहते हैं, इसका नाम है एपिस डोरसेटा, कहीं कहीं सारंगा भी कहते हैं। ये बहुत ही आक्रामक होता है, ये पलक झपकते ही आक्रमण कर देता है और ये बहुत जो है गुस्सैल होता है और ऊंचे पे रहना पसंद करता है और अंधेरे में नहीं खुले में रहना पसंद करता है, इसलिए इसको पाला नहीं जा सकता है, ये हमारे पहुंच से दूर है। उसके बाद एक आता है एपिस मेलिफेरा, जिसको हम इटालियन के भी नाम से जानते हैं। तो ये जो होता है, जैसे गैया है, सिंधी साहिवाल है, देसी है, तो ये चारा ज़्यादा खाती है, लात ज़्यादा मारती है, दूध कम देती है। लेकिन जो सिंधी साहिवाल है वो चारा भी कम खाती है, लात भी कम मारती है, दूध ज़्यादा देती है, तो उसे पशुपालन का ज़्यादा फायदा होता है। तो वही है, उसी तरीके से यह भी है।
1: कायक मतलब ये कि इटालियन जो मधुमक्खी है वो चारा कम खात है और
0: गुस्सेल कम होती है,
1: गुस्सैल कम हो तो उत्पादन ज़्यादा देगा।
0: उत्पादन ज़्यादा।
1: अच्छा, और कौन प्रकार के होते?
0: और एक है ये सेराना इंडिका है, एपिस मेलिपोना है, और एक जिसको भुनगा भुनगा एक मसा की तरह होता है, बहुत छोटी, उसका औषधीय गुण तो बहुत अच्छा होता है लेकिन उसका उत्पादन जो होता है बहुत कम, ना के बराबर होता है, इसलिए उसको व्यावसायिक दृष्टि से पालना कठिन है या ना के बराबर है वो।
1: तो आप कौन वाली प्रजाति के पालत है?
0: हम एपिस मेलिफेरा पाले हुए हैं, जिसका नाम है, ये एपिस फेरा मक्खी है, और ये जो है इटालियन भी इसको कहते हैं। तो ये स्वभाव भी इसका अच्छा है और ये कम काटती भी है
1: जी
0: और गुस्सैल भी कम है। इसके स्वभाव से परिचित होकर के कोई भी इंसान जिसके पास एक बिस्वा खेत हो या ना हो, वो भी इसके स्वभाव से परिचित होकर के इस कार्य को कर सकता है।
1: अच्छा, एक बात ही बतावा कि इटालियन मधुमक्खी पाले पे जैसे एक बक्सा में
0: जी हाँ,
1: कितना दिन में हमें उत्पादन ले लायक हो जाता?
0: देखिए साहब, ये मधुमक्खी पालन में एक शहद का मौसम होता है। जैसे आपकी गैया भैंसे साल के 12 महीना दूध नहीं देती है, वैसे मक्खियों में भी साल का 12 महीना शहद नहीं मिलता है। कुछ महीना, जैसे आपका नवंबर है, नवंबर से शुरू होता है अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में मार्च तक, उसके बाद ऑफ हो जाता है। अगर
1: अच्छा,
0: इसको और ले जाना होता है तो बिहार ले गया, झारखंड ले गया, तो इस तरीके से कादो महीना और बढ़ जाता है।
1: काहे मतलब ये कि नवंबर से मार्च तक शहद देती
0: अपने
1: मधुमक्खी
0: यहाँ उत्तर प्रदेश
1: हाँ?
0: में
1: तो एक नवंबर से मार्च भरे में एक बक्सा में कितनी बार शहद निकालते?
0: नवंबर से मार्च तक अगर बढ़िया मौसम निकल गया तो 1 महीना तो बहुत ज़्यादा ठंडी का निकल जाता है, वही 1 महीना चाहिए, दिसंबर और फरवरी
1: जी
0: मार्च, ये 3 महीने में 6 से 7 बार, 8 बार भी निकल सकता है पकी शहद।
1: अच्छा
0: लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि उसको कभी कभी 12 दिन पे ही निकाल लेते हैं, अगर बढ़िया मौसम रहा तो 10 दिन पे निकाल लिया तो महीने में 3 बार हो
1: एक
0: गया।
1: बक्सा में कितनी शहद मिल जाती?
0: वार्षिक उत्पादन एक बक्से में कम से कम 45 से 50 किलो,
1: अच्छा
0: अगर इससे कम उत्पादन निकल रहा है तो ये जानिए कि हम उस बिजनेस में हम घाटे में जा रहे हैं,
1: अच्छा
0: क्योंकि इसका खर्चा भी आता है साल भर का, तो खर्चा भी निकलना है, अपना भी खर्चा
1: तो
0: उसी में निकालना
1: एक
0: है।
1: एक बात थी कि जैसे 45 से 50 किलो एक बक्सा से
0: कम से कम उत्पादन होना
1: उत्पादन मिल
0: चाहिए।
1: जाता, अगर इतना मिल गया तो एक बाजार बेचे के लिए बाजार मिल जाता आसानी से या एकरे लिए परेशानी हो पड़ता?
0: नहीं साहब, ये आप अगर थोड़ा सा ज़्यादा स्टाइलिस्ट हैं, ज़्यादा आप सोचें हमको ज़्यादा ज़्यादा पैदा मिले, तो आप प्रचार प्रसार के लिए लोगों को समझाइए, भैया हम शुद्ध

0: निकाल रहे हैं, शुद्ध दे रहे हैं, हमारी गारंटी है और हम इतने में देंगे, 400 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये जो भी हो आप उसको, 400 तो कम कोई देगा भी नहीं।
1: अच्छा, एक किलो का।
0: एक किलो
1: का। तो एक बात बताओ कि हमें ना एक बक्सा के मधुमक्खी के रख रखाव में कितनी लागत आ जाती है?
0: लागत इसका आज के डेट में कम से कम 5,000 रुपये
1: साल भर में,
0: नहीं पूरे बक्से का लागत है। और जो खर्चा आता है वो कम से कम 1,200 रुपये।
1: नहीं, बक्सा की लागत 5,000, बक्सा बनवाओ
0: बक्सा भी मधुमक्खी।

0: नहीं, पूरे बक्से का
1: पूरे
0: लागत
1: बक्से।
0: है
1: हाँ
0: और जो खर्चा आता है वो कम से कम 1200 रुपये,
1: नहीं, ये बक्सा की लागत 5,000,
0: 5000।
1: बक्सा बनवाओ बनवाओ के।
0: बक्सा भी, मधुमक्खी छत्ता है लकड़ी का, उसमें टापा होता है, फ्रेम, तो सारे सिस्टम
1: नहीं
0: होता है।
1: मतलब बक्सा तो एकदम बनवा ले, अब जो उन मधुमक्खी पाले हैं उनका खान पान में
0: लगभग
1: कितनी
0: 1200 रुपये।
1: 1 साल में। अच्छा एक बात ये बतावा कि मार्च से जब उत्पादन बंद हो जाता, शहद मिल बंद हो जाता है, तो अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक वह मधुमक्खियों के कहाँ रखा था?
0: उसको जैसे जो बहुत ज़्यादा लू न लगे और बहुत ज़्यादा ठंडी न लगे, तो उसको ऐसे कंडीशन में रखें कि उसको तकलीफ ना हो, जैसे हमको कोई दिक्कत ना हो, तो वैसे उसे रखा जाता है।
1: तो चारा तो यूं बीच में देह पर थोए।
0: हाँ, इस समय मधुमक्खियों को कृत्रिम चारा के लिए चीनी का घोल बना के दिया जाता है, पराग दिया जाता है उसको जो रखे रहते हैं, नहीं तो पराग तो अभी मिल रहा है,
1: जी
0: और पराग जब टूटता है तभी बक्सा टूटता है, नहीं तो टूटता नहीं है।
1: अच्छा। तो एक बात और ही बताओ भैया कि एक जो न बक्सा रख मधुमक्खी लियावे बरे कहाँ से लियावत, कोनो एक जगह है या कहूँ से मांग के?
0: नहीं, जैसे अब हम पाले हुए हैं मक्खी, हमारे पास बक्सा ज़्यादा है, बढ़ गया है, तो कोई खरीदार आया, लोगों से कहा भैया कोई मक्खी लेगा तो बताइएगा, हम बेचेंगे, तो ऐसे जो पाला है उसी पालक से हम ले लेते हैं।
1: अच्छा बक्सा सहित।
0: हाँ, बक्सा सहित ले लिया जाता है।
1: अच्छा, तो वो जब बक्सा सहित ले ले तो मालूम बेच, अब 54 बक्सा बताओ था आप,
0: इस समय हमारे
1: तो
0: पास
1: अब अगर
0: चौदह
1: बक्सा बेच देवे तो बक्सा वाला ले जाएगा,
0: हम्म,
1: फिर तोरे पास बक्सा कम हो जाए।
0: ये कम क्यों होगा, वो बढ़ती रहती हैं।
1: अच्छा ये मधुमक्खी बच्चों देत रहे
0: हाँ,
1: थे?
0: एक रानी मक्खी एक दिन में 800 से लेके 1500 अंडे एक दिन में देती है, अगर उसको खाने का नहीं है तो एक भी अंडा एक को महीना में नहीं देगी, ये क्षमता
1: अच्छा
0: मधुमक्खी रानी का होता है।
1: अच्छा ये बताओ कि जो बक्सा के अंदर अंडा देते हो ही
0: हाँ, अंदर
1: छत्ता
0: ही।
1: में,
0: हाँ,
1: तो जब अंडा से मधुमक्खी पैदा होता है तो वह वहीं छत्ते में रहा थोए,
0: हाँ उसी में रहेगा।
1: वहीं में रहे, तो वो मधुमक्खी जो ज़्यादा हो गए जितना पैदा भाई ज़्यादा हो गए तो उनका अलग कैसे करत?
0: अलग हम लोग देखते रहते हैं कि एक बक्से में दो रानी ना होने पाए, अगर एक बक्से में दो रानी हो गई तो आधा परिवार लेके उधर चले जाएगी, आधा परिवार लेके उधर चले जाएगी, तो उस सेल को होने से पहले या तो हम दूसरे बक्से में रख देंगे या फिर जो है कि उसको सेल को तोड़ देंगे।
1: अच्छा। और मैं कोनो दवा इलाज के भी जरूरत पड़त है
0: हाँ,
1: क्या?
0: जैसे आदमी को समय समय पे सेजनी बुखार या बीमारी आ जाती है, उससे उसमें भी आ जाता है समय समय पे, तो उसका देख के पता चल जाता है, जैसे आदमी को देख के पता चल जाता है कि इसको तकलीफ है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, प्रफुल्लित चेहरा
1: तो
0: है।
1: ओकर कैसे उपचार करावा था?
0: उसका उपचार ये है कि देखें, हो गया तो उसका दवा दे दिया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं।
1: तो नहीं दवाइयाँ के दे कहाँ से
0: दवाइयाँ
1: देते,
0: हम ही लोग देते हैं।
1: कैसे देते वो? तो टेबलेट वेबलेट तो खाए ना
0: नहीं,
1: पहले?
0: टैबलेट नहीं, उसका कोई भी कुछ भी देना होता है तो मधुमक्खी को पहले तो साफ़ सफाई रखा जाता है, बीमारी आने ही ना पाए। अगर मान लीजिए कोई दिक्कत हो गई तो उसमें जैसे आपका ये सल्फर हुआ, ये सत्ताजवाइन हुआ, इसको हल्दी हुआ, इसको मिला करके दे देते हैं, तो रोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है ख़त्म हो जाता है।
1: अच्छा ये एक बात और जानना ही चाहिए था कि भैया जैसे दवा हुआ होगी वह हिसाब से कैले है, दूसर चीज़ ये कि मधुमक्खी ज़्यादा बढ़िया शहद दे ये जो नवंबर से मार्च के महीने में, तो इनका कहाँ रखा था?
0: उसको वहाँ रख, हम लोग जाके देखते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा जो है कि फूल की खेती है, जैसे अपने यहाँ सरसों है
1: जी
0: बहुतायत मात्रा में, तो जहाँ देखते हैं सरसों है और मिट्टी काली है, वहाँ सिंचान है, वहाँ ले जाके रख दे, वहाँ रख देंगे, हवा पुरवा चल गया, मौसम नम हो गया, तो उसमें बड़ी बेशुमार शहद मिलती है।
1: अच्छा।
0: हाँ, वहाँ 15 दिन के बजाय 10 ही दिन में आप शहद निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मक्खी आराम से निकालने देगी, आपको कोई दिक्कत
1: अच्छा
0: नहीं
1: ये
0: पहले
1: सरसों के फूल उल जहाँ रहे
0: सरसों।
1: खेती
0: हाँ,
1: में, और कौन कौन फूल से उनका पराग मिला था?
0: देखिए, कुछ फूल ऐसे होते हैं जिसमें शहद पराग दोनों मिलता है, कुछ फूल ऐसे होते हैं जिसमें शहद मिलता है पराग नहीं मिलता है, किसी किसी फूल में पराग मिलता है शहद नहीं मिलता है।
1: सबसे ज़्यादा उपयोगी सरसों का फूल
0: अपने
1: है।
0: यहाँ उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उपयोगी सरसों का फूल है।
1: अच्छा ये जो उन गेंदा उदा का फूल हो तो उन्हन से
0: नहीं
1: नहीं
0: नहीं
1: लावा?
0: गेंदा या गुलाब में नहीं है,
1: अच्छा इन्हें में नहीं ना।
0: नहीं।
1: अच्छा ये जो और फूल हो जो खेते में जैसे तो तीसी उसी के फूल
0: हाँ,
1: या?
0: तमाम से लगभग लगभग सभी पौधों से कुछ न कुछ मक्खियाँ को प्राप्त होता है।
1: जी।

0: जैसे आपका लिप्टस है उसमें शहद ज़्यादा मिलता है, पराग मिलता है कम मिलता है। आपका ये सत्ता अजवाइन है,
1: क्या
0: करंज है,
1: करंज?
0: करंज का अब शहद निकलने वाले है जिसको ढिठोरी अपने यहाँ बोलते हैं, तो इसमें शहद ही शहद होता है, इसमें पराग नहीं होता है। लीची है, इसमें शहद ही मिलता है, पराग नहीं मिलता है।
1: तो ये बताओ, तोहरे गांव के अगल बगल तो
0: जी
1: कहती नहर भी बा,
0: हाँ
1: गेहूं की खेती, सरसों की खेती भी लोग
0: हाँ
1: करे
0: हाँ
1: थे, और अरहर उरहर भी बोवे थे।
0: हाँ अरहर से भी मिलता है शहद, पराग दोनों मिलता है अरहर से।
1: अच्छा
0: मटर है।
1: अच्छा अच्छा हम कही थे कि राम कृपाल भैया आप बहुत अच्छी जानकारी दें, जो भी मधुमक्खी पाले चाहत हुई किसान भैया हरे
0: जी
1: वो उनके लिए अच्छी बात बा, और अगर वो चाहें तो आपसे मिल के
0: बिल्कुल
1: सलाह मशविरा जानकारी और ले सके थी,
0: जी
1: है
0: भैया जी,
1: आप आएँ और अपनी बात बताएं, किसान भैया के हित की बात बताएं, एक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर
1: हाँ
0: आपको और दो
1: भैया,
0: भैया।
1: हाँ
0: देखा जब उन्हें मेरी खेती मेरी बात में भैया कार्यक्रम में देखा, अपन प्रगतिशील राम कृपाल भैया से देखा, दिनेश चंद पाणे भैया इतना फरियाए फरियाए कि जानकारी लीन हो कि भैया देखा खेती किसानी के काम धाम तो करते हैं हमें,
1: बिल्कुल
0: साथे
1: बिल्कुल
0: साथ भैया देखा अपन जो उन्हें मधुमक्खी के पालन भी करीन और उसे 4 पैसा की बढ़िया आमदनी मिलत है।
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: हम तो अपने किसान भैया बहनी हैं उनसे तो यह है कहा कि खेती किसानी का तो काम धाम अपन लाग रही मूला भैया देखा, अगल बगल जैसे कि अपन कुक्कुट पालन कर लें, साथे साथ भैया देखा अपन भी अपन तरह तरह के और भी पशुपालन कर लें खेती किसानी के साथ साथ है, तो 4 पैसा की आमदनी अगर बढ़त रहे
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: भैया ऐसे और घर परिवार खुशहाल रही हो।
1: बिल्कुल हो सुरेमन भाई, देखा मत्स्य पालन बा
0: हाँ
1: किसान भाई हरे खेती के साथे साथे जो उन है मत्स्य पालन अगर करत हैं तो
0: हाँ
1: वो भी उनके लिए फायदा है, एक जो व्यवसाय है जो खेती से जुड़ा बाटे जोन
0: हाँ
1: है।
0: हाँ
1: और भैया देखा ये सब के जानकारी देखा प्रगतिशील किसान भैया लोगों के जोन है मिलत रहत है, और
0: हाँ
1: साथे साथे भैया देखा किसान गोष्ठी किसान मेला में जोन है अपन तरह तरह के नई नई तकनीक के खेती के बारे में भी जोन है
0: हाँ
1: वैज्ञानिक भैया बतावत रहत हैं। मुला जरूरत बा कि भैया ये सब चीज़ के जानकारी ले लई के जोन है
0: हाँ
1: अपने खेती किसानी में के उपयोग करे के चाहिए।
0: कहिए अब जैसे कि जितनी बढ़िया जानकारी हुई भैया देखा आपन जो भी आपन रोजी रोजगार बा वहाँ की तरक्की भैया उतने अच्छी हुई।
1: बिल्कुल
0: हाँ
1: बिल्कुल
0: अब भैया देखा जानकारी अगर ठीक ना रही तो मैं भैया देखा नुकसानों हो सकत है, तो किसान भैया बहनी हरिन आपन जौन भी आपन खेती किसानी के साथ साथ जौन भी आपन उद्योग धंधा करा चाहें, 4 पैसा की आमदनी आपन बढ़ावा चाहें, तो बढ़िया अपने नज़दीकी भैया देखा ब्लॉक स्तर पर जाएं,
1: बिल्कुल
0: किसी
1: बिल्कुल
0: रक्षा इकाई पर जाएं, तो दवा दर्पण की भी ज़रूरत पड़त है, टेम टेम से और सहयोग की भी ज़रूरत पड़त है, तो भरपूर लाभ उठावें और 4 पैसा की आमदनी बढ़ावें।
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया देखा पशुपालन है, अगर किसान भाई हरे पशुपालन करते हैं
0: हाँ
1: तो भैया देखा आजकल जोन है देखा दूध से पनीर भी बनत है,
0: कही गया
1: और साथे साथे और ओकर कई उत्पाद बनत है,
0: हाँ
1: तो भैया कहीं न कहीं जोन है पशुअन बदे देखा अपने खेत से चारा मिल जाता है,
0: हाँ हाँ
1: और उनके दूध का उपयोग देखा कई तरह से होता है जो उनकी भैया देखा उसे 4 पैसा के आमदनी हो सकत है
0: हाँ
1: किसान भैया
0: ये
1: इनके।
0: तो भैया देखा ये तो बहुत नीक बात बा कि खेती किसानी में भी देखा काम धाम पड़त है हो, मेहनत पड़त है हो।
1: बिल्कुल
0: हाँ
1: बिल्कुल
0: देखा चाहे फावड़ा से हो, चाहे खुरपी हो, चाहे हंसिया हो, भैया तरह तरह के देखा भाई भाई बहनी हरे सब घर परिवार मिलके खेती किसानी में सवेरे से सांझे तक लाग लपटियान रहा तुम्हें, तो भैया देखा शरीर में बल पौरुख जौन है लागत है,
1: बिल्कुल
0: शरीर
1: बिल्कुल
0: में देखा ऊर्जा की जरूरत पड़त है हो, तो आपन तो खेती किसानी के साथ साथ दूध से 4 पैसा मिलवे करी, खाए पियो में भी देखा
1: बिल्कुल
0: अपन
1: बिल्कुल
0: स्वास्थ्य भी बढ़िया बना रही, और साथे साथ तो हम तो यह कहा सब किसान भैया बहनी हरिन भैया अपन पशुपालन गाय भैंस जरूर पालें
1: बिल्कुल
0: ताकि
1: बिल्कुल
0: अपन घर भी उजियर रहे हो। हाँ अब कहत नहीं है कि अपन देखा खाए पिए में देखा अपन थाली उजियर रहत है, उजियर रहत है तो भैया देखा भोजन में भी बड़ा देखा जो उन्हें आनंद आ जात हवे,
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल
0: साथे साथ भैया देखा शरीर के स्वास्थ्य भी बढ़िया बना रहता है।

0: बिल्कुल बिल्कुल भैया जवन है देखा हो सुरेमन भाई, बात बतकई तो होत रही मूला। हम कहा बाबा थे पंच भैया हरण के और फूलचंद यादव संघातिन के जवन है
1: हाँ
0: एठे और गौनई हुई है
1: हाँ हाँ
0: एठे।
1: हाँ तो सुनवा दिया हो।

0: हाँ भैया
1: जो
0: जो
1: भैया देखा अपन किसान भैया बहनी हैं इनका देवी गीत जौन है भैया अपन फूलचंद संघातिन जौन है देखा बढ़िया सुनाइन और
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: किसान
0: भैया
1: भैया बहनी हरन सुनिन। और साथे साथ भैया हम तो यह कही थी कि खेती किसानी का काम धाम अपन किसान भैया बहनी हरन जौन है मौसम को देखत भय अपन ध्यान रखें,
0: बिल्कुल
1: काहे
0: बिल्कुल
1: कि देखा देखा
0: समय
1: अटल बितल पड़त बा।
0: बिल्कुल
1: हाँ
0: बिल्कुल
1: देखा चाहे देखा बारिश हुई जात है कभो आंधी तूफान आ जात है
0: बिल्कुल
1: काओ
0: बिल्कुल
1: कभो कभो देखा भैया इतना जो नहीं गर्मी पड़त हवे कि भैया देखा खेती किसानी में भी साथे साथ अपन पशुपालन में भी तरह तरह के समस्या आ जाते हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल भैया जौन है अपन जौन पशुपालन है देखा अपन जौन जानवर हैं पशु हैं
1: हाँ हाँ
0: भैया देखा ये अनबोलता जानवर हैं इनका ध्यान देव जरूरी बा। ये
1: हाँ
0: गर्मी के मौसम में विशेषकर भैया देखा ताज़ा पानी और ताज़ा चारा देवे के
1: कहिए
0: चाही। समय से उनका जौन है पानी पियावें भैया और समय से उनका जौन है पानी से धुलाई कर दें।
1: हाँ हाँ
0: और भैया देखा हो अगर समय से जौन है और छाहें भी बांध दें जौन है
1: हाँ
0: काहे
1: हाँ
0: से कि गर्मी के मौसम में अगर दुधारू पशु भैया देखा अगर ओका तनी सुबह बुखार आई के ना तो भैया दूध के भी नुकसान होई और
1: हाँ
0: साथे साथे भैया देखा जानवर के साथे ओका पशुपालक भी परेशान होई
1: कही गए।
0: तो
1: और एक बात और हम कहब हो कि किसान भैया बहनी रहन अपन देखा जैसे कि पशु पालन करत हैं तो पशुअन में और साथे साथ जौन छोट देखा जौन उनके जौन पड़वा पड़िया बा उन्हों का भैया ऐसे ढंग से रखें कि सीधे जौन लू वाली जौन बयार हवा बा वो सीधे देखा उनका न लाग गए।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: काहे
0: बिल्कुल
1: कि भैया लू लाग जाए से अपन जौन है छोटवार जानवर जौन है देखा इनका नुकसान हो जाता है साथे साथ जौन है बुखार आएगा तो तरह तरह के समस्या आ जाते हैं तो इसे बच बचाए के रहें।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और
0: भैया
1: साथे साथ हम अपने किसान भैया बहनी हैं से यह कहा चाहिए थे कि अपने हम जो पंचायती कार्यक्रम भैया देखा कार्यक्रम सुनें गुनाएं और साथे साथ जौन अपन प्रतिक्रिया बा उका जरूर बतावें। तो भैया देखा व्हाट्सएप नंबर जौन बा कि 8004926205 हम कही एक बार और बता दिया जाए हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल भैया
1: हाँ तो भैया देखा 8004926205 और
0: बिल्कुल
1: देखा भैया किसान भैया बहनी हरेन सुनिन और देखा हर एक काम टेम टेम से निक लागत है किसान भैया बहनी से विदा लिहल जाए तो पंचो
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

अभी हमारी ग्रामीण भाई अपना कार्यक्रम सुन रही थी पंचायत घर। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में 7:20 होने को ही अब से थोड़ी देर में आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से हम रिले करेंगे प्रादेशिक समाचार। बस थोड़ी प्रतीक्षा।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में कल बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 70 से अधिक लोगों की मौत। 24 घंटे में सर्वे पूरा कर मुआवजा जारी करने के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ईंधन की बचत के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और सार्वजनिक परिवहन को अपनाने का आह्वान। गाजियाबाद में एनडीआरएफ के राष्ट्रपति निशान अलंकरण कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 7 क्षेत्रीय रिस्पांस सेंटर का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और आगरा में डेयरी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन। पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, पशुपालक समितियों को एक महीने में ही भुगतान सुनिश्चित करेगी सरकार। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कल बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। उन्होंने जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर तत्काल सर्वे पूरा कराने का निर्देश दिया है, जिससे मुआवजा जारी किया जा सके। एक रिपोर्ट।
1: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने, पेड़ गिरने और बिजली के खंभे गिरने की घटनाओं से हुई हैं। इनसे बिजली आपूर्ति और सड़क तथा रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए और सभी जिलों को हर 3 घंटे में हालात का अपडेट भेजने के लिए भी कहा गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: वहीं मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में जिलों में प्रभावितों को राहत पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। चंदौली के अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व राजेश कुमार ने बताया कि नुकसान का आकलन करने के लिए संबंधित अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में तेजी से कार्य कर रहे हैं। जनहानि के प्रकरण में मौके पर पहुंचकर पीड़ितों को आपदा राहत कोष से लाभ दिलाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
2: हम लोग सभी अवयवों पर, सभी कंपोनेंट्स पर काम कर रहे हैं और जो पोल इत्यादि टूटे हैं उनके मरम्मत, उनको लगवाने जाने का काम जारी है। इसके अलावा जो पेड़ इत्यादि गिरे थे उनको भी हटवाकर जो है यातायात सुचारू कराया गया है। जो मानव मृत्यु के केस हैं उनको भी नियमानुसार आर्थिक सहायता दी जा रही है और इसी प्रकार जो मकान क्षति हुई है, मकान क्षति में भी नियमानुसार जो भी आर्थिक सहायता बन रही है उसको भी दिलाया जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से ईंधन की बचत की अपील के क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ईंधन की बचत के लिए रिन्यूएबल एनर्जी, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों, कार पूलिंग के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी व्यवस्थाओं को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने 7,700 से अधिक गो आश्रय स्थलों में संरक्षित 15 लाख से अधिक गोवंश के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर गैस प्लांट आधारित सामूहिक किचन मॉडल विकसित करने की बात कही, जिससे एलपीजी पर निर्भरता कम हो सके। लखनऊ में निजी मीडिया संस्थान के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट के समय देश हित सर्वोपरि होना चाहिए। हर नागरिक का दायित्व है कि वो राष्ट्र के साथ खड़ा होकर अपना योगदान दे।
3: अगर आपके घर से ऑफिस जाने के लिए, अपने प्रतिष्ठान में जाने के लिए वह सुविधा है, हम उसका उपयोग करें तो ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य भी बनता है कि हम इस कार्य को करते हैं, तो यह भी हमारी राष्ट्र के प्रति हमारा एक योगदान होगा कि संकट के समय हम भी इस आह्वान के साथ जुड़ करके देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने, काफिला कम करने की अपील के मद्देनजर विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने परिषद की संसदीय समितियों के पूर्व निर्धारित भ्रमण के समस्त कार्यक्रमों को अगले आदेशों तक स्थगित कर दिया है। वहीं कानपुर स्थित छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में पेट्रोल डीजल वाहनों के प्रयोग पर कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने आदेश जारी किए हैं। अब विश्वविद्यालय के कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक और दूसरे अधिकारी परिसर में आधिकारिक कार्यों के लिए ई कार्ट या

0: इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करेंगे। कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय की बैठकों को अधिक से अधिक ऑनलाइन आयोजित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
1: हमने अपने स्टूडेंट्स को भी कहा है कि जो साइकिल या ई कार्ड का प्रयोग, हम लोगों ने ये भी एक नियम निकाला है कि जो लोग शहर में जा रहे हैं तो ई व्हीकल चाहिए, तो पेट्रोल बचाना और ऊर्जा को बचाना विश्वविद्यालय का अपना कर्तव्य है।
0: इसी क्रम में अयोध्या नगर निगम ने तय किया है कि अब सप्ताह में एक दिन यानी हर सोमवार को महापौर, पार्षद और अधिकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पूलिंग के जरिए नगर निगम कार्यालय पहुंचेंगे। इसके साथ ही महापौर का एस्कॉर्ट वाहन भी बंद कर दिया गया है। वाराणसी में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल बचाओ जागरूकता अभियान चलाया। नई सड़क स्थित कोदई चौकी से इलेक्ट्रिक स्कूटी रैली निकाली गई और पेट्रोल की बचत और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गाजियाबाद स्थित 8वीं एनडीआरएफ बटालियन में राष्ट्रपति निशान अलंकरण कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने वीर जवानों को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड प्रदान किया और 6 रीजनल रिस्पांस सेंटर का ई शिलान्यास और 1 रीजनल रिस्पांस सेंटर का ई लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि एनडीआरएफ ने 2 दशक के कम समय में ही देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 से न केवल जोखिम को न्यूनतम करने के लिए कार्य किया गया है, बल्कि प्राकृतिक आपदा को कम करके उससे निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं।
2: आज देश भर में कहीं पर भी जाते हैं, आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, इस घोष वाक्य के साथ काम करते हुए एनडीआरएफ के जवानों के प्रति न केवल समग्र देश, जहां जहां दुनिया में गए वहां आपने प्यार भी अर्जित किया है और लोगों का भरोसा भी अर्जित।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में स्वदेशी दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आगरा में आज स्वर्णिम दुग्धामृत संवाद समागम थीम पर डेयरी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया। प्रदेश के पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए श्री सिंह ने कहा कि निराश्रित गोवंश सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश की सभी गौशालाओं को संरक्षित और सुरक्षित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है और प्रदेश सरकार पशुपालक समितियों को मजबूत करते हुए 1 माह में ही भुगतान करने का काम करेगी।
3: निराश्रित गौवंश योगी सरकार की प्राथमिकता है और इसको उत्तर प्रदेश में हम सभी गौशालाओं को संरक्षित और सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं। दुग्ध उत्पादन उत्तर प्रदेश में देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है और भारत का हिस्सा उत्तर प्रदेश में दूध का सबसे अच्छा है। आज हम दुग्ध महोत्सव के माध्यम से पशुपालकों को, दुग्ध समितियों को मजबूत करते हुए महीने के अंदर ही हम दुग्ध उत्पादकों का भुगतान कराने का काम करेंगे और ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिसमें दुग्ध उत्पादन की बढ़ोतरी हो।
0: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का लखनऊ के बैकुंठ धाम में आज अंतिम संस्कार किया गया। उनकी पत्नी अपर्णा यादव के पिता अरविंद सिंह बिष्ट ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस मौके पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, सपा नेता शिवपाल सिंह यादव, धर्मेन्द्र यादव और सैफई परिवार के सदस्यों समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने उन्हें अंतिम विदाई दी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ा दी गई है। परिषद के सचिव संजीव कुमार सिंह ने बताया कि आवेदन की अंतिम तिथि अब 17 मई कर दी गई है। परिषद के अनुसार 11 मई तक कुल प्रवेश क्षमता 271,093 सीटों के सापेक्ष 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया जा चुका है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कल बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 70 से अधिक लोगों की मौत, 24 घंटे में सर्वे पूरा कर मुआवजा जारी करने के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ईंधन की बचत के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और सार्वजनिक परिवहन को अपनाने का आह्वान। गाजियाबाद में एनडीआरएफ के राष्ट्रपति निशान अलंकरण कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, 7 क्षेत्रीय रिस्पांस सेंटर का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और आगरा में डेयरी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्म

0: सुखपाल सिंह ने कहा, पशुपालक समितियों को एक महीने में ही भुगतान सुनिश्चित करेगी सरकार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में काव्य कौमुदी के तहत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सुधांशु शुक्ला और डॉक्टर वंदना शुक्ला से उनकी काव्य रचनाएं। कार्यक्रम का आरंभ कर रही हैं सुधांशु शुक्ला की इस काव्य रचना के साथ।
2: दीवारों ने कहा है दर्द अपना, दीवारों ने कहा है दर्द अपना, क्या गुजरता है। दीवारों ने कहा है दर्द अपना, क्या गुजरता है, कि कोने बैठ माँ रोती है और बेटा बिगड़ता है। दीवारों ने कहा है दर्द अपना, क्या गुजरता है, कि कोने बैठ माँ रोती है और बेटा बिगड़ता है। जवानी के नशे में है, जवानी के नशे में है, तुझे दिखता नहीं कुछ भी। जवानी के नशे में है, तुझे दिखता नहीं कुछ भी। दिया तूने सितम कैसा, पिता बूढ़ा तड़पता है। दिया तूने सितम कैसा, पिता बूढ़ा तड़पता है। और कहीं कहीं होगा खुदा मेरा, कहीं होगा खुदा मेरा, कहीं तुझ पे नजर होगी। कहीं होगा खुदा मेरा, कहीं तुझ पे नजर होगी। पता होगा तुझे भी तब कि कैसे घर बिखरता है। पता होगा तुझे भी तब कि कैसे कैसे घर बिखरता है। मुकद्दर ने न जाने क्या, कि मुकद्दर ने न जाने क्या लिखा है जिंदगानी में। मुकद्दर ने न जाने क्या लिखा है जिंदगानी में। बुढ़ापे में मेरा बेटा मुझी से क्यों झगड़ता है। बुढ़ापे में मेरा बेटा मुझी से क्यों झगड़ता है। हुआ है गर कभी भी पाप हमसे तो सजा दे दो। हुआ है गर कभी भी पाप हमसे तो सजा दे दो। उठा लो ऐ खुदा हमको, फकत जीना अखड़ता है। उठा लो ऐ खुदा हमको, फकत जीना अखड़ता है। अगली गजल

इसी क्रम में छंद दिया है जन्म जिसने ये उसी पर प्राण देता हूँ, दिया है जन्म जिसने ये उसी पर प्राण देता हूँ, खुदी को नाम उसके कर उसे प्रणाम करता हूँ, खुदी को नाम उसके कर उसे प्रणाम करता हूँ। सफर से प्रेम है मुझको दुआ जो साथ चलती है, सफर से प्रेम है मुझको

खूब लिख दी है, गिराता है मुझे तू फिर मुझे ही थाम लेता है, गिराता है मुझे तू फिर

0: साथ भी दे दे। अब एक अपनी आखिरी गजल, परिंदे परिंदे आंधियों से लड़के आते हैं, परिंदे आंधियों से लड़के आते हैं तभी तो घोंसला अपना बनाते हैं, परिंदे आंधियों से लड़के आते हैं तभी तो घोंसला अपना बनाते हैं। बुरे अपने दिनों की खासियत है ये, बुरे अपने दिनों की खासियत है ये, कहाँ कब कौन अपना है बताते हैं, कहाँ कब कौन अपना है बताते हैं। बुरे अपने दिनों की खासियत है ये, कहाँ कब कौन अपना है बताते हैं। और हवाओं के थपेड़े भी ज़रूरी हैं, हवाओं के थपेड़े भी ज़रूरी हैं, कठिन रास्ते हमें चलना सिखाते हैं, कठिन रास्ते हमें चलना सिखाते हैं। हवाओं के थपेड़े भी ज़रूरी हैं, कठिन रास्ते हमें चलना सिखाते हैं। और अभी अभी संघर्ष से तुम दोस्ती कर लो, अभी संघर्ष से तुम दोस्ती कर लो, यही संघर्ष ही मंजिल दिलाते हैं, यही संघर्ष ही मंजिल दिलाते हैं। अभी संघर्ष से तुम दोस्ती कर लो, यही संघर्ष ही मंजिल दिलाते हैं। अब बनेंगे हम भी कुछ तो, हाँ बनेंगे हम भी कुछ तो है यकीन इतना, बनेंगे हम भी कुछ तो है यकीन इतना। खुदा कुछ देर से ही पर बनाते हैं, खुदा कुछ देर से ही पर बनाते हैं, बनेंगे हम भी कुछ तो है यकीन इतना। खुदा कुछ देर से ही पर बनाते हैं। और शेर सुने कि सुनेगी दुनिया, सुनेगी दुनिया तब मेरी कहानी भी, सुनेगी दुनिया तब मेरी कहानी भी। समय वो लाते हैं हम दौर लाते हैं, समय वो लाते हैं हम दौर लाते हैं, सुनेगी दुनिया तब मेरी कहानी भी। समय वो लाते हैं हम दौर लाते हैं, समय वो लाते हैं हम दौर लाते हैं।
1: आप सुन रही थी काव्य कौमुदी के तहत सुधांशु शुक्ला से उनकी काव्य रचनाएं। कार्यक्रम के अंत में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर वंदना शुक्ला से उनकी कविताएं।
2: मेरी पहली कविता है जिसका शीर्षक है कल और आज। वही चीजें फिर फिर लिखी जा रही हैं, वही चीजें फिर फिर लिखी जा रही हैं और बना रही हैं साहित्य। वही चीजें फिर लिखी जा रही हैं और बना रही हैं साहित्य। वही पत्थर फिर गढ़े जा रहे हैं, वही पत्थर फिर से गढ़े जा रहे हैं और बन रही है प्रतिमाएं। वही हीरे पुनः तराशे जा रहे हैं, वही हीरे पुनः तराशे जा रहे हैं और ले रहे हैं नया रूप नया आकार। वही हीरे फिर तराशे जा रहे हैं और ले रहे हैं नया रूप आकार। पर वो वृक्ष जो जड़ से उखड़ गए हैं फिर नया रूप नहीं ले पाएंगे, पर वो वृक्ष जो जड़ से उखड़ गए हैं फिर नया रूप नहीं ले पाएंगे। उन वृक्षों पर अब पत्ते फल फूल कभी नहीं आएंगे, उन वृक्षों पर अब पत्ते फल फूल कभी नहीं आएंगे। और इस तरह लुप्त हो जाएगी एक प्रजाति, इस तरह लुप्त हो जाएगी एक प्रजाति। हम उन्हें कभी नहीं उगा पाएंगे, हम स्वयं प्रकृति के आभूषण उतार रहे हैं, प्राकृतिक सौंदर्य को अपने हाथों से मार रहे हैं। आधुनिकता की दौड़ में प्राकृतिक सौंदर्य खो रहे हैं, आधुनिकता की दौड़ में प्राकृतिक सौंदर्य खो रहे हैं। ये हम कैसे हो रहे हैं? अब किसी को प्रकृति से लगाव नहीं है, प्रकृति प्रेम का वो भाव नहीं है। सोचिए लुप्त हो जाएगी जब ये प्रजातियां, हम उन्हें कैसे उगाएंगे? ऐसे वृक्षों के बीज हम पुनः कैसे पाएंगे? ऐसे वृक्षों के बीच हम पुनः कैसे पाएंगे, इससे पहले कि देर हो जाए, इससे पहले कि देर हो जाए हमें प्रकृति को संवारना होगा, इससे पहले कि देर हो जाए हमें प्रकृति को संवारना होगा, स्वार्थ परता के भाव को मारना होगा, इससे पहले कि देर हो जाए हमें प्रकृति को संवारना होगा, स्वार्थ परता के भाव

भाव को मारना होगा, बोना होगा बीज, बोना होगा बीज, लगाना होगा पौधा, बोना होगा बीज, लगाना होगा पौधा, और तैयार करना होगा बाग। इसी से सुखद होगा हमारा कल, इसी से सुखद होगा हमारा कल और आज। और मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है सबसे पहले लिखूंगी, नर नारी को एक समान लिखूंगी, नर नारी को एक समान लिखूंगी, सूरज चंदा तारों को दैदीप्यमान लिखूंगी, नर नारी को एक समान लिखूंगी, सूरज चंदा तारों को दैदीप्यमान लिखूंगी, खुद का अभिमान स्वाभिमान लिखूंगी, खुद का अभिमान स्वाभिमान लिखूंगी, पर सबसे पहले अपना हिंदुस्तान लिखूंगी, पर सबसे पहले अपना हिंदुस्तान लिखूंगी। दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का लाल किला कुतुब मीनार लिखूंगी, दिल्ली का लाल किला कुतुब मीनार लिखूंगी, बनारस की सकरी गलियों का आकार लिखूंगी, दिल्ली का लाल किला कुतुब मीनार लिखूंगी, बनारस की सकरी गलियों का आकार लिखूंगी, शाहजहां का ताजमहल बेगम मुमताज लिखूंगी, शाहजहां का ताजमहल बेगम मुमताज लिखूंगी, पर सबसे पहले अपना प्रयाग लिखूंगी, नेताओं के भाषण पर सवाल लिखूंगी, नेताओं के भाषण पर सवाल लिखूंगी, भ्रष्ट नेताओं पर पूरी पूरी किताब लिखूंगी, पर सबसे पहले रोटी का इंतजाम लिखूंगी, पर सबसे पहले रोटी का इंतजाम लिखूंगी, बिटिया के लिए कविताएं तमाम लिखूंगी, बिटिया के लिए कविताएं तमाम लिखूंगी, निर्धन के लिए धन का इंतजाम लिखूंगी, बिटिया के लिए कविताएं तमाम लिखूंगी, निर्धन के लिए धन का इंतजाम लिखूंगी, गजलें छंद गीत गान लिखूंगी, गजलें छंद गीत गान लिखूंगी, पर सबसे पहले शहीदों को प्रणाम लिखूंगी, पर सबसे पहले शहीदों को प्रणाम लिखूंगी। और मेरी अगली कविता का विषय है कविता, रातों की नींद में खलल है कविता, रातों की नींद में खलल है कविता, भाव मन के प्रवल है कविता, रातों की नींद में खलल है कविता, भाव मन के प्रवल है कविता, अंतः अभिव्यक्ति गंभीर है कविता, अंतः अभिव्यक्ति गंभीर है कविता, उद्गार हृदय के मन की पीर है कविता, उद्गार हृदय के मन की पीर है कविता, मन में उपजे कोमल विचारों का साकार रूप है कविता, मन में उपजे कोमल विचारों का साकार रूप है कविता, स्वप्न में पनपे निराकार रूप का आकार है कविता, दिल का सुकून है कविता एक जुनून है कविता, दिल का सुकून है कविता एक जुनून है कविता, मेरी प्रसन्नता का कारण है कविता, कभी होती है अकारण भी कविता, कवि के लिए एक आस है कविता, मृग तृष्णा सी प्यास है कविता, कवि के लिए एक आस है कविता, मृग तृष्णा सी प्यास है कविता, कस्तूरी सी गंध है कविता, मधुर मकरंद है कविता, मेरे जीवन में वसंत है कविता, अंतःकरण का आनंद है कविता, कभी पीर तो कभी प्रसन्नता से पनपती।

0: है। कभी पीर तो कभी प्रसन्नता से पनपती है, इतनी आसानी से भी नहीं जन्मती है। कभी पीर तो कभी प्रसन्नता से पनपती है, इतनी आसानी से भी नहीं जन्मती है। कागज पर कलम की मात्र छाप नहीं है, कागज पर कलम की मात्र छाप नहीं है। कविता कोई फिजूल बात नहीं, ना विलाप है कविता। कोई फिजूल बात नहीं, ना ही विलाप है कविता। हर लेखक को प्राण से प्यारी है कविता, हमारी मात्र हमारी है कविता। हमारी मात्र हमारी है कविता। और मेरी अगली रचना, जिसका विषय है स्त्री। मैं नहीं रजनी निशाना भोर हूँ, मैं नहीं रजनी निशाना भोर हूँ, ना कभी कहना कि मैं कमजोर हूँ। मैं नहीं रजनी निशाना भोर हूँ, ना कभी कहना कि मैं कमजोर हूँ। और काट सकती हूँ सब आवारा पतंगे, काट सकती हूँ सब आवारा पतंगे। मांझा सरीखी मैं तो पक्की डोर हूँ, मांझा सरीखी मैं तो पक्की डोर हूँ। रामायण में वर्णित मैं सुकोमल सीता हूँ, रामायण में वर्णित मैं सुकोमल सीता हूँ। अपाला गार्गी ज्ञान की घोषा हूँ, रामायण में वर्णित मैं सुकोमल सीता हूँ, अपाला गार्गी ज्ञान की घोषा हूँ। अंतरिक्ष में 9 महीने बेखौफ रहने वाली, अंतरिक्ष में 9 महीने बेखौफ रहने वाली, चट्टानी इरादों वाली मैं ही विलियम्स सुनीता हूँ। चट्टानी इरादों वाली मैं ही विलियम्स सुनीता हूँ। एक चुटकी सिंदूर की कीमत बताने वाली हूँ, एक चुटकी सिंदूर की कीमत बताने वाली हूँ। मैं शिवांगी बन राफेल उड़ाने वाली हूँ। एक चुटकी सिंदूर की कीमत बताने वाली हूँ। मैं शिवांगी बन राफेल उड़ाने वाली हूँ। आतंकवादियों के आतंक को जड़ से मिटाने वाली, आतंकवादियों के आतंक को जड़ से मिटाने वाली मैं ही कर्नल सोफिया कमांडर व्योमिका हूँ। मैं ही कर्नल सोफिया कमांडर व्योमिका हूँ।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रही थी डॉक्टर वंदना शुक्ला से उनकी काव्य रचनाएं। इसी के साथ काव्य कौमुदी कार्यक्रम अब समाप्त होता ही हिंदी कार्यक्रम के तहत आपने ये हमारा विशेष कार्यक्रम सुना। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 MHz पर प्रस्तुत है सुगम संगीत के कार्यक्रम में सरगम लता के स्वर में मीराबाई की ये भक्ति रचना।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सरगम लता के स्वर में मीराबाई की ये भक्ति रचना। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फना फिल्म के इस गाने से। शान और कैलाश खेर की मिली जुड़ी आवाजें हैं। गीत के बोल लिखे हैं प्रसून जोशी ने और संगीत जतिन ललित का है।

जतिन ललित के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे प्रसून जोशी का लिखा ये गाना शान और कैलाश खेर की मिली जुड़ी आवाजों में। फिल्म का नाम था फना।

श्रोताओं, आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। अगला गाना पद्मावत फिल्म से, संजय लीला भंसाली के संगीत निर्देशन में, रचना ए एम तुरास की है और आवाजें श्रेया घोषाल, स्वरूप खान और साथियों की मिली जुली।

श्रेया घोषाल, स्वरूप खान और साथियों की मिलीजुली आवाज सुनी। अभी आप सुन रही थी पद्मावत फिल्म का ये गाना, ईएम तुरास का लिखा और संजय लीला भंसाली का संगीतबद्ध किया।

फिल्म का नाम है जोधा अकबर। आवाज जावेद अली की है, बोल जावेद अख्तर साहब की और संगीत ए आर रहमान का।

ए.आर. रहमान के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रही थी जावेद अख्तर का लिखा ये नगमा, जावेद अली की आवाज में। फिल्म का नाम था जोधा अकबर।

मोहित चौहान, प्रिया पांचाल और साथियों की मिली जुड़ी आवाजों में अगला गाना हीरो फिल्म से। बोल निरंजन अयंगर की और संगीत सचिन जिगर का।

मोहित चौहान और साथियों की मिली जुड़ी आवाजों में अभी आप सुन रहे थे हीरो फिल्म का ये गाना। संगीत निर्देशन था सचिन जिगर का और गीत रचना थी निरंजन अयंगर की।

और श्रोताओं, प्रोग्राम के आखिर में हम आपको सुनवाने जा रही हैं लता मंगेशकर और बच्चों की मिली जुली आवाजों में पुकार फिल्म की ये प्रार्थना। संगीत ए आर रहमान का है।

यार रहमान के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रही थी लता मंगेशकर और बच्चों की मिली जुली आवाजों में पुकार फिल्म की ये प्रार्थना। इसे लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने। और श्रोताओं, इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। वक्त हो चला है कार्यक्रम विविधा का। आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं महादेवी वर्मा से। शांति मेहरोत्रा ने बातचीत की है, बातचीत का विषय है अतीत के झरोखों से। आइए सुनते हैं ये विशेष बातचीत।
1: महादेवी जी, जिन दिनों आपने लिखना शुरू किया था उन दिनों महिलाओं का लेखिका होना लोगों को चौंकाता था। आपने अपने प्रारंभिक लेखन काल में किस तरह का वातावरण अपने चारों तरफ पाया?
2: उस समय महिलाओं का अधिक पढ़ना लिखना जी तो असामाजिक कार्य माना जाता था। उनका कार्य क्षेत्र केवल घर था और उनको इतना अवश्य पढ़ा देते थे कि वे रामायण पढ़ सकें और
1: चिट्ठी पत्री लिख सकें,
2: बड़ों का कहना मान सकें, चिट्ठी पत्री पढ़ लें समय पढ़ने पर। इसके अधिक उनका कुछ जानना उचित नहीं माना जाता था और उस समय ऐसा ही वातावरण मिला। घर में ऐसा था कि माँ बहुत पूजा पाठ करती थीं और वैसे तो हम लोग फरखाबाद के थे तो फारसी उर्दू का वातावरण ही पुरुषों में था।
1: अच्छा।
2: मेरे पिता ने पहले पहले अंग्रेजी में एमए किया था, उसके पहले तो सब फारसी उर्दू जानते थे और महिलाएं हिंदी जानती थीं अवश्य। और माँ जबलपुर से आई तो वो अपने साथ हिंदी का वातावरण लाई और वे मीरा सूर के पद गाया करती थी, पूजा करती थी। उसी में उनके पदों के अनुकरण में ही कुछ कुछ लिखना आरंभ किया मैंने।
1: अच्छा।
2: और फिर उसके उपरांत मैं और लिखने लगी और पिता इतने प्रगतिशील थे कि उन्होंने मुझको पढ़ने के लिए क्रॉस स्टेट में भेज दिया
1: जी।
2: तब मैं पांचवें दर्जे में आई यहाँ।
1: अच्छा।
2: वातावरण यहाँ भी वैसा ही था, सुभद्रा जी मुझको साथिन मिली, हम दोनों मिल करके लिखते थे।
1: अच्छा, वो भी आपकी सहपाठी थी?
2: वो मुझसे एक वर्ष सीनियर थी।
1: अच्छा।
2: कक्षा में थी
1: जी।
2: और नवें दर्जे तक वो रही क्रॉस स्टेट में, उसके उपरांत उनका विवाह हो गया, वो चली गई। तब अकेले ही मैं लिखती थी
1: जी।
2: और उस समय ऐसा वातावरण नहीं था कि यहाँ लिखना बुरा माना जाए इलाहाबाद में
1: जी।
2: क्योंकि फिर गांधी जी का आंदोलन, स्वतंत्रता का आंदोलन आरंभ हो गया था तो उन्होंने कहा कि जब तक बहनें साथ नहीं आती हैं तब तक मैं देश को स्वतंत्र करा ही नहीं सकता
1: जी।
2: चाहे 100 वर्ष प्रयत्न करूं। और तब अशिक्षित स्त्रियां भी साथ आ गईं तो शिक्षित होना फिर इतना बुरा नहीं माना जाता था।
1: लिखने के लिए क्या आपको कोई विशेष वातावरण या समय या स्थान की अपेक्षा रहती है या कहीं भी कभी भी लिख लेती हैं?
2: अब ये तो अपने अनुभूति पर निर्भर है
1: जी।
2: कभी ऐसा होता है एक चित्र
1: जी
2: ऐसी मानसिक स्थिति बना देता है, कभी एक घटना

0: देती है, कभी एक दृश्य बना देता है। कहाँ लिखा जाएगा ये नहीं कहा जा सकता, कविता के संबंध में तो अनुभूति जब तीव्र होगी तभी लिखा जाएगा।
1: ये बात तो है।
0: वो कहाँ होगी, किस वातावरण में होगी, ये पहले से कहना बहुत कठिन है।
1: कैसे दीदी, आज देश की महिलाएं जिस प्रगति की साक्षी हैं, उसे आपने एक एक कदम आगे बढ़ते देखा है। किवाड़ की ओर घूंघट में छुपे चेहरे से लेकर महत्वपूर्ण व्यक्ति होने तक की संघर्ष यात्रा के कौन कौन से पहलू आपके ध्यान में आते हैं?
0: 32 वर्ष हम लोगों को स्वतंत्र हुए हो गए
1: जी,
0: और हमारा स्वतंत्रता का संग्राम यानी इस सती के आरंभ से ही चला है
1: जी,
0: और स्त्रियां भी साथ आईं। अनेक स्त्रियों ने बहुत त्याग किया, बहुत बलिदान किया, और उनमें से अनेक नहीं हैं और अनेक हैं भी। अब उन्हें सभी अधिकार मिल गए हैं, बहुत से चेहरे सामने आते हैं जो आज हमारे बीच में नहीं है, और उन आश्चर्य यह है जैसे कस्तूरबा जो अशिक्षित थी, एक प्रकार से अक्षर ज्ञान रही थी, लेकिन युग के सबसे बड़े महापुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी वो।
1: ये सच।
0: और कोई ऐसा बलिदान नहीं था कि जो गांधी जी के साथ उन्होंने नहीं किया, और उनके उनकी विदा के बेला में गांधी जी के आंखों में आंसू आ गए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। कमला जी को देखा, कमला जी ने अपने आप को बिल्कुल यानी एक आहुति में ही, आहुति के रूप में ही परिवर्तित कर दिया। स्वतंत्रता के संग्राम में उन्होंने अपने स्वास्थ्य को भी खोया, जीवन को भी खोया, और अंत में जब उनसे पूछा बापू ने, वे विदेश जा रही थी चिकित्सा के लिए, जानती थी नहीं लौटेंगी, तो जब बापू ने पूछा कमला तेरी कोई इच्छा है, तो उन्होंने ना अपने एकमात्र पुत्री के लिए कुछ कहा, ना अपने पति के लिए कुछ कहा।
1: क्या कहा?
0: कहा कि मेरा अस्पताल जो चलता है देहात की स्त्रियों के लिए स्वराज भवन में, ये बंद ना हो जाए बापू।
1: कितनी बड़ी बात है देखिए।
0: तो अंतिम समय में भी उनकी इच्छा यही थी कि गरीब महिलाएं जो आती हैं उनके, उस समय तक उनकी कोई चिकित्सा होती नहीं थी, बालकों की भी कोई नहीं होती थी। तो आज जो कमला नेहरू अस्पताल है वो उनका स्मारक है, एक प्रकार से उनका स्मरण भी आता है और सुभद्रा जी का भी आता है
1: जी।
0: तीन तीन छोटे बच्चों को अकेले छोड़कर वे जेल चली जाती थी। आज स्त्री के पास सब अधिकार हैं, सारे यानी विधान ने उसको सब कुछ दे दिया है, लेकिन कहीं मन खो गया है, कहीं सपना खो गया है, कहीं आदर्श खो गया है, कहीं सब कुछ खो गया है। अब केवल मात्र स्त्री है और उसके शरीर की पूजा है, उसके अतिरिक्त उसके पास क्या है ये मुझे पता नहीं। उन दिनों को याद करके मुझे लगता है कि उस समय स्त्री वास्तव में ज्वाला थी, आज राख है।
1: त्याग करने के लिए बिल्कुल कमर कैसे बैठी थी दीदी। एक और सहज बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। एक और सहज पारिवारिक जीवन, दूसरी ओर लेखन, स्त्रियों के लिए इन दोनों के प्रति एक साथ न्याय कर पाना, क्या आपको लगता है ये संभव है? क्योंकि इतनी जिम्मेदारी उनके ऊपर रहती, इतने तरह के काम रहते हैं कि उनके पास समय नहीं रह जाता लिखने पढ़ने के लिए।
0: ऐसा मुझको नहीं लगता, समय का अभाव नहीं, हम अपने आप को व्यर्थ ही व्यस्त मान लेते हैं। मेरा तो बड़ा परिवार है एक तरह से, जिसमें पशु पक्षी सब हैं।
1: अच्छा।
0: और सवेरे से लेकर मुझको कुछ ना कुछ काम करना पड़ता, और उसके उपरांत एक बड़ी संस्था भी है जिसमें विद्यार्थियों की भी चिंता करनी पड़ती है, घर की भी करनी पड़ती है, और उसके बीच में मैं लिखती भी हूँ। तो मैं नहीं समझ पाती हूँ कि कोई दूसरी महिला ऐसा करे तो कुछ कठिनाई होगी उसकी। मैं बाहर का भीतर का दोनों काम करती हूँ, और मेरे घर को देखने वाला कोई नहीं, मैं घर के अपने एक तरह से कुलपति हूँ और बाहर की भी कुलपति हूँ। तो व्यवस्था का जहां तक प्रश्न है
1: जी,
0: यदि मान लिया जाए, हमारी एक कवित्री है जिन्होंने अपने द्वार पर लिख रखा है कि यहाँ कवित्री रहती है एक, आप सांकल न बजाइए, आप जोर से मत बोलिए, आप आवाज न दीजिए, उनको इसमें

0: लिखने में व्याघात पहुंचेगा। अब ये व्याघात कैसा है, बाधा कैसी है, मैं नहीं जानती हूँ। मुझको तो लिखते लिखते भी कोई पुकार लेता है, अब पुकार नहीं लेता मेरा कुत्ता भी भौंकने लगता है, तो मैं तुरंत उसकी ओर देखती हूँ क्या हुआ, और कहीं कोई भी पशु पक्षी कष्ट में पड़ जाए तो मैं उसकी चिंता भी करती हूँ, घर के व्यक्तियों की भी करती हूँ, व्यवस्था की भी करती हूँ, बाहर की भी करती हूँ। मुझे लगता है समय तो अनंत है, यदि हम एक क्षण भी व्यर्थ न खोएं, तो फिर जैसे बापू का था, प्रत्येक क्षण का उनके पास एक हिसाब किताब था, इतने समय तक 10 मिनट सोएंगे तो 10 ही मिनट में जाग जाएंगे, बस 11वां मिनट नहीं लगेगा उनको। तो यदि हम अपने समय का मूल्य समझें, तो जो व्यर्थ हम खोते हैं, आधुनिक जो महिला है वो केवल अपने प्रसाधन में 2-2 घंटे लगाती है
1: सही
0: और यानी अपने केश रचना के लिए सैलून में जाती है तो वहां भी लगाती है 2-2 घंटे। अपने जिस समय वो सज्जित होती है बाहर जाने के लिए, तो मैं समझती हूँ कि उसे 2 घंटे से कम नहीं लगती। 2 घंटे में कितना काम हो सकता है, उसके पास समय का कोई बोध नहीं है। बात करेगी तो बात ही करेगी, निंदा पुराण उसका चलेगा तो निंदा पुराण ही चलता रहेगा, और केवल व्यर्थ की बातें जो कि उसके वस्त्र आभूषण से ही संबंध रखती हैं, उसमें भी बहुत सा समय जाएगा। तो समय जहां नष्ट हो जाता है वहां फिर व्यवस्था नहीं हो पाती। समय की व्यवस्था ही जीवन की व्यवस्था है, तो हर क्षण का वो ध्यान रखे तो वो सारा काम कर सकती है, बहुत अच्छी तरह कर सकती है।
1: सारी बात मन की है।
0: पुरुष कैसे करता है?
1: हाँ, वो तो
0: करता है। ये मान लेना कि हर व्यक्ति कमंडल लेके सन्यासी हो जाएगा और तभी लिखेगा, ये तो बड़ी कठिन शर्त है, स्त्री के लिए भी पुरुष के लिए भी।
1: जी।
0: मैं समझती हूँ कि दोनों संभाले जा सकते हैं, यदि इतने संवेदना हो, इतना विवेक हो, तो जो कुछ परिवार में हम बनाते हैं वही समाज में बनाते हैं। घर की इकाई टूट जाने पर बाहर की इकाई नहीं रहेगी, घर की इकाई टूट जाएगी, मानवीय संबंधों का कोई स्थान नहीं रहेगा, तब फिर समाज से कोई संबंध स्थापित करना भी कठिन होगा, देश से संबंध स्थापित करना भी कठिन होगा, क्योंकि घर तो पहली पाठशाला है जहाँ मनुष्य त्याग सीखता है, जहाँ मनुष्य संवेदना सीखता है, मानवीय संबंध सीखता है, न जाने कितना कुछ सीखता है। तो मैं नहीं समझती हूँ कि लेखन से उसका कोई विरोध होता है, मानवीय संबंध से मानवीय संबंध का विरोध क्या हो सकता है, जल की छोटी धारा का बड़ी धारा में मिलने में कौन सी बाधा आती है।
1: लेकिन पारिवारिक जीवन जितना समझौता मांगता है, जितना समय मांगता है, तो उससे लेखन के लिए समय भी कम मिलता है, उसमें समर्पित होकर लेखन कर सके, ऐसा तो भी नहीं रह जाता, आप ऐसा नहीं सोचते?
0: ऐसा तो किसी ने नहीं कहा है
1: जी।
0: लेखन यदि वास्तव में लेखन है तो बहुत थोड़ा सा समय लेता है,
1: अपना समय
0: अधिक समय नहीं लेता। बड़ा से बड़ा कभी भी आप उससे पूछिए कि क्या ऐसा हुआ है कि आप एकदम बंद करके बैठ गए हैं और घंटों लिखते रहे हैं, कोई अनुभूति की तीव्रता घंटों नहीं ठहरेगी, आएगी और चली जाएगी। तो इसीलिए लेखन कुछ समय लेता है और गृहस्थी अधिक समय लेती है, तो इन दोनों में बंटवारा बहुत सहज ही हो जाता है।
1: अच्छा महादेव जी, आपकी कविता पुस्तकों की पृष्ठभूमि में मैंने बहुत सुंदर सुंदर चित्र बने देखे हैं, चित्रकला का शौक आपको कब से हुआ?
0: देखिए, चित्रकला की इच्छा तो हर बालक की रहती है, क्योंकि वो अनुकरण की प्रवृत्ति है। छोटे छोटे बच्चे देखिए कैसे चित्र बनाते हैं। पहले पहले मनुष्य अपने आप को व्यक्त रंग और रेखा वहीं करना चाहता है, क्यों नहीं, तो बालक क्यों करता है ऐसा, कुछ और नहीं जानता, पढ़ना लिखना नहीं जानता, उसको कुछ मिल जाए, खड़िया मिल जाए, कोयला मिल जाए, तो कुछ ना कुछ बनाएगा वो। तो घर में भी ऐसा होता था, नाग पंचमी है, अहोई अष्टमी है, और करवा चौथ है, न जाने कितने कितने पर्व होते थे कि जिनमें महिलाएं

0: भित्ति चित्र बनाती थी उस समय पूजा के लिए, तो घर में भी वैसा ही होता था, माँ बनाती थी तो उनकी देखा थी कि चौक वॉक से अपने आप ही बनाती थी। फिर मेरी रुचि देख करके और मेरे लिए एक ड्राइंग मास्टर रख दिया गया, तो उसने मुझे जिसमें मैं बेडोल ना बनाऊँ, आकृति ठीक दे सकूँ, इसलिए उसने सिखाया। और रंग की अपनी मेरी इच्छा रहती थी, इसी तरह चला वो। फिर यहाँ आकर के मैंने, उस समय तो चित्रकला विषय नहीं था पढ़ने का, ड्राइंग का विषय नहीं था
1: जी।
0: और संगीत भी उस समय विषय नहीं था, और उस समय गणित का भी कोई विकल्प नहीं था, गृह विज्ञान भी नहीं था, ये तो विद्यापीठ में आके मैंने आरंभ किया।
1: अच्छा।
0: लेकिन उस समय भी अच्छा लगता था कि कुछ चित्र बनाए, तो चित्र बनाती थी। अब कविता में चित्र बनाने में कठिनाई ये है कि एक छंद में, एक चरण में, एक पंक्ति में कई चित्र आ सकते हैं।
2: अतीत की झरोखुशी। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे इस विषय पर महादेवी वर्मा से शांति मेहरोत्रा की ये बातचीत। इसी के साथ अब आज का विविधा कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने को ही वक्त हो चला है आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार संध्या का, अब से कुछ ही पलों में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेइचिंग में वार्ता। होर्मुज जल डमरू मध्य को खोलने पर बल दिया। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। आज नई दिल्ली में श्री मोदी से मुलाकात करने आए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक नई दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी कल अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित

0: उच्च स्तरीय चर्चाओं के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है। एक रिपोर्ट।
1: भारत के यूएई को एक्सपोर्ट्स अब 36.63 बिलियन डॉलर से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो यूएई से भारत आने वाली सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा।
2: इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अभियान के दौरान 3,94,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 36,73,00,000 मतदाताओं के घर जाकर उनसे संपर्क करेंगे। तीसरे चरण में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में मतदाता सूची संशोधन का कार्य पूरा हो जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। कांग्रेस विधायक दल की आज शाम तिरुवनंतपुरम में बैठक हुई और उन्होंने VD सतीशन को अपना नेता चुना। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को CPM के विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। तिरुवनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK के महासचिव एडप्पा डी पलनीस्वामी ने आज राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर उन्हें SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले AIADMK विधायकों के गुट के संबंध में एक याचिका सौंपी। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से इस मुद्दे को अध्यक्ष JCD प्रभाकर के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले गुट के 25 AIADMK विधायकों ने OS मनियन द्वारा जारी व्हिप की अवहेलना करते हुए TV के सरकार के पक्ष में मतदान किया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
4: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर

0: नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि भारतीय व्यापारिक जहाज हाजी अली ओमान के जल क्षेत्र में कल तड़की आग लगने से कथित तौर पर डूब गया।
2: एन इंडियन डो
3: सोमालिया से शारजाह जा रहे भारतीय जहाज हाजी अली पर 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ, जिससे जहाज में आग लग गई और वो डूब गया। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 14 सदस्यों को ओमान तटरक्षक बल ने सुरक्षित बचा लिया। भारत सरकार ओमान सल्तनत के अधिकारियों, भारतीय मिशन के अधिकारियों और संबंधित समुद्री एजेंसियों के साथ संपर्क में है।
2: इंडियन मिशन ऑफिशियल्स एंड रिलेवेंट मैरिटाइम एजेंसीज।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपीलों के मद्देनजर अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप मंत्रालय स्तर पर 1 वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार राजधानी में कल से 90 दिनों तक मेरा भारत मेरा योगदान अभियान चलाने की घोषणा की है।
4: दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को भी सलाह जारी करेगी कि जहां भी संभव हो सप्ताह में 2 दिन घर से काम करने की नीति अपनाएं। वहीं सरकारी वाहनों में पेट्रोल डीजल की खपत 20% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
5: हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे, जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे।
4: इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सप्ताह में 1 दिन नो व्हीकल डे मनाने की भी अपील की है। आरजू के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए शित कुमार वैद्यान।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: हमेशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य खुला रहना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया और कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है।
2: अमेरिका और चीन के लोगों में कई समानताएं हैं। हम साहस और उपलब्धि को महत्व देते हैं। दोनों देशों के एकजुट होकर काम करने से हमें इन मूल्यों का उपयोग करके इस क्षेत्र और विश्व के लिए अधिक समृद्धि, सहयोग, सुख और शांति से भरे भविष्य का निर्माण करने का अवसर मिलेगा।

0: राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने टकराव की बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया और कहा कि चीन और अमरीका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है।
1: अमेरिका और चीन के लोगों में कई समानताएं हैं। हम साहस और उपलब्धि को महत्व देते हैं। दोनों देशों के एकजुट होकर काम करने से हमें इन मूल्यों का उपयोग करके इस क्षेत्र और विश्व के लिए अधिक समृद्धि, सहयोग, सुख और शांति से भरे भविष्य का निर्माण करने का अवसर मिलेगा।
0: इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। श्री रूबियो ने ताइवान को लेकर चीन की धमकी पर कोई जवाब देने से परहेज किया है। इससे पहले राष्ट्रपति चिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमेरिका के बीच टकराव और संघर्ष हो सकता है। ये टिप्पणियां दोनों देशों के बीच ईरान संघर्ष, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार जैसे व्यापक मुद्दों पर हुई बातचीत के दौरान आई। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए और सभी जिलों को हर 3 घंटे में हालात का अपडेट भेजने के लिए भी कहा गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। धर्मशाला में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। पंजाब ने 17वें ओवर में 7 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच पेकिंग में वार्ता। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says under India's chairmanship this year BRICS to aim for multilateralism and more inclusive world order. Election Commission announces Special Intensive Division Phase 3 to be conducted across 16 states and 3 union territories. In Keralam, Congress leader V.D. Satishan meets governor to stake claim to form government. In Uttar Pradesh, over 70 people killed due to rain, storms and lightning in the last 24 hours. U.S. President Donald Trump and his Chinese counterpart Xi Jinping hold talks in Beijing, stress on opening of Strait of Hormuz. And in Asian Senior Weightlifting Championships, Ajit Narayan clinches double bronze in men's semi.

0: गांधीनगर में मर्दों के 71 किलोग्राम के जुमरे में कांसे के 2 तमगे हासिल किए हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस बरस भारत की सदारत में ब्रिक्स कसीर सतहियत को मजबूत करने, पायदार तरक्की को फ़रोग देने, इक्तिसादी मज़ाहिमत को बढ़ाने और मज़ीद शमूलियत वाले आलमी निज़ाम की तश्कील के लिए मिलकर काम करेगा। आज नई दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म मोदी से मुलाकात के लिए आने वाले ब्रिक्स ममालिक के वज़राए खारजा और वफद के सरबराहान के साथ बातचीत करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि उभरती हुई मईशतों के दरमियान तआवुन को बढ़ाने और आलमी जुनूब की उमंगों को आवाज़ देने की गरज से ब्रिक्स एक अहम प्लेटफॉर्म के तौर पर उभरा है। ये मीटिंग नई दिल्ली में इन दिनों जारी ब्रिक्स वज़राए खारजा की मीटिंग से अलग मुनक़िद हुई। इससे कल ब्रिक्स वज़राए खारजा की मीटिंग में अपने इफ्तिताही बयान में वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अमन और सलामती को आलमी निज़ाम में मरकजी हैसियत ही हासिल होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हालिया तनाज़ात, मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत ही को उजागर करते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन दिनों जारी तनाज़ात, इक्तिसादी गैर यकीनी की सूरत हाल और तजारत, टेक्नोलॉजी और आबोहवा से मुतालिक चैलेंजेस आलमी मंजरनामे को शक्ल सूरत दे रहे हैं और इस नौ की तवक्कुआत बढ़ रही हैं कि ब्रिक्स इस सिलसिले में एक तामीरी और इस्तेहकाम अता करने वाला किरदार अदा करे। इस मीटिंग का मौजू है मज़ाहिमत, इख्तराआत, तआवुन और पायदारियत के लिए तामीर, इंसानियत को अव्वलियत देने और ब्रिक्स के अवाम मरकूज होने के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के विजन से इस मौजू के लिए तहरीक मिली है। कल दूसरे दिन ब्रिक्स मेंबरान और शरीक ममालिक एक इजलास में हिस्सा लेंगे जिसका मौजू है ब्रिक्स एट द रेट 20, मज़ाहिमत, इख्तराआत, तआवुन और पायदारियत के लिए तामीर। इसके बाद आलमी हुक्मरानी और कसीर सतही निज़ाम में इस्लाहात के मौजू पर इजलास होगा। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात एशिया की तेज़ी के साथ बढ़ती हुई इक्तिसादी शराकत दारियों में से एक को मज़ीद तौसी देने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आला सतही तबादला ख्याल की गरज से कल अबूधाबी पहुँच रहे हैं। इस तबादला ख्याल में तजारत, सरमायाकारी, तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और उभरती हुई टेक्नोलॉजियों पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। ये दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी इक्तिसादी मसरूफियात में तेज़ी के साथ होती हुई पेशरफ्त के माबैन हो रहा है। भारत मुत्तहिदा अरब अमारात की तजारत माली साल 2024-25 में 100 अरब अमरीकी डॉलर के निशाने से तजावुज कर चुकी है। ये 2022 के जामे इक्तिसादी शराकत दारी के मुआहदे या CEPA के तहत मुकर्रा हदफ को मुकर्रा वक्त से 5 साल पहले ही हासिल करना है। इस साल के अवाइल में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के भारत के दौरे के दौरान दोनों मुल्कों ने 2032 तक बाहमी तजारत के निशाने को बढ़ाकर 200 अरब डॉलर मुकर्रर किया था। पेश है एक रिपोर्ट।
1: भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात दोनों मुल्कों के दरमियान गहरी इक्तिसादी शराकत दारी के लिए मुसलसल कोशा हैं। जुमे के रोज़ होने वाली बातचीत में तवानाई के तहफ़ पर तवज्जो मरकूज़ किए जाने का इम्कान है। UAE में भारत की तरफ से होने वाली बरामदात 36.63 बिलियन डॉलर से तजावुज़ कर गई है, जिसके सबब मुत्तहिदा अरब अमारात दुनिया भर में भारत की जानिब से होने वाली बरामदात का दूसरा बड़ा मुल्क बन गया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
0: वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा है कि खुद किफालत और मिलकर काम करने की पहल दोनों ही कलीदी नौयत की खुद मुख्तारी हासिल करने और उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस के लिए मुस्तकबिल में तैयार रहने की गरज से लाजमी हैसियत रखते हैं। जनाब सिंह ने नई दिल्ली में कलम और कवच के तीसरे एडिशन के इफ्तिताही इजलास के दौरान एक वीडियो पैगाम में ये बात कही। वज़ीर मौसूफ़ ने खुद किफालत को न सिर्फ एक इक्तिसादी हदफ बल्कि एक कलीदी ज़रूरत भी करार दिया। उन्होंने वजाहत की कि अगर कोई मुल्क अहम तरीन दिफाई सलाहियतों के लिए दूसरों पर ज़्यादा ही मुनहसर हो तो वो बहरान के दौर में जद पजीर रहता है। जनाब सिंह ने कहा कि भारत अपने कौमी निज़ाम के अंदरून अहम नौयत के दिफाई निज़ाम को वज़ा करे, तैयार करे, बनाए, बरकरार रखे और इन्हें अपग्रेड करता रहे ताकि वो कलीदी नौयत की खुद मुख्तारी हासिल कर सके। महकमा दिफा के वज़ीर मुमलिकत संजय सेठ ने ऑपरेशन सिंदूर को एक तारीखी कामयाबी करार दिया, जिसने भारत की मुल्क में ही तैयार हथियारों और निज़ामों को इस्तेमाल करते हुए इंतहाई तेज़ और तालमेल पर मबनी ऑपरेशन अंजाम देने की सलाहियतों का मुजाहरा किया। भारत के चुनाव कमीशन ने ऐलान किया है कि राय दहिंदगान की फहरिस्तों पर खसूसी नजरसानी SIR मरहला 3 शुरू किया जाएगा। इसे 16 रियासतों

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। सभी सुनने वालों को संतोष श्रीवास्तव का आदाब। आप सुन रहे हैं गजलों की कहकशा, वो आसमान जहां अल्फाज सितारे बनकर टिमटिमाते हैं और धुनी चांदनी बनकर दिल को छू जाती हैं। आज की इस महफिल में हम लाए हैं हिंदी सिनेमा की कुछ बेमिसाल गजलें, कुछ नई कुछ पुरानी, पर सबके जज्बात एक जैसी, मोहब्बत, जुदाई, इंतजार और सुकून से लबरेज। तो चलिए शुरुआत करती हैं उस दौर से जब गजल का मतलब था जगजीत सिंह की आवाज़।

श्रोताओं, गजल का सफर यहीं नहीं रुकता, नई पीढ़ी ने भी इसे बखूबी निभाया। साल 2006 में फिल्म वो लम्हे और इस गजल ने साबित कर दिया कि दर्द का कोई दौर नहीं होता। सुनिए जावेद अहमद की आवाज में शहीद कादरी का ये कलाम।

श्रोताओं, अब चलते हैं 90 के दशक में गुलजार साहब के लफ्ज़, भूपिंदर सिंह की आवाज़ में फिल्म मासूम की ये गज़ल।

नई पेशकश फिल्म गुजारिश से, संजय लीला भंसाली का संगीत और कैलाश खेर की आवाज, दर्द और सूफियाना का संगम।

तो श्रोताओं, यहीं खत्म होती है आज की गजलों की कहकशा। उम्मीद है इन नगमों ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ होगा। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए सितारों के साथ इसी आसमान के नीचे। तब तक के लिए अपने रेडियो साथी संतोष श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। शब खैर।

0: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र।
1: ये आकाशवाणी है।
0: आकाशवाणी के 90 वर्ष और हमारा आपका साथ।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे आकाशवाणी गीत। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला प्रसारण सुनेंगे, बस थोड़ी प्रतीक्षा।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत। सभी सुनने वालों को संतोष श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, एक जमाने में दिल का दिया किसी की यादों से तो किसी की बातों से चलता था। आज कमरे के अंधेरे और तन्हाई में अचानक आए मैसेज से रोशन हो जाता है किसी किसी के दिल का दिया। पल भर में बदल जाता है मूड और खुशनुमा लगने लगता है सब कुछ। खामोश रात और तन्हाई में दिल का दिया जला रहा है किसी का मोबाइल पर आया संदेश।

किसी ज़माने में तोहफे में कैसेट दिए जाते थे, शायद उससे पहले एलपी रिकॉर्ड्स भी गिफ्ट में दिए जाते रहे होंगे। भाई अब हमें क्या पता, आज गाने मोबाइल संदेशों के जरिए भेजे जाते हैं। गाने एक दूसरे को क्यों भेजे जाते हैं? क्योंकि जो बातें हम बोल कर नहीं कह पाते वो गानों के जरिए कहना चाहते हैं। जमाने ने फिल्मी गानों को हमारा मैसेंजर बना दिया है।

आसमान को छूते पहाड़ इंसान को इसलिए हैरत में डालते हैं क्योंकि वो आसमान से बातें करते हैं। खूबसूरत जगहों पर पहले लोग गले में कैमरा डाले पहुंच जाते थे। क्या बात है, वो फिल्म कैमरों वाले दिन। जब तक रील पूरी नहीं होती थी तस्वीरें देखने को मिलती नहीं थी क्योंकि उन्हें तुरंत प्रिंट नहीं कराया जा सकता था। आज पहाड़ों की ठंडी हवा गालों को छू रही होती है और हम अपने मोबाइल से फोटो वीडियो ले रहे होते हैं फटाफट फटाफट। अरे भाई, पहाड़ों से बातें करें या उन्हें निहारें, ये पहाड़ तो यहीं रहेंगे, हमें तो अपने शहर लौट जाना होगा।

हम भले भीग जाएं, लेकिन हमारा मोबाइल नहीं भीगना चाहिए। इसलिए हम खुद रेनकोट लेकर भले ना निकलें, पर मोबाइल की हिफाजत का पूरा ध्यान रखकर निकलते हैं। प्यार करने वाले किसी रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पी रहे होते हैं, एक दूसरे की आंखों में थोड़ा थोड़ा झांक लेते हैं। अचानक न जाने क्या होता है कि नज़रें मोबाइल की खिड़की पर टिक जाती हैं। थोड़ा सा वक्त है, प्यार समय है, उम्र जवां है, प्यार साथ है, तो फिर स्क्रीन की क्या बात है। हर पल को महका लिया जाए, थोड़ा गुनगुना लिया जाए।

किसी जमाने में गीतकार कह गए थे, चांद को देखो जी, और अब इसका मतलब ये है कि अपने कमरे से निकलो जी, अपने घर की स्क्रीन से नजरें फेरो जी। अब हर जेब में एक स्क्रीन है जिसमें है एक पूरा मायावी संसार। ऐसे में किसके पास फुर्सत है कि वो घटते बढ़ते चांद पर नजर डाले।

कर देने वाला गाना है। चिट्ठियों के ज़माने में किसी को ब्लॉक नहीं किया जा सकता था। खिड़की से झांकती हसीना किसी ज़माने में खिड़कियों के पट बंद कर देती थी तो प्यार का रास्ता बंद हो जाता था। अब पट बंद करने की जगह आ गया है ब्लॉक करने का चलन। ज़रा सी रिश्तों में खटास के आई उसे ब्लॉक कर दिया जाता है। ऐसे में सामने वाले से संपर्क के सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं और अब वो बेचारा गलियों गलियों में ये गाना गाते हुए भटक रहा है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर अपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का राग यमन में बांसुरी वादन। आपके साथ तबले पर संगति की है कुबेरनाथ मिश्र ने। तो आइए सुनते हैं पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का राग यमन में बांसुरी वादन।

शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अभी आप पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का राग यमन में बांसुरी वादन सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगति की कुबीरनाथ मिश्र ने। श्रोताओं, इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

शिक्षा व्यक्ति में आत्मबल और आत्मविश्वास पैदा करती है। खुद साक्षर बनिए और दूसरों को भी साक्षर बनाने में अपना अमूल्य योगदान कीजिए। हमें यह नहीं भूलना है कि हम पहले इंसान हैं, उसके बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई। आइए सांप्रदायिक सौहार्द का व्रत लें। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 11 बजने को है। अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम समाचार लेकर रहे हैं, पहले हिंदी और उसके पश्चात अंग्रेजी में। बस थोड़ी प्रतीक्षा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। यह यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रहा है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक

0: दल की बैठक में वीडी सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेइचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि चीन और अमरीका को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमरीका के बीच टकराव हो सकता है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम में आए अचानक बदलाव ने उधर उत्तर प्रदेश में भी भारी तबाही मचाई। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई। और खेलों में गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किए। पुरुषों के 71 किलोग्राम भार वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience, and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegation of BRICS countries who called on Mr. Modi in New Delhi today, Mr. Modi said, BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the Global South. The meetings took place on the sidelines of the BRICS Foreign Ministers' meeting, which is being held in New Delhi. Earlier, in his opening remarks at the BRICS Foreign Ministers' meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that peace and security remain central to the global order.
2: Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global landscape. It can be leveraged for good governance and inclusive growth. Peace and security remain central to the global order. Recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy. There is also a deeply shared interest in strengthening cooperation against terrorism.
1: The theme of the event is Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. It draws inspiration from Prime Minister Narendra Modi's Humanity First and People-Centric Vision for BRICS. In this session themed on BRICS at 20, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar highlighted that BRICS has expanded its agenda and membership in response to changing global realities while remaining focused on people-centric development and practical cooperation. The minister said BRICS is strong because it is independent and includes diverse countries. He said the group supports change and reforms, reflects a multipolar world, help countries reduce the risks by expanding partnerships, and believes in mutual respect and equal rights for all nations. Prime Minister Narendra Modi will arrive in United Arab Emirates capital Abu Dhabi tomorrow on the first leg of his five-nation visit. He will later visit the Netherlands, Sweden, Norway and Italy. Our West Asia correspondent reports India and the UAE are preparing to further expand one of Asia's fastest growing economic partnerships